0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: अपनी रोमांटिक अर्थात नॉटी जिंदगी में और ज्यादा एक्साइटमेंट लाना चाहते हो, ये एक पर्सनली ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है. आई थिंक इट वर्क्स एवरी सिंगल टाइम फॉर मी. तो जो कोट अनकोट ट्रक ड्राइवर प्लेलिस्ट होती है ना, मैं तो वो प्ले कर लेती हूँ और उसके बाद उस बैकग्राउंड म्यूजिक में नॉटी होने का फन ही कुछ और है. लाइक इमेजिन करो, मिलाओ ना यू निगाह हमसे, हो जाए ना कोई खता हमसे, ए दिल ए दिल ए दिल ए दिल. इट डजंट मैटर दैट आई एम अ टेरिबल सिंगर, बट आई एम ग्रेट विद माई आइडियाज. सोच रहे हो बैकग्राउंड में ऐसे, सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे, एंड आप लाइक रिदम को मैच कर रहे हो अपनी मूवमेंट्स के साथ. इट्स लाइक जुम्बा मीटिंग पैशन मीटिंग लाइक कैलोरी बर्न मीटिंग लाइक ओ गॉड, दिस इज सो अमेजिंग. इफ यू डू नॉट बिलीव मी, मैं आपको अर्ज करती हूँ कि खुद एक्सपेरिमेंट करके खुद देख लो. और वो करने के लिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, आपको खुद करना पड़ेगा विद योर पार्टनर. बट डू टेल मी हाउ इट वर्क्ड फॉर यू. और वो करने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर. एंड व्हाइल यू डू ऑल ऑफ दैट, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: स्लिप डिस्क हुए आपको 6 महीने हो गए, लेकिन आप अभी भी फिजियोथेरेपी जा रहे हो बिकॉज यू लाइक द हैंड ऑफ द नर्स दैट इज ट्राइंग टू फिक्स योर बैक. शर्म नहीं आती आपको ये सब करते हुए? But whatever floats your boat is what I say. और अगर आपकी जिंदगी में है ऐसा कोई भी सीक्रेट कन्फेशन, why don't you hit me up on Insta या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशनी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, and let's get talking about what is the naughty thing that you did. और मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
2: हेलो,
1: हाय. हाय, हाउ आर यू?
2: यू आर लाइक, आई एम गुड, हाउ आर यू?
1: मुझे बस ये अपने ज़हन से निकालना है मेरा गंदा कन्फेशन.
2: बहुत अजीब चीज है ये, मुझे किसी को बतानी है.
1: गो फॉर इट.
2: ओके, सो आई हैव बीन स्टडीइंग मेडिसिन एंड ऑल फॉर ओवर 3 इयर्स नाउ.
1: ठीक है.
2: बट द थिंग इज कि मैं और मेरा बॉयफ्रेंड, हम लोग को ऐसे रोल प्ले वगैरह करना पसंद है. और मेरी मम्मी की बहुत गंदी आदत है कि वो ना कभी कभी मेरी अलमारी चेक कर लेंगी कि ऐसी लॉ में सही कर देती हूँ, तो वो कुछ भी करना शुरू कर देती है. वो कभी मुझे पूछती नहीं है. तो हम लोग को क्योंकि रोल प्ले पसंद है, आई हैड दिस एयर होस्टेस की कॉस्ट्यूम और वो मेरी अलमारी में रखी थी और मम्मी ने हाथ हाथ मारा होगा और मम्मी को मिल गई. और मम्मी को लगा कि मैं ना एयर होस्टेस की पढ़ाई कर रही हूँ और मैं उनसे तो सालों से झूठ बोलती आ रही हूँ कि मैं मेडिसिन के लिए कर रही हूँ. और मम्मी ने इतना कलेश कर दिया ना पूरे घर में कि ये तो झूठ बोल रही है हमसे, ये तो जाती नहीं होगी, क्लासेस भी जाती कि नहीं जाती हमें क्या पता, ये तो झूठ बोल के इसकी पढ़ाई कर रही है, इसके पास कॉस्ट्यूम है. और मैं बता भी नहीं सकती कि वो मेरे पास क्यों है. तो मैं ना उस टाइम पे फुल पैनिक कर गई क्योंकि वो सुनाई जा रही थी, पापा अलग से डिसअपॉइंट हो रहे थे. मैंने कहा शिट यार मैं क्या करूँ. तो मैंने बोल दिया कि मम्मी मैं ना, हाँ मेरे को बनना एयर होस्टेस ही था, पर क्योंकि आप लोग का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूँ, तो फिर मैं जबरदस्ती पढ़ाई कर रही हूँ. तो अभी दे हैव बिलीव दैट एंड वो इतना गिल्ट ट्रिप में चल रहे हैं आजकल क्योंकि उनको लगता है वाह हमारी बेटी हमारा सपना सच करने के लिए एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है. पर
1: आपके मम्मी पापा को ये लगता है कि क्योंकि इसे एयर होस्टेस बनना था और ये नहीं बन सकती है तो ये एयर होस्टेस के कपड़े पहन के रात को सोती है. मतलब आपने हाउ डिड यू एक्सप्लेन दैट आउटफिट टू देम?
2: आई हैव नो आइडिया. आई थिंक मम्मी को ये लगा कि मैं, पता नहीं क्यों उन्हें लगा कि मैं क्लासेस ले रही है एयर होस्टेस की. और उसके बाद उन्होंने कभी मुझसे उसके डिटेल्स नहीं पूछे. मैंने बोल दिया हाँ और बस. एंड आई होप वो कभी पूछे ना क्योंकि मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है.
1: I've heard some really bizarre stuff in my life, but मैंने ये bizarre चीज़ कभी नहीं सुनी है कि हाँ मम्मी मैं बनना चाहती थी air hostess पर आपका दिल रखने के लिए मैं medical science पढ़ी हूँ. but ये outfit मेरे पास क्यों है? क्योंकि मैं देख के ऐसे अपने सपने टूटते हुए देखती हूँ रोज. Is that
2: I think you हाँ गुड आइडिया. आई विल से दैट नाउ इफ यू आस्क. मैं तो बोला था कि मैं क्लासेस वगैरह बीच में एक दो ली थी इसलिए पहनी थी. अब मैं ये बोलूंगी कि मुझे अच्छा लगता है अपने आप को कॉस्ट्यूम में देखती हूँ कि आप बन तो पाऊंगी नहीं.
1: This is the most bizarre stuff ever. मैं आपको रोशिफाई करना चाहती हूँ.
3: You've been रोशिफाइड.
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपके पास कॉस्ट्यूम्स हैं, अभी तो शुक्र करो आपकी अलमारी में से हैंडकफ्स नहीं निकले, तो क्या बोलते मम्मा को कि मैं चोर बनना चाहती हूँ बट मैं मेडिकल साइंस कर रही हूँ इसलिए मैं अपने आप को हथकड़ी बांध.
2: I'm glad I didn't even think about that. But thank you.
1: I just did and you are most welcome. अब आप रोशिफाई हो गए हो तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. आई होप योर मॉम इज नॉट लिसनिंग टू दिस. अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी हैंडकफ रिडन, किंक रिडन सिचुएशन है, why don't you hit me up on Insta या FB? We will get talking. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. So do whatever you have to do. लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

जर्सी की स्ट्रीट पर। कभी छोटी, कभी जर्सी की स्ट्रीट पर। कभी छोटी

0: टैलेंट आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए 2903-364-7244 यानी 9033 मिर्ची।
1: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzelin.
4: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
9: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
10: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
11: तेरा क्या होगा कालिया?
12: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
11: अब मिर्ची खा।
13: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हॉट है। ये था गुची संग बाय अरूप खान फीचरिंग रियाज अली, कंपोज्ड बाय प्रीतिंदर, लिरिक्स बाय कप्तान एंड म्यूजिक बाय मिक्सिंग। फुल ऑन मिर्ची बैंगर, इट्स हॉट।
1: 20 minutes of back-to-back music brought to you by RK Jewels. Best quality, best price. Only on Radio Mirchi 92.7 FM and 103.3 FM HD2. It's hot.

0: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: पीठ पे छुरा क्यों घोंपे?
5: मत मारे कालीन भैया, बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
6: अब सही सुर लगा रहे मुमताज।
7: मिर्जापुर की गद्दी के बारे में सुने?
5: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
7: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
8: XL Entertainment presents Mirzapur the movie, releasing worldwide on 4th September at your nearest cinema.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
12: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
11: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
12: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
11: Miss India, aaj hi visit kare, 79 Middlesex Avenue, Islington.
13: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा।
14: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. It's hot.

0: only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: मेरी बंदी को पसंद नहीं है दैट आई एम हैंगिंग आउट विद माय फ्रेंड्स विदाउट हर. सो आई लाइ टू हर कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मम्मी ने बुला लिया, नानी को मिलने जाना है, एंड एंड अप हैंगिंग आउट विद माय फ्रेंड्स. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ. क्या मैं सच में कुछ गलत कर रहा हूँ या ये मेरे मन का भ्रम है?
2: रोशी के डीएम से.
1: यू आर सच ए क्यूटी विष्णु फॉर थिंकिंग कि ये आपके मन का भ्रम है. नहीं, अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ गलत कर रहे हो तो द फैक्ट इज कि आप कुछ गलत कर रहे हो. Why can't you just be honest with your girlfriend and tell her that, देख babe, I love you, I want to spend the rest of my life with you, लेकिन उसमें कुछ chunks हैं जो मैं अपने दोस्तों के साथ spend करना चाहता हूँ. And if you don't mind, I would like to do that, मैं तुझे वहाँ से video call कर दूँगा, phone call कर दूँगा, so you know I'm not up to anything rotten, and this will build trust between the two of you. आज तो चलो आप दोनों अलग-अलग घरों में रहते हो. Tomorrow if you decide to live in together, or you decide to get married, फिर क्या करोगे, क्या झूठ बोलोगे? नानी के घर जा रहा हूँ, शील से मैं भी साथ आ लूँ. फिर इट्स द बेस्ट थिंग टू बी ऑनेस्ट राइट नाउ एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड टुगेदर. नहीं, आपको नहीं लगता है? और अगर आपको भी विष्णु की तरह जिंदगी में बहुत ही कठिनाइयां हो रही हैं, व्हाई डोंट यू हिट मी अप एंड लेट्स मेक योर लाइफ अ लिटिल बिट सिंपलर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. फाइंड मी ऑन इंस्टा या FB, एंड व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: Roshi Baba! Roshi Baba!
2: Roshi Baba ki!
3: Oh, calm down, my bhag jano. I know you're feeling really nervous. Kyunki parso aapki date hai, kal raat ko aap anxious hoge. Aaj raat ko bhi neend nahi aayegi aur kal raat ko bhi neend nahi aayegi. And you will end up ruining a potentially perfect date. But aisa nahi hone wala hai. Because I have the perfect Roshi Baba tip for you. Aaj raat ko aur kal raat ko, sone se pehle, aadha cup garam doodh, usme thodi si haldi. And before you know it, na ki sirf aapko bahut achi neend aayegi, but because you're putting haldi in your doodh, aapki body is कदर रिलैक्स्ड होगी दैट आप अपनी डेट पर 100% फोकस कर पाएंगे और उसके बाद इफ यू एंड अप हैविंग टू डू एनी एक्रोबैटिक्स इन योर पोस्ट डेट सिचुएशन देन उसके लिए भी आपकी बॉडी विल बी फुली प्रिपेयर्ड. इस मिल्क एंड टर्मरिक ट्रिक को ट्राई करके देखो स्वीट हार्ट एंड आई कैन अश्योर यू कि ना कि सिर्फ आपकी नींद अच्छी हो जाएगी बट आपकी नींद के आसपास की सारी एक्टिविटीज बेटर हो जाएंगी. एंड वंस दैट हैपन्स मुझे थैंक यू बोलने के लिए यू कैन हिट मी अप इंस्टा पर या एफपी पर. एंड व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची. It's hot.

0: पे छुरा क्यों घोंपे?
1: मत मारिए कालीन भैया,
2: बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
3: अब सही सुर लगा रहे मुमताज।
4: मिर्जापुर की गद्दी के बारे में सुने?
0: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
4: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
5: XL Entertainment presents Mirzapur the movie, releasing worldwide on 4th September at your nearest cinema.
6: नो
7: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
8: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
7: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
9: एक ही होता है।
7: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: रोशी थ्योरी नंबर 428 के हिसाब से अगर आपने प्यार में कोई पागलपन नहीं किया तो वो प्यार प्यार नहीं था, बेसिकली कोई सैड एक्सक्यूज फॉर प्यार था। लेकिन अगर आपने कोई पागलपन किया है तो आज मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि एक तो पागलपन की निशानी बता दो अपने रिलेशनशिप में मीठी मीठी, एंड टेल मी हिज स्टोरी। आकाश इज ऑन द लाइन विद मी। आपके पास अगर ऐसी कोई स्टोरी है तो हिट मी अप ऑन इंस्टा या FBN, वी विल गेट टॉकिंग। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RochiE। और अभी तो हाय आकाश, जमीन पर आपका स्वागत है।
2: थैंक यू रोशी।
1: आपको भी। अच्छा तो ये बताओ कि यू सेंड मी अ मैसेज अभी थोड़ी देर पहले ऑन इंस्टाग्राम कि रोशी मेरी क्रेजी स्टोरी जैसी कोई और क्रेजी स्टोरी नहीं हो सकती।
2: लाइक मेरी जो स्टोरी है ना वो इट्स टिपिकली अ मूवी सिनेरियो।
1: ओके, आई एम एक्साइटेड।
2: सो बेसिकली आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड मेरी गर्लफ्रेंड शी इज फ्रॉम हैदराबाद एंड मेरा तब थोड़ा सा टाइट चल रहा था पैसों का। आई वाज अ लिटिल ब्रोक एंड मेरी गर्लफ्रेंड तब अपने घर गई हुई थी हैदराबाद बिकॉज उसका बर्थडे था। सो शी वांटेड टू स्पेंड सम टाइम विद हर फैमिली, बट ऑब्वियसली मेरा बॉयफ्रेंड मुझे भी थोड़ा देखना है उसको। उसके बर्थडे के दिन उसको विश करना है। तो अब सिंस आई वॉज ब्रोक कुछ खरीद तो सकता नहीं, but what I did was I planned a trip to Hyderabad.
1: Okay, par aap to broke the
2: trip, correct? So here's the amazing part, which is the trip I took strangers se lift.
1: Oh god,
2: from Delhi onwards. Lift liya ek location tak, fir wahan se truck mein baitha, truck se lift liya, and then fir buses chalti hain, so bus mein bhi baitha. So aise kar karke it took me I think so 3 days.
1: Oh my god.
2: 3 days to reach Hyderabad.
1: And
2: obviously फिर घर के सामने चले गया मैं। वो लास्ट जर्नी ऑब्वियसली हैदराबाद पहुंचा, वहां से फिर मैंने ऑटो लिया। सो आई हैव एक्सपीरियंस मल्टीपल राइड ट्रांसपोर्ट।
1: This is so amazing. It's legit a very very crazy story. आपकी गर्लफ्रेंड ने कैसे रिएक्ट किया when she saw you like that? Like oh my god, तू कहां से आया? Obviously यार।
2: And I was like, रो क्यों रही है? अरे तूने इतना क्या मेरे लिए?
1: तू ट्रक लेके आया यार, इसलिए रो रही है। ट्रक में बैठ के आया है। बट दिस इज एन अमेजिंग स्टोरी। आई लव यू आकाश सो मच। धरती पे आपका अब भी स्वागत है। योर गर्लफ्रेंड इज द लकीएस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड। और अगर आपकी भी आकाश की तरह ऐसी ही क्रेजी AF स्टोरी है, आई वांट टू नो दैट मॉर्निंग ग्लोरी। सो हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB एंड वी विल गेट टॉकिंग। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RochiE। So do whatever you have to do, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, it's hot।

0: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
1: जिसके शब्दों में आग है,
0: जिसकी आवाज में जादू है,
1: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक।
0: आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Ben.
1: Barrel. Yeah. भाई तेरा बस लिखते गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौको ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: पूरा जर्सी जानता है, यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
2: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
3: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: ये एक बहुत ही सीरियस सवाल है जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ और इसका जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन शायद आप मेरी मदद कर सको. सो माय क्वेश्चन इज कि अगर आप एक कॉफी ड्रिंकर हैं, तो क्या ये पॉसिबल है दैट यू कैन एक्चुअली बी इन अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद अ टी ड्रिंकर? क्या चाय पीने वाले कॉफी पीने वालों को उतनी ही इज्जत देते हैं जितनी वो फेलो चाय पीने वालों को? हाँ या ना? बिकॉज आई एक्चुअली रियलाइज दैट ऑल माई एक्स बॉयफ्रेंड्स आर ऑल कॉफी ड्रिंकर्स. इन फैक्ट वन ऑफ द थिंग्स दैट केप्ट अस बॉन्डेड टुगेदर वॉज वह इंसान भी कॉफी पीता था और मैं भी कॉफी पीती थी. लेकिन क्या अगर मुझे एक ऐसा इंसान मिल जाए जिसके साथ मुझे सब कुछ 10/10 लगे, लेकिन वह एक चाय पीने वाला होगा और मैं एक कॉफी पीने वाली थी, हूँ और रहूंगी, क्या हमारा रिश्ता दूर तक जा सकता है? हाँ या ना? इसका जवाब आप मुझे देंगे जनाब, और वो करने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे बेतुके सवाल आपके जहन में घूमते रहते हैं, गोते खाते रहते हैं, आप भी मुझे वो सवाल भेज सकते हैं. मेबी आई हैव एन आंसर टू योर क्वेश्चंस एंड यू विल हैव वन फॉर माइन. सो व्हाइल यू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर, कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: मान लिया कि आपकी शक्ल काफी हॉट है कि जब आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो तो चम्मच का भी पीछे का साइड देकर अपनी शक्ल देखते हो उसमें. आई एम एग्जैक्टली लाइक यू. मैं तो हर रिफ्लेक्टिव सर्फेस में अपनी शक्ल देखती हूँ, बिकॉज क्या करे, और कोई तारीफ करेगा ना करे, आई एम लाइक आई मस्ट अप्रिशिएट एंड एडमायर माई सेल्फ. लेकिन द बेस्ट रिफ्लेक्टिव सर्फेस रिमेन्स एक शीशा. आई एम गोइंग टू दिस शीशा वाला स्टोरी फॉर अ रीजन. सो इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप जहां आपको लगता है कि हाँ हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, सब कुछ देख लिया, बहुत मजे आ गए, अब नेक्स्ट. जैसे कि मेरी बेस्टी, शी इज बीन इन दिस लव गेम फॉर सो लॉन्ग दैट मुझे ऐसा लगता है उसे एक मोटी सी किताब लिख देनी चाहिए. बट वेन शी केम टू मी एंड सेड कि यार चीजें ना बहुत बोरिंग हो रही है मेरे पार्टनर के साथ, और मतलब बेडरूम में बेडरूम वाले मजे नहीं आ रहे हैं, सो आई वाज लाइक व्हाई डोंट यू ब्रिंग अ शीशा इनटू द पिक्चर. एंड शी वाज लाइक क्या करेंगे उस शीशे का, एक दूसरे की शक्ल देखेंगे और रियलाइज करेंगे कि हम कितने बोरिंग हो गए हैं एज अ कपल. आई वाज लाइक व्हाट एवर नॉटी फन स्टफ दैट यू गाइज आर डूइंग, जस्ट डू इट इन फ्रंट ऑफ द शीशा, बिकॉज जो आपका विजुअल सेंस है वो वैसे भी आपकी हर फीलिंग को इन्हांस और एलिवेट कर देता है. नाउ इमेजिन इवन जस्ट एज मच एज होल्डिंग आपके पार्टनर का हाथ इन फ्रंट ऑफ द मिरर. अगर आज तक ये नहीं किया जाने मन, तो इसे ट्राई करके देखो एंड देन मेक इट हॉटर, स्टीमियर, नॉटियर, यू गेट द पिक्चर. वट एवर यू डू, डू इट इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड वंस इट मेक्स योर लव लाइफ सो हॉट एंड स्पाइसी. थैंक यू, मुझे बोलना है और वो करने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम छे मिर्ची रोशी, काम छे आपसे प्यार करना. सो व्हाइल यू फाइंड मी एंड हिट मी अप, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.
2: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये. सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागे.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: स्लिप डिस्क हुए आपको 6 महीने हो गए, लेकिन आप अभी भी फिजियोथेरेपी जा रहे हो बिकॉज यू लाइक द हैंड ऑफ द नर्स दैट इज ट्राइंग टू फिक्स योर बैक. शर्म नहीं आती आपको ये सब करते हुए?
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: बट व्हाटएवर फ्लोट्स योर बोट इज व्हाट आई से. और अगर आपकी जिंदगी में है ऐसा कोई भी सीक्रेट कन्फेशन, व्हाई डोंट यू हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, एंड लेट्स गेट टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द नॉटी थिंग दैट यू डिड. और मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
3: हेलो, हाय.
1: हाय, हाउ आर यू? यू आर लाइक,
3: आई एम गुड, हाउ आर यू?
1: मुझे बस ये अपने ज़हन से निकालना है मेरा गंदा कन्फेशन.
3: बहुत अजीब चीज है ये, मुझे किसी को बतानी है.
1: गो फॉर इट.
3: ओके, सो आई हैव बीन स्टडीइंग मेडिसिन एंड ऑल फॉर ओवर 3 इयर्स नाउ.
1: ठीक है.
3: बट द थिंग इज कि मैं और मेरा बॉयफ्रेंड हम लोग को ऐसे रोल प्ले वगैरह करना पसंद है. और मेरी मम्मी की बहुत गंदी आदत है कि वो ना कभी कभी मेरी अलमारी चेक कर लेंगी कि ऐसी लॉ में सही कर देती हूँ, तो वो कुछ भी करना शुरू कर देती है. वो कभी मुझसे पूछती नहीं है. तो हम लोग को क्योंकि रोल प्ले पसंद है, आई हैड दिस एयर होस्टेस की कॉस्ट्यूम और वो मेरी अलमारी में रखी थी और मम्मी ने हाथ हाथ मारा होगा और मम्मी को मिल गई. और मम्मी को लगा कि मैं ना एयर होस्टेस की पढ़ाई कर रही हूँ और मैं उनसे तो सालों से झूठ बोलती आ रही हूँ कि मैं मेडिसिन के लिए कर रही हूँ. और मम्मी ने इतना कलेश कर दिया ना पूरे घर में कि ये तो झूठ बोल रही है हमसे, ये तो जाती नहीं होगी, क्लासेस भी जाती कि नहीं जाती हमें क्या पता, ये तो झूठ बोल के इसकी पढ़ाई कर रही है, इसके पास कॉस्ट्यूम है. और मैंने बता भी नहीं सकती कि वो मेरे पास क्यों है. तो मैं ना उस टाइम पे फुल पैनिक कर गई क्योंकि वो सुनाए जा रही थी, पापा अलग से डिसअपॉइंट हो रहे थे. मैंने कहा शिट यार मैं क्या करूँ. तो मैंने बोल दिया कि मम्मी मैं ना, हाँ मेरे को बनना एयर होस्टेस ही था, पर क्योंकि आप लोग का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूँ तो फिर मैं जबरदस्ती पढ़ाई कर रही हूँ. तो अभी दे हैव बिलीव दैट एंड वो इतना गिल्ट ट्रिप में चल रहे हैं आजकल क्योंकि उनको लगता है वाह हमारी बेटी हमारा सपना सच करने के लिए MBBS की पढ़ाई कर रही है. पर
1: आपके मम्मी पापा को ये लगता है कि क्योंकि इसे एयर होस्टेस बनना था और ये नहीं बन सकती है तो ये एयर होस्टेस के कपड़े पहन के रात को सोती है. मतलब आपने हाउ डिड यू एक्सप्लेन दैट आउटफिट टू देम?
3: आई हैव नो आइडिया. आई थिंक मम्मी को ये लगा कि मैं, पता नहीं क्यों उन्हें लगा कि मैं क्लासेस ले रही है एयर होस्टेस की. और उसके बाद उन्होंने कभी मुझसे उसके डिटेल्स नहीं पूछे. मैंने बोल दिया हाँ और बस. एंड आई होप वो कभी पूछे ना क्योंकि मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है.
1: I've heard some really bizarre stuff in my life, मैंने ये बिजार चीज कभी नहीं सुनी है कि हाँ मम्मी मैं बनना चाहती थी एयर होस्टेस पर आपका दिल रखने के लिए मैं मेडिकल साइंस पढ़ी हूँ. बट ये आउटफिट मेरे पास क्यों है? क्योंकि मैं देख के ऐसे अपने सपने टूटते हुए देखती हूँ रोज. इज दैट
3: आई थिंक यू. हाँ गुड आइडिया. आई विल से दैट नाउ इफ यू आस्क. मैं तो बोला था कि मैं क्लासेस वगैरह बीच में एक दो ली थी इसलिए पहनी थी. अब मैं ये बोलूंगी कि मुझे अच्छा लगता है अपने आप को कॉस्ट्यूम में देखती हूँ कि अब बन तो पाऊंगी नहीं.
1: This is the most bizarre stuff ever. मैं आपको रोशिफाई करना चाहती हूँ.
4: You've been रोशिफाइड.
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपके पास कॉस्ट्यूम्स हैं, अभी तो शुक्र करो आपकी अलमारी में से हैंडकफ्स नहीं निकले. तो क्या बोलते मम्मा को कि मैं चोर बनना चाहती हूँ बट मैं मेडिकल साइंस करी हूँ इसलिए अपने आपको हथकड़ी पहनना.
3: I'm glad I didn't even think about that. But well, thank you.
1: I just did and you are most welcome. अब आप रोशिफाई हो गए हो तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. I hope your mom is not listening to this. अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी handcuff ridden, kink ridden situation है, why don't you hit me up on Insta या FB? We will get talking. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. So do whatever you have to do. लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Bala Banquet Edison.
3: Listener MA. Back to back gana sunega.
4: Back to back gana sunega.
3: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच,
2: अर्ज किया है चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क,
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। The stage is set. Indian American Women Entrepreneurs Association presents साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
3: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 903-364-7244, यानी 903-3 मिर्ची।
4: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
5: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
6: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
5: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
5: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
8: एक ही होता है।
5: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

OMG, I forgot to tell you a story. It's a very interesting story. और उसके बाद प्रॉम्प्टली आप सो जाओ. अगर आप नए नए एक क्रशिंग रिलेशनशिप में हो और आप दोनों आजकल रात को एक दूसरे को टेक्स्ट कर रहे हो, देन दिस इज अ परफेक्ट टेक्स्ट टू सेंड. अगर आप चाहते हो कि सुबह उठते तक आपके पास कम से कम 15 टेक्स्ट हों कि यार वो क्या स्टोरी थी, तू बताने वाली थी और उसके बाद तू सो गई, हाउ कुड यू डू दैट टू मी. दिस इज वन गुड नाइट टेक्स्ट दैट विल गारंटी कि वो बंदा या बंदी आपके बारे में सारी रात सोचेंगे. ये मैंने खुद ट्राई करके देखा है एंड इट हैज वर्क्ड एवरी सिंगल टाइम सक्सेसफुली. इसे ट्राई करके देखो. आई एम सो श्योर दैट यू विल फॉल इन लव विद मी इवन मोर कि यार क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं. एंड टू थैंक मी पर्सनली, यू कैन हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, काम है आपसे प्यार करना, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो ढूंढो ना मुझे. एंड वन थिंग दैट आई मस्ट से टू यू, जिसके पास लव है उसके पास सब है. एंड आई लव यू लोथ्स.

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Ghana Indy Top 10.
2: Kanika ke saath on Mirchi.
3: Mirchi par ab baari hai asli pop countdown ki. Hello and welcome. This is the Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show jahan hafte ke top 10 hottest pop gaano ki ginti hum aapke liye karte hain. Uske saath saath hamara 90s 2000s ka indie pop classic, some special shout outs and aaj kaafi sare interesting stories hain. So stay connected with us. At RJ Kanika on Instagram par koi gaana suggest karna hai, baade bataniye bindaas aake hit me up. Shuruaat karti hu is hafte ki countdown ki with Ghana number 10. Is countdown ki shuruaat hi aaj ek nayi entry ke saath ho rahi hai. Ghana number 10 par डेब्यू करता है बंजारे का गाना बरसात. इट इज सो इंटरेस्टिंग कि आज से एक साल पहले हम बंजारे द आर्टिस्ट की एग्जिस्टेंस के बारे में भी नहीं जानते थे और आज उनके दो गाने हैं इस काउंटडाउन पे. एक ने डेब्यू किया नंबर 10 और एक है ऑन द टॉप. इस सुपर इंक्रेडिबल हरियाणवी डुओ इज वन टू लुक फॉर. रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. बरसात इज डेब्यूइंग दिस वीक ऑन गाना नंबर 10. उसके बाद संजू राठौड़ का बैंग गर्ल्स पिछले हफ्ते से दो पोजिशन नीचे ड्रॉप होके ऑन गाना नंबर 2. दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: Number 10.

0: The man, the myth, the legend, Sanjeev Rathod ki awaaz. That was Bangles. Pichle hafte se do pudushe niche drop hoke. This week on Gaana number 9.
1: Gaana Indie Top 10. Kanika ke saath. On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This show is all about the hottest pop music of the week. At RJ Kanika on Instagram par jao, mere saath connect karo. Koi gaana share karna ho, bindaas aake hit me up. कौन सा गाना किसको अच्छा लगता है, कोई एक गाने से कितना डीप लेवल पे कनेक्ट करता है, दैट्स वेरी सब्जेक्टिव. आई ट्रूली बिलीव दैट हमें कोई गाना हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस की वजह से अच्छा लगता है, हमारा इमोशनल रिस्पांस टू इट, जो बहुत बार हम जिस सिचुएशंस में होते हैं, जिस एनवायरमेंट में होते हैं, जिस दौर में होते हैं अपनी जिंदगी के, उससे कनेक्टेड होता है. बट ऐसे गाने होते हैं जो टाइमलेस होते हैं, उन्हें हम क्लासिक्स कहते हैं. काउंटडाउन पर आगे बढ़ते हुए हम अपना 90s एंड 2000s का इंडी पॉप क्लासिक आपके लिए प्ले करने वाले हैं. बट वन थिंग आई ऑब्जर्व थ्रू द वीक्स इज जब भी हम कोई गाना प्ले करते हैं, उसके इंट्रो म्यूजिक पर ही लोग उस गाने को पहचान जाते हैं. दैट मेक्स अस रियलाइज द पावर ऑफ अ गुड इंट्रो म्यूजिक, जैसे दिस वन बाय लकी अली. आई नो आप साथ में गुनगुनाने लग गए थे. ये मेलेडी, ये इंट्रो म्यूजिक हमारी मेमोरीज में एच्ड है, जस्ट लाइक मोहित चौहान का डूबा डूबा. ये म्यूजिक आपको पहाड़ों पे ट्रांसपोर्ट कर देता है. मोहित चौहान का गाना डूबा डूबा पूरा याद आ जाता है. सच पावरफुल आइकॉनिक इंट्रो पीसेस. एट आरजे कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, मैं आपके लिए इंट्रो म्यूजिक प्ले कर रही हूँ, आपको बताना है कौन से वाला गाना है. It's a high beat one. At RJ Kanika on Instagram पर मुझे आगे बताओ ये कौन सा गाना है. शो में आगे बढ़ते हुए we will play one of these songs on our cassette classic. So stay tuned for that. Moving on with the countdown. अगले वाला गाना Zara Khan Scales का Move Body. 6 हफ्तों से इस countdown पर बरकरार. Move Body is this week on Gaana number 8. Number 8.

0: घर में प्रियांश की कॉम्पोजिशन, प्रियांश जोनीता गांधी की आवाज में दिस अटली बटरफुली ब्यूटीफुल सॉन्ग कॉल्ड काफी है ना इज फ्रॉम मुसाफिर कैफे. इवन इफ आपने अभी तक शो नहीं देखा है, दिस सॉन्ग इज फॉर एवरीवन एंड टोटली बिलोंग्स ऑन द काउंटडाउन दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उससे पहले हमने सुना अनीश सरकार हृदय का उड़ी उड़ी ऑन गाना नंबर 7.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Ghana Indie Top 10. Bindi ka naam hai RJ Kanika. This show is all about the hottest pop music of the week. Hafte ke top 10 pop gaane, jisme ek nayi entry hai. But it's time for what we call
1: Kanika's Cassette Classic.
0: हमारी कैसेट क्लासिक, जहां पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने फीचर करते हैं. ये वो गाने हैं जिनसे हमें इंडी पॉप से मोहब्बत हुई है, जिनकी वजह से ये पैरेलल लेन ऑफ म्यूजिक आज यहां तक आ गया है. हम 7 साल से ये शो कर रहे हैं. द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज
2: तेरी दीवानी.
0: द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज गाने का नाम है बिजुरिया बाय द वन एंड ओनली सोनू निगम. ये गाना सुन के ना बॉडी में एक इलेक्ट्रिसिटी सी आ जाती है. मेरी तबीयत थोड़ी सी फीकी पड़ रही थी इस हफ्ते, मौसम में ही कुछ चल रहा है. सो दिस वॉज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ सॉन्ग जो मुझे सुनना था टू री एनर्जाइज माई सेल्फ. सोनू निगम की एल्बम मौसम से ये गाना फ्रॉम द लेट 90s. दिस सॉन्ग रिमाइंड अस ऑफ द वर्सेटैलिटी ऑफ सोनू निगम. एक तरफ दीवाना एल्बम में इतने पावरफुल लव बैलेट्स, दूसरी तरफ अ सॉन्ग लाइक बिजुरिया, फुल पॉप स्टार एनर्जी, एनर्जी ठुमका वो अंदाज, गाना सुनते ही पूरा माहौल बन जाता है. इट्स इनक्रेडिबल कि आज 26 साल के बाद भी जब भी सोनू निगम कोई लाइव परफॉर्मेंस करते हैं, क्राउड सिर्फ बिजुरिया के लिए वेट करती रहती है. एंड ये खुद सोनू निगम का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स है टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड, बिकॉज ऑडियंस तो हम ही है, कनेक्शन तो फील होता है. बट आई बेट यू डिडंट नो दिस दैट 26 साल के बाद सोनू निगम ने इस गाने की जो ओरिजिनल फीचरिंग एक्टर है इशिता अरुण, उनके साथ फिर से इस गाने का वीडियो बनाया. हाउ डू यू फील अबाउट दैट वीडियो, जाके देख के मुझे बताना एट आरजे कनिका पर. अब अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. कौन कह सकता है इस गाने को 26 साल हो गए, द चार्म इज स्टिल द सेम. सोनू निगम की आवाज में दिस इज बिजुरिया ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: डूड, ये गाना सुन के मैं बिजुरिया बिजुरिया का स्टेप करने लग गई थी स्टूडियो में. आप देख नहीं पा रहे हैं लेकिन अपनी इमेजिनेशन से इमेजिन कर लो. दैट वाज सोनू निगम की आवाज में बिजुरिया ऑन आ कसेट क्लासिक दिस वीक. एट आरजे कनेका पर आओ, कोई भी गाना रेकमेंड करना हो, सजेस्ट करना हो फ्रॉम द 90s 2000s, दोज इंडी पॉप सॉन्ग्स जो आज भी सुन के आपको लगता है कि यार ये वाला गाना तो आज भी फेवरेट है, वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंट डाउन, अगले वाले गाने की बारी है. मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि कोई अपना फेवरेट ना बोलूं, बट जब गाना ऐसा होता है ना तो थोड़ा सा बोलने का मन कर जाता है. दैट आई थिंक दिस इज माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग ऑफ द काउंटडाउन. चार हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. फरक दी आर्टिस्ट का, उन्हीं की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन. गाने का नाम है तारे एंड दिस सॉन्ग हिट्स ऑल द फील्स ब्रो. सो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. दिस इज तारे दिस वीक ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 5.

0: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
1: जिसके शब्दों में आग है,
0: जिसकी आवाज में जादू है,
1: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक।
0: आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
2: इंडी टॉप 10
3: कनिका के साथ ऑन मिर्ची
4: नंबर 4।

0: मिटर और की आवाज उन्हीं की कॉम्पोजिशन. गाने का नाम है शीशा. 22 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. दिस वीक ऑन गाना नंबर 4. सोशल मीडिया वंस इन अ वाइल हमें एक ऐसे ट्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाता है कि ट्रेंड तो चला जाता है पर वो गाना याद रह जाता है. इट्स टाइम टू गिव अ शाउट आउट टू ऐसा ही एक सॉन्ग.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: हेलो एंड वेलकम. दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर. मेरा हैंडल इज @RJKanika. फॉलो करो, बिल्कुल फ्री है. वैसे भी मुझे पता है आप सारा टाइम ही इंटरनेट पे स्पेंड करती हो, बिकॉज बाय नाउ यू हैव बीन फॉलोइंग ऑल द इंटरनेट मीम्स एंड डूइंग ऑल द इंटरनेट ट्रेंड्स. माय फेवरेट पार्ट अबाउट दिस इज कि जब कोई गाना एक ट्रेंड से इतना बड़ा हो जाता है कि हमारे शोज में डेब्यू कर जाता है, आपकी प्लेलिस्ट तक आ जाता है, और ऐसे ही एक गाने को हम आज शाउट आउट देने वाले हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट गुची. गाने का नाम है गुची बाय अरूप खान. एंड मे बी आप इस गाने को एक बहुत क्वर्की साइड वॉक से जानते हैं. बाय द वे, ये कोई नया गाना नहीं है, 2020 का है, 5 साल पुराना, बट एक इंटरनेट एडिट की वजह से हर जगह वायरल हो गया है. एक बहुत फेमस एक्टर पॉलिटिशियन एक कॉलेज इवेंट में स्टेज तक जा रहे थे एंड उनके हिसाब से वहां थोड़ी जगह नहीं थी, तो उन्होंने एक क्वर्की सा साइड वॉक मारा, टेढ़ा मेढ़ा, बिल्कुल ऑर्केस्ट्रेटेड नहीं था. एंड देन द इंटरनेट डिड इट्स मैजिक. उन्होंने उस वीडियो पे गुची का गाना चिपकाया और वो हर जगह वायरल हो गई. पूरा डांस स्टेप बन गया, लोग उसे गुची वॉक कह रहे हैं. आई नो राइट, मून वॉक सुना था, लेकिन 2026 ने हमें गुची वॉक दे दी. एंड द आर्टिस्ट अरूप खान इज हैविंग हर मोमेंट. जिन्होंने 5 साल पहले ये गाना बनाया था एंड हैड नो आइडिया कि एक इंटरनेट ट्रेंड से हमें गाना इतना पसंद आ जाएगा. सो थैंक यू जेन ज़ी. अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. अरूप खान का गुची इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: How can you listen to this song and not start doing that step, man? Arup Khan ki awaaz mein, that was Gucci on our special shout out this week. And agar aapko nahi pata ki main kaun se step ke bare mein baat kar rahi hu, to aap kahan hain, aapke charan kahan hain? Oh my god, internet aap tak pahunch nahi pa raha hai, aapka peace kitna protected hai. So mad respect to you, par gana bahut acha hai, so you will keep coming back to it. Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी. हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स. गाने का नाम है साडी सुन, दिस वीक ऑन गाना नंबर 3.
1: नंबर 3.
2: हो चुप कर लंग जावे को.

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
1: मिर्ची पर दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 बंदी का नाम है आरजे कनिका। ये वो शो है जहां हम हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन आपके लिए लेकर आते हैं, यानी कि वीकली पॉप रिपोर्ट कार्ड। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। फॉलो करो, कोई गाना सजेस्ट करना हो बिंदास आके हिट मी अप, फॉलो करना बिल्कुल फ्री है। इट्स टाइम फॉर मी टू टेक यू टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, बट उससे पहले एक क्विक रीकैप राइट फ्रॉम द टॉप। शुरुआत ही काउंटडाउन की एक नई एंट्री के साथ हुई, बंजारे का बरसात डेब्यूज ऑन गाना नंबर 10।
2: प्यारे सा मिलना नहीं, कौन मेरे जैसा चाहेगी।
1: उसके बाद संजू राठौड़ का बैंगल्स ऑन गाना नंबर 9। ज़ारा खान एंड स्केल्स का मूव बॉडी स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग ऑन गाना नंबर 8। अनीश सरकार हृदय का उड़ी उड़ी ऑन गाना नंबर 7। जुनीता गांधी गर्वित प्रियांश का काफी है ना दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। फरक का तारे ऑन गाना नंबर 5। मिट्टा रॉर का शीशा स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग 22 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर

this week on Gaana Number 4. Harsh Nussi ka Saadi Sun this week on Gaana Number 3. And the top two songs of the week. इस हफ्ते के टॉप दो गानों में कुछ तो रीशफल हुआ है. पिछले हफ्ते से तीन पोजीशन ऊपर जंप करके राघव कौशिक का गाना, गाने का नाम है दरमिया, रेखा भारद्वाज राघव कौशिक की आवाज. द सॉन्ग इज फ्रॉम मुसाफिर कैफे. दरमिया इज दिस वीक ऑन गाना नंबर दो. उसके बाद द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द काउंट डाउन, 22 हफ्तों से बरकरार. पिछले तीन हफ्तों से ये गाना नंबर वन की पोजिशन को रिटेन करके बैठा है. बंजारे का गाना, गाने का नाम है बैरन, स्टिल ऑन गाना नंबर. दोनों गाने दरमिया और नंबर दो, बैरन और नंबर एक, बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बद्दी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Bala Banquet Edison.
3: Listener MA, back to back gana sunega. Back to back gana sunega. Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot. Yes.

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans. Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मुझे लगता है हर किसी के अंदर एक बावर्ची होता है। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। और सबने ना कभी कुछ ना कुछ तो कुक किया होता है, फिर चाहे वो हॉस्टल में तुम्हारे 2 मिनट नूडल्स हो या फिर चाय। तो हम सब कहीं ना कहीं तो बावर्ची होते ही हैं। इसी टाइटल को रखकर ऋषिकेश दा ने उस जमाने की एक बड़ी ही खूबसूरत फिल्म बनाई विद राजेश खन्ना एस बावर्ची एंड जया बच्चन जी। इस फिल्म में बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, एके हंगल साहब, असरानी साहब, दुर्गा खोटे। तो आज ना इसी मूवी की कहानियां बताऊंगी जो कि मैं कुक नहीं करके आई हूँ, वो सच में ये खट्टी मीठी किस्से एक्चुअली में ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दिस फिल्म हुए थे। शुरुआत करेंगे फिल्म की कास्ट और क्रेडिट से। वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: हूं वाली मेम साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूं। यहां आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

अगर ये दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला ला ला ला। बस बस बस बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया। म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए। रेडी 1 2 3 4 ला।

इससे पहले तक किसी भी फिल्म में ऐसा नहीं हुआ था। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज ना ऋषिकेश दा, राजेश खन्ना, जया भादुड़ी जी की फिल्म बावर्ची की बात हो रही है। आपको पता है इससे पहले किसी भी इंडियन फिल्म में ऐसा नहीं हुआ था कि कास्ट और क्रेडिट को ना दिखाया जाए। हर फिल्म में जैसे क्रेडिट दिए जाते हैं ना, ये फिल्म पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें क्रेडिट्स फिल्म के शुरुआत में नहीं दिए गए। फिर क्या किया गया, अगर आपने ये फिल्म देखी है तो पता होगा, और अगर नहीं देखी है या फिर बहुत पहले देखी थी तो मैं याद दिलाऊंगी। कम राइट बैक विद मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
2: जिसके शब्दों में आग है,
1: जिसकी आवाज में जादू है,
2: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक।
1: आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
3: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
4: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
3: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
5: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
3: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
1: एक ही होता है।
3: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये यूनिक आइडिया फिल्म के डायरेक्टर ऋषिकेश दा का था। पुरानी जींस पर हाय, मैं हूं श्रेया एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द लेजेंडरी फिल्म बावर्ची, जो कि ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाई थी। राजेश खन्ना थे, जया बच्चन थी और भी बहुत सारे एक्टर्स थे। अब इस फिल्म में पहली बार ऐसा हुआ कि क्रेडिट्स नहीं दिए गए, यानी देयर वर नो टाइटल कार्ड्स। तो फिर क्या किया गया था, इसमें अमिताभ बच्चन जी के वॉइस ओवर ने हर एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया था और ये यूनिक आइडिया पहली बार किसी फिल्म में देखा गया था। अच्छा, अमिताभ बच्चन उस टाइम पे बहुत बिजी थे, लेकिन अपने बिजी स्केड्यूल में से क्यों उन्होंने टाइम निकाला, ये अभी बताऊंगी श्रेया के साथ। वापस आओ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
2: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
3: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
4: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
5: रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मेमल्स के साथ एक्सपेरिमेंट ये पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था। इट वॉज द फिनोमिनल ऋषिकेश मुखर्जी जिन्होंने ये सोचा भी और अपनी फिल्म बावर्ची में किया भी। पुरानी जीन्स पर हाय, मेरा नाम है श्रेया और मैं बात कर रही थी द लेजेंडरी फिल्म बावर्ची की, ऋषिकेश दा की डायरेक्टेड, जिसमें बावर्ची बने थे राजेश खन्ना, उनकी लव इंटरेस्ट बनी थी जया बच्चन जी। और इस फिल्म में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि कास्ट एंड क्रू के नाम नहीं दिए गए थे, बल्कि एक बहुत यूनिक आइडिया सोचा ऋषिकेश दा ने, एंड दैट वाज कि हर एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए अमिताभ बच्चन का वॉइस ओवर यूज किया गया। अब अमिताभ बच्चन उस टाइम पे बहुत बिजी थे, तो ऋषिकेश दा उनसे ये फेवर मांगने में थोड़ा कतरा रहे थे। उन्होंने जया जी से वाइल शूटिंग द फिल्म ऐसे ही मुस्कुरा के बात बात में कह दिया कि काश अमित ये काम कर पाता। ये बात जया जी ने घर जा करके अमित जी को डिनर पे बताई। अमिताभ बच्चन और जया जी के लिए ऋषिकेश दा फादरली फिगर थे, हमेशा से एक बड़े भाई थे। जैसे ही अमित जी ने ये बात सुनी, वो ऋषिकेश दा के घर पहुंच गए और उनसे नाराज होके कहा, दादा ये बात आप मुझसे आके नहीं कह सकते थे, आपको जया की जरूरत पड़ी इसके लिए। ऋषिकेश दा ने मुस्कुरा दिया और उसके बाद तो वी ऑल नो व्हाट हैपेंड। पुरानी जीन्स पर ऐसे बहुत सारे किस्से हैं मेरे पास, तो बस वापस आओ श्रेया के साथ।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans, Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ना ये दोनों डेटिंग फेज में थे। पुरानी जीन्स पर उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, इस जमाने की श्रेया के साथ। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी बावर्ची की थोड़ी देर पहले। तो इस फिल्म के दौरान अमिताभ बच्चन और जया जी ना एक दूसरे से मिलजुल रहे थे, एक दूसरे को समझ रहे थे, वो प्यार में धीरे धीरे पड़ रहे थे। तो क्या होता था कि अमित जी जया जी को मिलने फिल्म के सेट पे जाते थे। अब सेट पे तो उनको उस टाइम के सुपरस्टार काका यानी राजेश खन्ना भी मिलते थे, जिन्हें अमिताभ बच्चन थोड़े अखरते थे। अच्छा, काका उस टाइम पे अपने स्टारडम के खुमार में भी थे। अमिताभ बच्चन बिजी जरूर थे, उनके पास फिल्में बहुत थीं, लेकिन जनरली उनकी फिल्में इतनी खास चल नहीं रही थी। ऐसे में काका उनको ताने मारा करते थे, रिमार्क्स पास किया करते थे। क्या अमिताभ बच्चन को गुस्सा आया या फिर उनकी तब की गर्लफ्रेंड जया जी को, बताऊंगी थोड़े से गानों के बाद। मुझे बहुत मजा आता है आपको ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाने में, क्योंकि फिर मुझे यकीन होता है कि आप वापस यहाँ होंगे। सो कम राइट बैक। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया।

0: घोड़ा चतुर घोड़ा ये क्या रहा घोड़ा चतुर घोड़ा चतुर एक पे रहना या घोड़ा बोला या चतुर बोला गा
1: एक चतुर नार करके सिंगार
2: एक चतुर नार बड़ी होशियार
1: मेरे मन के द्वार ये घुसत जात
2: अपने ही जाल में फंसत जात हम

काका बोले तो राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन जी को बहुत सारे ताने मारते थे। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही है ऋषिकेश दास द्वारा डायरेक्टेड फिल्म बावर्ची की। तो मैं कहाँ पे छोड़ के गई थी बात? हाँ, मैं ये बता रही थी कि ये वो टाइम था जब अमिताभ बच्चन एंड जया जी वर डेटिंग। वो एक दूसरे को मिल रहे थे, जान रहे थे, समझ रहे थे, धीरे धीरे प्यार में पड़ रहे थे। तो अमित जी के पास बड़ी सारी फिल्में थी, वो बिजी भी थे, लेकिन उनकी फिल्में इतनी चल नहीं रही थी। ऐसे में द सुपर सक्सेसफुल राजेश खन्ना जब उनको सेट पे देखते तो ऑफकोर्स उन्हें वो कॉम्पिटिशन लगते और वो उनको बहुत सारे ताने मारते। अमिताभ बच्चन भी सुन लेते, जया बच्चन भी सुन लेती। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब काका ने एक बहुत ही खराब शब्द कहा। इस शब्द को सुन करके जया जी का सब्र का बांध टूट पड़ा और उन्होंने काका को जाकर के उनके कान में एक ऐसी बात बोली जिसके बाद से उन्होंने कभी भी अमिताभ बच्चन को कुछ नहीं कहा। वो शब्द क्या था अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी।

0: न्यू जर्सी की स्ट्रीट पर।
1: कभी बाथरूम की चार दीवारों के बीच,
0: कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच छुपे होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट,
1: द माइक इज रेडी। आर यू इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक। अभी रजिस्टर करें, व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
2: लिस्नर में बैक टू बैक गाना सुनेगा,
3: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
2: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
4: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मनहूस, ये कह के बुलाया था काका ने अमिताभ बच्चन जी को। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही है बावर्ची फिल्म की। इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले ऋषिकेश दा, फिल्म के मेन लीड राजेश खन्ना और फिल्म की हीरोइन जया बच्चन। ये वो टाइम था जब जया बच्चन जया बहादुरी थी और अमिताभ बच्चन बहुत सारी फिल्में कर रहे थे लेकिन उनकी फिल्म सक्सेसफुल नहीं हो रही थी, वो फिल्में फ्लॉप होती जा रही थी एक के बाद एक। ये वो टाइम था जब जया जी और अमिताभ बच्चन प्यार करने लगे थे एक दूसरे से, तो अमित जी ना बावर्ची के सेट पे उनसे मिलने जाते थे और हाँ ऋषिकेश दा तो उनके दोस्ती थे। ऐसे में राजेश खन्ना को बहुत अखड़ते थे। राजेश खन्ना चलते फिरते अमिताभ बच्चन को कोई ना कोई ताना मार ही देते थे। पर एक दिन ऐसा आया जब जया जी के सब्र का बांध टूट गया और वो था जब राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन को कहा, मनहूस, तुम मनहूस हो, जिस भी फिल्म में जाते हो वो फ्लॉप हो जाती है। ये बात जया जी के दिल पे सीधे जाके चुभी। उनको इतना गुस्सा आया कि अमित जी उन्हें चाय पे वापस बैठाते रहे, बैठ जाओ छोड़ो जाने दो। जया जी गुस्से में उठी, राजेश खन्ना के पास गई और उनके कान में कहा, एक दिन पूरी दुनिया देखेगी कि ये आदमी क्या बनेगा और आप क्या रह जाएंगे। इस एक लाइन के बाद वो वापस आके चाय पीने लगी। एंड आफ्टर दिस काका ने अमिताभ बच्चन को कभी ताना नहीं मारा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया, और भी किस्से हैं उस जमाने के, तो गाने सुन करके यहीं वापस आना।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
2: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा एक और चीज में ये फिल्म बावर्ची खास थी। पुरानी जीन्स पर हाय, मेरा नाम है श्रेया और आज मूवी बावर्ची की बात कर रहे हैं। राजेश खन्ना, जया बच्चन एंड ऑफ कोर्स डायरेक्टेड बाय ऋषिकेश मुखर्जी। राजेश खन्ना यानी काका उस टाइम पे ना सुपरस्टार थे, बल्कि कहा जाता है कि इंडिया के वो फर्स्ट सुपरस्टार थे। उनके साथ हर हीरोइन ने कई सारी फिल्मों में काम किया था, फिर चाहे वो शर्मिला टैगोर हो, मुमताज जी हो, आशा पारेख हो, जीना तमान हो, तनुजा जी हो, ऑल ऑफ देम। लेकिन सिर्फ एक हीरोइन थी जो उस टाइम पे अपने स्टारडम के पीक पे थी, पर काका से थोड़ी दूरी बना के चलती थी। उन्होंने राजेश खन्ना के ऑपोजिट एज इज लव इंटरेस्ट सिर्फ एक ही फिल्म में काम किया और वो थी बावर्ची। जया जी और राजेश खन्ना की ये रोमांटिकली पेयर अप होने वाली पहली और आखिरी फिल्म थी, इसीलिए है ना ये यूनिक फिल्म, क्योंकि ऋषिकेश दा इन दोनों को एक साथ ले आए थे इस पिक्चर में। पुरानी जीन्स पर मेरा नाम है श्रेया, वापस आओ, बातें तो अभी बहुत सारी बाकी हैं उस जमाने की।

0: शायद तू क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के? अच्छा।

0: लोगों को लगा कि ये टोपी राजेश खन्ना ने फिल्म के कॉस्ट्यूम के चक्कर में पहनी है, लेकिन इसका रीजन तो कुछ और ही था। हाय, मैं हूँ श्रेया और आप सुन रहे हैं मुझे पुरानी जीन्स पे, और आज बात हो रही है द फिनोमिनल फिल्म बावर्ची की। अच्छा, ऋषिकेश दास जब ये रोल लेकर के पहुंचे राजेश खन्ना के पास, तो उन्हें लगा था कि शायद काका मना कर दें, क्योंकि तब काका इमोशनल रोल्स तो कर रहे थे, लेकिन उनको साथ में अच्छा दिखना बहुत पसंद था, गुड लुक्स। सो राजेश खन्ना अपने कपड़ों को लेकर के, अपने कॉस्ट्यूम्स को लेकर के बहुत पर्टिकुलर होते थे। जब उन्हें पता चला कि इस फिल्म में वो बावर्ची का रोल प्ले करेंगे और उन्हें एक बावर्ची जैसे कपड़े पहनने हैं, तो उन्होंने हामी भर दी। ऋषिकेश दा को बड़ा अचंभा हुआ। फिर राजेश खन्ना ने एक बात कही कि उनके सर से बावर्ची की टोपी, अगर आप देखो ना, एक पॉइंटेड सी टोपी पहने हैं वो, जिसे उन्होंने एक सेकेंड के लिए भी फिल्म में नहीं उतारा। सो काका ने कहा कि इस पूरी फिल्म में वो ये टोपी पहने रहेंगे। तो ऋषिकेश दा ने आंखें छोटी करते हुए उनको शक की निगाहों से देखते हुए पूछा कि राजेश, तुम ये टोपी कॉस्ट्यूम के लिए पहनना चाहते हो या फिर कोई और रीजन है? काका ने मुस्कुरा के पता है क्या कहा, कि उनके बाल कम हो रहे हैं और टोपी की वजह से वो छिप जाएंगे। पुरानी जीन्स पर मेरा नाम है श्रेया, और भी बातें बताऊंगी ना, वापस तो आओ।
1: टोपियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: आप सुन रहे हैं
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

0: लोगों को लगा कि ये टोपी राजेश खन्ना ने फिल्म के कॉस्ट्यूम के चक्कर में पहनी है, लेकिन इसका रीजन तो कुछ और ही था। हाय, मैं हूँ श्रेया और आप सुन रहे हैं मुझे पुरानी जीन्स पे, और आज बात हो रही है द फिनोमिनल फिल्म बावर्ची की। अच्छा, ऋषिकेश दा जब ये रोल लेकर के पहुंचे राजेश खन्ना के पास, तो उन्हें लगा था कि शायद काका मना कर दें, क्योंकि तब काका इमोशनल रोल्स तो कर रहे थे, लेकिन उनको साथ में अच्छा दिखना बहुत पसंद था, गुड लुक्स। सो राजेश खन्ना अपने कपड़ों को लेकर के, अपने कॉस्ट्यूम्स को लेकर के बहुत पर्टिकुलर होते थे। जब उन्हें पता चला कि इस फिल्म में वो बावर्ची का रोल प्ले करेंगे और उन्हें एक बावर्ची जैसे कपड़े पहनने हैं, तो उन्होंने हामी भर दी। ऋषिकेश दा को बड़ा अचंभा हुआ। फिर राजेश खन्ना ने एक बात कही कि उनके सर से बावर्ची की टोपी, अगर आप देखो ना, एक पॉइंटेड सी टोपी पहने वो, जिसे उन्होंने एक सेकेंड के लिए भी फिल्म में नहीं उतारा। सो काका ने कहा कि इस पूरी फिल्म में वो ये टोपी पहने रहेंगे। तो ऋषिकेश दा ने आंखें छोटी करते हुए उनको शक की निगाहों से देखते हुए पूछा कि राजेश, तुम ये टोपी कॉस्ट्यूम के लिए पहनना चाहते हो या फिर कोई और रीजन है? काका ने मुस्कुरा के पता है क्या कहा? कि उनके बाल कम हो रहे हैं और टोपी की वजह से वो छिप जाएंगे। पुरानी जीन्स पर मेरा नाम है श्रेया, और भी बातें बताऊंगी ना, वापस तो आओ।
1: में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
2: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
3: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
4: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
7: Radio Mirchi, it's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ऋषिकेश दाना बंगाली फिल्मों से बहुत इंस्पायर होते थे, बहुत इम्प्रेस होते थे और इसीलिए उनकी कई सारी फिल्में बंगाली फिल्म से ही इंस्पायर थी। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। बावर्ची की बात हो रही है। ऋषिकेश दा ने बनाई थी, राजेश खन्ना और जया बच्चन थी विद अ लॉट ऑफ अदर एक्टर्स। ए के हंगल थे, असरानी साहब थे, दुर्गा खोटे थी। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि बावर्ची भी एक बंगाली फिल्म से इंस्पायर थी और इसका नाम था गोल्पो होलियो सोटी। ये फिल्म तपन सिन्हा ने बनाई थी। बनी तो ये 1966 में थी, लेकिन जब ये ऋषिकेश मुखर्जी ने देखी थी, उन्होंने तभी सोच लिया था कि वो ये फिल्म राजेश खन्ना के साथ हिंदी में बनाएंगे। पुरानी जीन्स पर आज इसी फिल्म की बातें चलती रहेंगी, तो श्रेया के साथ वापस आओ।

Gulu.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
2: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
3: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
4: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पर आप श्रेया के साथ, मेरा जाने का टाइम तो हो गया है पर आपको पता है ना मैं अकेले नहीं जाती हूँ। इस समय एक गाना चूज करके मैं और आप मिल करके हाईवे तक घूम के आते हैं, तो चलो गाड़ी में जल्दी से बैठो।

0: तो आज का मेरा हाईवे हेट पहली मुलाकात पे, एंड स्पेशली जब आप उनसे फर्स्ट टाइम मिलने वाले होते हो ना, तो वो जो एक्साइटमेंट होता है ना कि क्या बातें होंगी, वो मुझसे क्या कहेगा, मैं उससे क्या पूछूंगी, आगे कॉन्वर्सेशन कैसे बढ़ाएंगे, अच्छा हम कैसे लग रहे होंगे एक दूसरे को, ये सब सवाल होते हैं ना, तो आज उसी एक्साइटमेंट पे
1: आज उनसे पहली मुलाकात होगी।
0: यही गाना सुनते हुए चलते हैं। On that note, this is Shreya signing off. आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो फेसबुक और इंस्टा पे, RJ Shreya with love. ये है मेरा हैंडल, that's RJ SHREYA Shreya with love.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: उठे सबके कदम, देखो रम पम पम।

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
2: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
3: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
2: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
3: रेडियो मिर्ची
4: 92.7 FM,
5: Radio Mirchi, New Jersey, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
1: जिसके शब्दों में आग है,
0: जिसकी आवाज में जादू है,
1: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक।
0: आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27 एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: अभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

चल चल चल चल चलत चलत जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

गायत्र्यास्तु परम नास्ते, गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। ऋषियों ने इसीलिए गायत्री को महामंत्र कहा है। जो कोई इस मंत्र का शास्त्रोक्त विधि से पारायण करता है, उसके सारे पाप शाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। गायत्री मंत्र के मनन से धन धान्य संतति समृद्धि बढ़ती है तथा मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। आइए इस महामंत्र का प्रारंभ वैदिक रीति से करते हैं। सर्वप्रथम पवित्रीकरणम्।

ध्यानम। अब हम गायत्री का ध्यान करेंगे। ओम नमस्ते देवी गायत्री सावित्री त्रिपदेक्षरे अजरे अमरे मातः त्राहि माम शरणागतम। ओम। हे सच्चित आनंद स्वरूप परम पिता परमात्मा, हम आपका ध्यान करते हैं। आप इस सौर मंडल के अधिपति सूर्य के भी संपूज्य हैं। हमें सन्मार्ग पर चलने की सतत प्रेरणा दो।

0: इस हरकत ने ही बरकत दी है क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या गंडा लेकर जाएगा?
1: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mirchi.
2: It's hot.

0: morning, only on Mirchi. It's hot. Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: लेट गो करना इतना डिफिकल्ट क्यों होता है, चलिए इसे समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: जब हम बात कर रहे थे, हमने पावर टू टॉलरेट की बात की, पावर टू एडजस्ट की बात की। वन ऑफ द पावर्स यू सेड, आपने मुझे बताया, वो है पावर टू लेट गो।
1: जी।
3: और ये मुझे बड़ा इंट्रीगिंग इसलिए लगता है कि ये सबसे डिफिकल्ट चीज है करना, क्योंकि ये जो बात होती है ना हमारे दिमाग में जो चलती रहती है, ये इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, इसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव कैसे किया, ये ऐसे कैसे कर सकता है, ये जो चीज है, जो मेंटल साइकिल है ना, बड़ा मुश्किल होता है। तो ये पावर टू लेट गो जो है, चाहे वो लॉस हो, बिट्रेयल हो, गिल्ट हो, एंगर हो, लव भी हो, लॉस तो है ही
1: जी,
3: ये कैसे इंसान, व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट टू लेट गो,
1: होल्ड ऑन करते हैं, और जितना ज्यादा समय जिस चीज को होल्ड ऑन करते हैं उतना ज्यादा डिफिकल्ट होता है लेट गो करना। पहले तो करना चाहते हैं कि नहीं, दैट इज द फर्स्ट थिंग। कई लोग करना ही नहीं चाहते, कहते मैं तो ये बात जीवन भर
3: नहीं छोड़ूंगा,
1: नहीं भूलूंगा। सो यू नो आई हैव कम अक्रॉस पीपल जो छोड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो ये चीज रियलाइज नहीं करते कि पकड़ने में नुकसान उनका है।
3: जी,
1: बना भाव ये है कि दर्द में आप है, बात आपने पकड़ी है, आपके मन में चल रही है, आप उस चीज में जो दर्द क्रिएट कर रहे हैं, पर आपको ऐसा लगता है कि आपने पकड़ के रखी है तो शायद वो दर्द में है।
3: हाँ, लेकिन ऐसा नहीं, दर्द में हम ही हैं और दुखी भी हम ही हैं।
1: हमें लगता है मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, आई विल नेवर फॉरगिव यू। सो व्हेन वी से आई विल नेवर फॉरगिव यू, इन अ वे यू आर सेइंग, आपको पता नहीं चलता, पर इन अ वे यू आर सेइंग कि मैं हमेशा दर्द में रहूंगी।
3: हाँ हाँ, ये आपने पहले भी बात कही थी और ये बहुत खूबसूरत बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हम अपने ही दिमाग में चला रहे होते हैं, हम ही परेशान हो रहे होते हैं और हम ही लेके बैठे होते हैं, शायद सामने वाला तो आगे बढ़ भी गया हो जिंदगी में।
1: वो बढ़ ही जाता है, कई बार उसको पता भी नहीं होता, कहते अच्छा मैंने ऐसे बोला था, उसको कई बार रियलाइज भी नहीं होता।
3: जी बिल्कुल,
1: कई बार तो बातें इतनी छोटी छोटी होती हैं, बहुत ही छोटी होती हैं, लेकिन सामने वाले को ये भी रियलाइज नहीं होता कि उसकी कोई भूल है। हमारी कोई एक्सपेक्टेशन होती है, फुलफिल नहीं हुई होती तो हम उस चीज के हर्ट में चले जाते
3: सही
1: हैं। इसलिए लेट गो, फर्स्ट थिंग, फर्स्ट डिसीजन ये लेना है कि मुझे लेट गो करना है, बातों को लेट गो करना है कि उसको पकड़ करके रखना है।
3: जी।
1: अब क्यों लेट गो करके रखना है, सिंपल हमने देखा कि क्योंकि मैंने पकड़ के रखा है
3: तो मुझे दुख हो रहा है,
1: तो ये अपने प्रति कंपैशनेट होना है, ये अपने प्रति रहमदिल होना है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Letting go weakness नहीं, बल्कि एक power क्यों होती है? आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो पावर और लेट गो में सिस्टर मुझे ये पूछना है कि इसको पावर क्यों कहते हैं, क्योंकि लेट गो करने से बहुत दुख होता है, बहुत परेशानी होती है, कहीं ना कहीं हम अपने आप को बहुत बरसों तक उसको लेके चलते रहते हैं, इसको पावर क्यों समझा जाता है?
4: लेट गो करने से परेशानी नहीं होती, पकड़ के रखने से परेशानी होती है।
3: हाँ,
4: लेट गो करने को पावर क्यों कहते हैं? जैसे ही आपने लेट गो किया
3: तो फ्री महसूस
4: फ्री महसूस होता है। कभी कभी हमारे पास भी लोग जब स्पिरिचुअल रिट्रीट्स के लिए आते हैं, एक्सरसाइज भी कराते हैं, चाहे कुछ देर के लिए भी उनको, कि आप इसको लेट गो करो या जो हो गया पास्ट को फुल स्टॉप लगाओ या आप उसको फॉरगिव कर दो या माफ करो, तो एकदम उनको बहुत हल्कापन फील होता है, फ्री फील होता है, क्योंकि वो आपने पकड़ के दिया था। व्हेन यू वर होल्डिंग ऑन तब परेशानी हो रही थी, तब तकलीफ हो रही थी।
3: लेकिन अक्सर मैं देखता हूँ कि कई बार अपने घरों में भी होता है, सबके घरों में होता होगा, कि जब एक बुजुर्ग है वो अपनी जिंदगी देखते हैं पीछे, या किसी के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ तो बोलते उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे पैसे लूट लिए, उसने मुझे ठग लिया। जो बुजुर्ग होते हैं वो बोलते हैं कि यार ऐसा मेरे साथ हुआ, और वो बात रोज रोज दोहराते रहते हैं। तो अगर ये एक पावर है और अगर करना आसान होता तो बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन अक्सर हर घर में ना ये बात रिपीट पे लूप की तरह चलती रहती है। तो एक आसान तरीका कैसे है इसको चेंज करके दूसरी तरफ जाने का?
4: आसान है, मुश्किल है वो तो सेकंड स्टेप होता है
3: जी।
4: पहले होता है करना है कि नहीं करना है।
3: करना है ये तो समझ में आ रहा है, वरना हम ही दर्द में रहेंगे।
4: हाँ, पहले, क्योंकि कई लोग नहीं करना चाहते, वो कहते नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे तो ये बात नहीं भूलनी, मरते दम तक भी नहीं भूलनी, पीछे वालों को भी कह करके जाएंगे कि मेरे जाने के बाद भी उनसे बात नहीं करना।
3: हाँ, ऐसा होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं,
4: नहीं तो मेरी आत्मा को शांति
3: नहीं
4: मिलेगी। सो द फर्स्ट थिंग, ठीक है, अगर आपने इस चीज को रियलाइज कर दिया कि अच्छा ठीक है लेट गो करना है, तो उसमें जब भी कोई बात होती है, जैसे आप देखें आप चाय पी रहे, चाय पीते पीते थोड़ा सा गिर जाता है, तो आप पहली चीज क्या करते हैं?
3: कोई एक गीला कपड़ा लेके उसको पोंछने की कोशिश करते हैं।
4: आपने ये देखा होगा कि कई बार चाय का कप भी वहीं छोड़ देते हैं।
3: हाँ।
4: और पहले जाकर के उसको साफ करेंगे।
3: हाँ।
4: आप बेड पर बैठ करके पी रहे हैं, गिर गया तो आप फटाफट चादर उठाते हैं, क्योंकि वो चादर तक रहे
3: अंदर मैट्रेस में
4: ना जाए। मना जितना जल्दी आप करेंगे
3: उतना अच्छा होगा। वाह, क्या एग्जाम्पल दिया, बहुत बढ़िया।
4: जितना जल्दी करेंगे उतना इजी है, नहीं उतना इजी है। अभी आपको वो दाग चादर से निकालना इजी है, मैट्रेस से निकालना बहुत मुश्किल है।
3: हाँ, निकलेगा ही नहीं, वो तो मैट्रेस में रह जाता है, मैट्रेस तो आप उसको खोल के नहीं ठीक करेंगे।
4: निकल तो जाता ही है आजकल ऐसे ऐसे चीजें, मतलब भाव मेरा ये है कि कितनी भी पुरानी बात हो निकल तो जाएंगे, ये नहीं हम कह सकते, मेहनत लगती है।
3: जगजीत सिंह साहब की एक बहुत खूबसूरत गजल है, उसमें एक लाइन है कि गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, लाख करे कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है।
4: बस ये चीज है, वो वक्त बहुत लगता है, फिर उस वक्त में कई बार इतना पेशेंस नहीं होता, कई बार किसी को कहेंगे ना हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि इतने इतने साल आपने पकड़ के रखा है, इतने साल आपने नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज करी है, आज आप एक दिन में सोचते हैं कि मैं लेट गो कर रहा हूँ अब सब ठीक हो जाए, वो नहीं होता है,
3: नहीं होता,
4: क्योंकि आपको वो वक्त हीलिंग के लिए, आपको भी हीलिंग के लिए वक्त लगता है, सामने वाले को भी हीलिंग में वक्त लगता है। तो बेटर तो ये होता है कि बहुत जल्दी लेट गो करें, उसी सेकंड करें। अगर समझो आपने किसी को कुछ बोल भी दिया, आप तुरंत उस चीज को अपोलोजाइज कर लें, या आपने कोई चीज पकड़ के रखी है, समझो आपके मन में नेगेटिव चलना शुरू हुआ, जैसे शुरू हुआ आप उसको फुल स्टॉप लगा करके जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म कर लें, जितना फास्ट हो। जैसे हम कहते हैं तुरंत दाग धोए नहीं तो वो दाग उतना गहरा हो जाएगा। चलो आपको उस दिन नहीं रियलाइज हो रहा, तुरंत नहीं रियलाइज हो रहा, कम से कम हर दिन के एंड में तो करना ही चाहिए।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हार्ट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बार बार मन बेचैन हो जाना, आखिर उसकी असली जड़ क्या है? चलिए इस पर बात करते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो एंड में जैसे एट द एंड ऑफ एवरी डे हमें रियलाइज हो या ना रियलाइज हो, हम क्या कर सकते हैं? एक एग्जांपल, एक क्रिया बताइए।
4: हर चीज की एक ओरिजिनल नेचर होती है, जैसे पानी की शीतलता देना है, अग्नि की गर्माहट देना है, ऐसे ही हमारी जो ओरिजिनल नेचर है वो पीस है।
3: जी बिल्कुल,
4: आत्मा जो है वो शांत स्वरूप है, उसको शांति चाहिए नहीं है, वो है ही
3: शांत।
4: अगर आपको आपके ओरिजिनल नेचर एक्सपीरियंस नहीं हो रही है,
3: माना
4: आपने कुछ पकड़ के रखा है।
3: अच्छा, तो अगर मन कौतूहल है, मन में अशांति है, तो फिर ओरिजिनल नेचर पे हम नहीं है।
4: नहीं, अब कोई डिस्कम्फर्ट है, अनइजीनेस है, ओवर थिंकिंग है, अंदर ही अंदर आप किसी के बारे में थोड़ा बैठ जाइए। अभी दिन पूरा होने से पहले
3: बैठे हम,
4: बैठे उसको अब आप रियलाइज करें क्या है,
3: क्या हो रहा है, क्या चल रहा है मेरे दिमाग में,
4: क्या चल रहा है। समझो कुछ नेगेटिव थिंकिंग चल रही है किसी के बारे में, उसने ऐसा किया, ये क्या हो रहा है, दाग गहरा हो रहा है। शांति वाइट है, आप उस पे जैसे ब्लैक सर्कल बनाते जा रहे हैं, वो इतना बड़ा हो जाएगा कि सुबह उठ करके आपको लगेगा अरे कैसा मना जीवन कैसा है, मुझे शांति चाहिए, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत। लेकिन वो आपने किया अपने संकल्पों से।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: जिंदगी में असल पीस कैसे पाई जाए, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो जब मैं शाम को बैठा और मैंने रियलाइज किया, हर शाम को मैं क्रिया करता हूँ कि यार मेरे मन में चल रहा है, तो उस समय उससे बाहर निकलने के लिए क्या करूँ?
4: रियलाइज किया, पहले तो रियलाइज किया कि पीस नहीं है, डिस्कम्फर्ट है। सेकंड स्टेप रियलाइज किया क्या चल रहा है। मैंने पहली रियलाइजेशन फीलिंग की थी,
3: पहले कि भाई कुछ गड़बड़ है।
4: थॉट नहीं पकड़ में आया, फीलिंग पकड़ में आई। फीलिंग पीस की नहीं है, फीलिंग डिस्कम्फर्ट की, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप वो फीलिंग जो अनईज की है
3: वो कहाँ से आ रही है?
4: वो आपके किसी थॉट से आ रही है, आपकी क्रिएशन है वो। किसी ने कुछ भी बोला होगा लेकिन वो आपके क्रिएशन है। फिर आपने रियलाइज किया कि कुछ वेस्ट चल रहा है। थर्ड, आप उसको ट्रांसफॉर्म करें।
3: अच्छा, ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या बोले अपने आपको?
4: उन्होंने बोला उनका मन ठीक नहीं होगा, अपने ही तो है, अपनों की बातों को पकड़ करके रिश्ते खराब क्यों करने। आई वैल्यू दिस रिलेशनशिप। अच्छा, प्यार से उनसे बात करेंगे, उनको बोलेंगे, लेकिन उनके बारे में नेगेटिव सोचने से क्या फायदा है। यू आर, जैसे हम किसी से बात करते हैं ना, किसी से, ऐसे हम अपने से बात करके अपने को हील करते हैं।
3: वेरी गुड, वेरी नाइस की जिस तरह से हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं अच्छे तरीके से, अपने आप से भी वैसे बात करें और ये बातों को धीरे धीरे छोड़ें।
4: सब यू लेटिंग गो द पेन ना, किसको लेट गो कर रहे हैं? बात तो वही है, देखो बात तो डिलीट हो गई। कहेंगे डिलीट कर दो, तो बात तो डिलीट हो नहीं सकती। क्या डिलीट कर रहे हैं आप? पेन को डिलीट कर रहे हैं।
3: बहुत बढ़िया,
4: चादर तो वही है, आप दाग को डिलीट कर रहे हैं। जो आपने ऊपर से पेन क्रिएट कर लिया
3: उसको डिलीट,
4: आप उसको डिलीट कर रहे हैं, आप अपने को हील कर रहे हैं।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Past trauma ka hamari present life par kya asar hota hai? चलिए इस सच को समझने की कोशिश करते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, कई बार ये जो फीलिंग होती है ना, जो चलता है दिमाग में कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बहुत बार बचपन का ट्रॉमा होता है। और कभी कभी तो ट्रॉमा भी नहीं होता, छोटी छोटी बातों चीज वो गहरी, जैसे आपने वो मैट्रेस वाला एग्जाम्पल दिया कि चाय अगर ऊपर गिर जाए, अगर चादर आपने साफ कर ली तो जल्दी हो जाता है, लेकिन मैट्रेस के अगर अंदर चला जाता है तो बहुत टाइम लगता है। तो पास्ट का जो ट्रॉमा है ना, वो बहुत लंबा चलता है कि मेरे को बचपन में मम्मी ने ऐसा बोल दिया था, पापा ने ऐसा मेरे साथ किया, भाई ने ऐसा किया, टीचर ने ऐसा किया। बहुत बार हम पास्ट को ना बहुत होल्ड ऑन करके रहते हैं, और कभी कभी तो वो इतना अंदर होता है कि वो बैकग्राउंड में चला जाता है और ऐसे ऐसे सिचुएशन में निकल के आता है कि हम रियलाइज भी नहीं करते। तो पास्ट के ट्रॉमा को, वो जो होल्ड ऑन करके रखा है हमने, उसको कैसे लेट गो करें?
4: देखिए, जो चीजें कंट्रोल में नहीं थी, अगर आप अब मैच्योर हैं तो समझे कि पेरेंट्स हम नहीं चूज कर सकते, कुछ सर्कमस्टेंसेस हमारे कंट्रोल में नहीं थी, हमारे साथ कुछ गलत भी हुआ, हमने कुछ गलत देखा या झेला, ठीक है, नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, हो गया। अब आप उस दर्द में सदा जीना चाहते हो या हील होना चाहते हो, वो तो आपकी चॉइस है ना। आज उस चीज के साथ क्या करना है, ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, हाँ नहीं होना चाहिए था, पहले तो हुआ क्यों?
3: सही बात है,
4: पहले तो हुआ क्यों? हर एक का जो कर्म है वही किसी ना किसी रूप में लौट करके आता है, इसमें आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। आज जिस भी जगह पर हमारा जन्म होता है, जैसे लोग हमें मिलते हैं, जो चैलेंजेस और सिचुएशंस हमारे साथ आते हैं, है तो हर एक के ही कर्मों का हिसाब किताब। अच्छे के साथ तो हम नहीं कहते भगवान ने मेरे साथ इतना अच्छा क्यों किया, मुझे लूला लंगड़ा क्यों नहीं पैदा किया, मुझे अंधा बहरा क्यों नहीं पैदा किया, हम तो नहीं कहते, नहीं बोलते ना। और कभी कभी तो शुक्रिया भी नहीं करते कि इतना
3: अच्छा सब कुछ मिला,
4: अच्छा सब कुछ मिला, ठीक है, करना तो चाहिए वैसे तो, पर वो भी मिलता तो क्या है, हमारे ही श्रेष्ठ कर्म का फल है, चाहे वो अच्छा शरीर है, अच्छा परिवार है, लविंग फैमिली है, धन का कोई अंदर में संकल्प नहीं है, सब कुछ अच्छा है, वो भी अच्छा कर्म है, पर कुछ अच्छा नहीं था आपके जीवन में, कुछ अच्छा नहीं था तो ये भी है, तो कोई हर आत्मा के अपने पूर्व का ही हिसाब किताब है, हो गया हो गया। अब आप डिसाइड कर सकते हैं आपको आगे का जीवन कैसे जीना है, आपको उस ट्रॉमा को पकड़ करके रखना है। आपकी ये तो ऐसा आप कह रहे हैं कि आज आपको पता चला कि आपको कैविटी थी, अभी वो रूट में चला गया, अब क्या करें? तो चला गया रूट में, तो रूट से भी तो निकाला जा सकता है ना। अब रूट से निकालने में आपको ज्यादा सेटिंग लगेंगे, कैविटी होती तो एक सेटिंग में हो जाता, रूट से निकालना है तो हो सकता है 6 सेटिंग भी लगे, टाइम ही तो ज्यादा लगेगा ना, निकल नहीं सकता, ये तो नहीं हो सकता ना। पेशेंस और मेहनत से आप हील कर सकते हैं अपने को।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
1: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
0: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
2: मत मारे कालीन भैया, बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
3: अब सही सुर लगा रहे मुमताज।
4: मिर्जापुर की गद्दी के बारे में सुने?
2: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
4: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
5: XL Entertainment presents Mirzapur the movie, releasing worldwide on 4th September at your nearest cinema.
6: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
7: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
6: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
7: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
6: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Hislin.
8: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
9: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
10: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
11: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। It's a journey. Chalo is journey pe with Mirchi Recharge Mornings. Subah 6 se 8. Only on Mirchi. It's hot.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: लेट गो करना और गिव अप करना, क्या दोनों एक जैसे होते हैं? आइए फर्क समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: अब मुझे जानना है सिस्टर श्रेया, लेट गो के सिलसिले में जब हम बात कर रहे हैं, कई बार लेट गो का गलत मतलब भी निकाल लिया जाता है कि हम आसानी से, कुछ लोग होते हैं वो आसानी से लेट गो कर देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ कुछ चीजों में हम शायद गिव अप भी कर रहे हैं। लेट गो और गिव अप करने में भी एक फर्क है, राइट?
4: बहुत फर्क है,
3: और वो मुझे समझना है कि ऐसा किसी को मझधार में छोड़ना लेट गो नहीं है, वो गिव अप करना है।
4: लेट गो हम दर्द को कर रहे हैं, गिव अप हम व्यक्ति पर करते हैं।
3: हाँ, सही बात है।
4: लेट गो हम किस चीज का कर रहे हैं? हम उस दर्द का कर रहे हैं जो हमने पकड़ के रखा था, वो जो बिटरनेस का कर रहे हैं, उस रिजेंटमेंट का कर रहे हैं, उस हर्ट और एंगर का कर रहे हैं। गिव अप हम रिश्ते पर गिव अप कर देते हैं। आई गिव अप ऑन यू, आई गिव अप ऑन यू, मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकता या और नहीं सहन कर सकता। तो आप गिव अप कमजोर की निशानी है, लेट गो शक्तिशाली की निशानी।
3: वाह, क्या बात।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
1: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
0: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
2: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज। The king of mortgage industry.
6: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
3: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
7: RK Jewels से खरीदिए डायमंड ज्वेलरी इंडिया वाले प्राइस में और पे कीजिए इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में ओनली एट RK Jewels इज़लिन बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: अपने अंदर की ईगो को लेट गो कैसे करें, चलिए इस पर बात करें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: एक किताब है जॉन पुरकिस ने लिखी है, द पावर ऑफ लेटिंग गो। जब इतनी बार हो रही है तो आई थिंक ये जरूर सबको पढ़नी चाहिए। और उसमें पांच, बहुत ज्यादा मोटी किताब नहीं है, बहुत सारी चीजें लिखी हैं, और उसमें पांच जो मूल बातें हैं और वो लिखते हैं कि बी प्रेजेंट, ये बहुत जरूरी है, लेट गो ऑफ योर थॉट्स, लेट गो ऑफ द पास्ट, लेट गो ऑफ द फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में भी सोच सोच के हम अपने आप को परेशान कर लेते हैं। एंड लेट गो ऑफ हु यू थिंक यू आर। तो आपके अंदर जो ईगो है उसको बहुत निकालना जरूरी
4: है। हमने कहा था ना, वर्क इन प्रोग्रेस है। आपने कहा कि हम अपने को क्यों नहीं माफ कर सकते, क्योंकि वी डोंट लेट गो ऑफ दैट इमेज कि मैं परफेक्ट हूँ।
3: सही बात है।
4: हम बहुत डरते रहते हैं लोग क्या कहेंगे, हमें बहुत अप्रूवल चाहिए, वैलिडेशन चाहिए। हम ये रियलाइज नहीं करते कि हम वर्क इन प्रोग्रेस हैं, तो हमारे से गलती हो सकती है, हमारे से भूलें हो सकती हैं।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
1: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
0: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
1: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington।
2: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
3: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
2: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
4: 20 minutes of back-to-back music brought to you by RK Jewels, best quality, best price. Only on Radio Mirchi 92.7 FM and 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, नाम है प्रिसिला, शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स जो अभी अभी शुरू हुआ है। अब तुम फिलहाल कहीं पर भी हो, ट्रैफिक में फंसे हुए हो, कॉफी के बिना फंक्शनिंग करने का नाटक कर रहे हो, या फिर चाय चढ़ाकर उसकी अदरक वाली खुशबू का मजा ले रहे हो, या फिर घर से वर्क फ्रॉम होम करते हुए कैमरा ऑफ करके एक्चुअली क्या कर रहे हो किसी को नहीं पता है, बट वेयर एवर यू आर, मैं बोलो तो प्रिसिला इज हियर विद यू एंड आई एम गोना स्टे विद यू फॉर अ फ्यू आवर्स। और आज का मॉर्निंग का फील जो है काफी एक्स्ट्रा स्पेशल है, बिकॉज इट्स कृष्ण जन्माष्टमी, सो ऑल दोज हु आर सेलिब्रेटिंग, सबको हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। आज मक्खन चोरी करने से लेकर मटकी फोड़ने तक सब कुछ करना, एकदम मिर्चीदार तरीके से करना, मजे से करना, एंड मे योर डे हैव अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फ्रॉम किशन जी, एंड साथ साथ में ढेर सारी मस्ती हो और जीरो अननेसेसरी ड्रामा हो। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ, मेरे पास तुम्हारे लिए है मिर्चीदार बैंगर्स, ढेर सारी मिर्चीदार बातें, स्टोरीज अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स एंड अ लॉट मोर कमिंग योर वे, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही चिपक के बैठे रहो। मिर्ची मॉर्निंग्स हैज जस्ट बिगिन, कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड

0: ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਤਾ ਲੈ ਲਾ
1: ਮਰ ਜਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਭੰਗੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
4: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
5: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
4: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
6: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS, NMLSID 2108069।
7: जय गुरुदेव। अवसर आवी ने उभो छा आंगणे, चलो भेगा मड़ी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए। आपने गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोड़ायो, जेमा
8: 13 सितंबर रविवार
7: सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना, अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती, अने 20 सितंबर सांजे 4 वागे विसर्जन। वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर, विस्काटवे ऑन 7323578200। जय गुरुदेव।
9: क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकेयर या गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को लेकर कोई सवाल है, तो यूनाइटेड हेल्थ केयर प्राउडली अनाउंस करता है हमारा नया एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर की ओपनिंग।
10: ये सेंटर कन्वीनियंटली लोकेटेड है 561 US Highway 1 एडिसन विक शॉपिंग मॉल के अंदर।
9: यहाँ आपको अपने हेल्थ केयर बेनिफिट्स और कवरेज ऑप्शंस समझने के लिए पर्सनलाइज्ड सपोर्ट मिलेगा। हमारी प्रोफेशनल टीम आपको फ्री कंसल्टेशन देगी ताकि आप मेडिकेयर, इंडिविजुअल और फैमिली हेल्थ प्लान्स और गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को बेहतर समझ सके। तो आज ही विजिट कीजिए एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर।
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
13: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
14: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
13: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
14: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
13: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islington.
15: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
16: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
15: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
14: एक ही होता है।
15: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड इट्स टाइम फॉर अ लिटिल टाइम ट्रैवलिंग विदाउट द जेट लैग। चलो रिवाइंड करके पता करते हैं आज के दिन में क्या खास हुआ था। 476 में रोम का वेस्टर्न एम्पायर ऑफिशियली प्लॉट ट्विस्ट ले लेता है। रोमुलस ऑगस्टुलस को एम्परर के पोस्ट से हटा दिया गया था बाय नन अदर देन ओडोएसर, बेसिकली रोमन एम्पायर का लॉग आउट कर दिया था। 1609 में फास्ट फॉरवर्ड टू मैनहट्टन, नेविगेटर हेनरी हडसन डिस्कवर्स द आइलैंड व्हाइल एक्सप्लोरिंग फॉर द डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और आज हम जहां ट्रैफिक, रेंट और कॉफी के बीच सर्वाइव करते हैं, वहां पर हडसन को बस आइलैंड मिला था। 1886 में अपाचे लीडर जेरोनिमो सरेंडर्स टू द यूएस ट्रूप्स एट स्केलेटन कैनियन इन एरिजोना। 1888 में जॉर्ज ईस्टमैन गेट्स द पेटेंट फॉर हिज रोल फिल्म हैंडहेल्ड कैमरा एंड रजिस्टर्स कोडाक। 1998 में लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन ऑफिशियली लॉन्च गूगल एज अ प्राइवेट कंपनी, और तब से दुनिया का मोस्ट यूज सेंटेंस है गूगल कर ले यार। एंड 2016 में पोप फ्रांसिस कैनोनाइजेस मदर टेरेसा एज अ सेंट एट वैटिकन सिटी। और हाँ, आज जन्माष्टमी भी है, सो एवरीवन सेलिब्रेटिंग हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी, मे योर डे हैव कृष्ण जी का विजडम, काफी सारा मक्खन विद असली मिर्ची। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।
2: Authentic, original, and veteran.

0: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
1: जिसके शब्दों में आग है,
0: जिसकी आवाज में जादू है,
1: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
0: आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
5: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzylin.
6: छुरा क्यों घोंपे?
7: मत मारे कालीन भैया, बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
8: अब सही सुर लगा रहे मुमताज।
9: मिर्जापुर की गद्दी के बारे में सुने?
7: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
9: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
10: XL Entertainment presents मिर्जापुर द मूवी, रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड ऑन 4th September एट योर नियरेस्ट सिनेमा।
11: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी, एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट। कॉल पंडित रामदेव फॉर ऑल योर एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस ऑन लव, रिलेशनशिप्स, बिजनेस एंड करियर। कॉल 732-366-6777।
12: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
13: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
12: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
14: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS, NMLSID 2108069।
15: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
16: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
15: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
16: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
15: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
17: किसका है ये तो?
18: एक आवाज जिसने रोमांस को एक नई पहचान दी, एक लेजेंड जिसकी मेलोडीज पिछले 3 दशकों से हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कती हैं।
19: अमित जेटली of Sai USA Inc. proudly presents Sonu Nigam live in concert on his biggest tour ever.
5: Friday, 11th September, 8:30 PM. Witness history at Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City.
19: Do not miss the greatest musical night. Tickets available at Ticketmaster and SaiUSAInc.com.
18: Listener MA, back to back gana sunega.
20: Back to back gana sunega.
18: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: भी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
6: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
8: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
9: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
10: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
11: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
12: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
11: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
13: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
14: अमित जेटली ऑफ साई USA Inc. presents Sonu Nigam live in the Revolution Tour, Friday, September 11th at Hard Rock Live, Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
15: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
16: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
15: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
17: Tera kya hoga, Kalia?
18: Sardar? मैंने आपका नमक खाया सरदार,
17: अब मिर्ची खा।
19: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Close to the end of the first hour, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में ये है मिर्ची मॉर्निंग्स और अब वेदर चेक कर लेते हैं। फिलहाल इट्स 73 डिग्रीज फारेनहाइट, इट्स अ बिट क्लाउडी लेकिन फील हो रहा है 74 डिग्रीज फारेनहाइट के आसपास। गुड न्यूज ये है कि बस अब सनशाइन एक्सपेक्टेड है, सो दोस क्लाउड्स आर बेसिकली जस्ट फिनिशिंग देयर शिफ्ट एंड हेडिंग होम। आज का टेम्परेचर विल हैंग बिटवीन 72 डिग्रीज फारेनहाइट टू 84 डिग्रीज फारेनहाइट, लेकिन फील होने वाला है 74 से 86 डिग्रीज फारेनहाइट के बीच में, बिकॉज ह्यूमिडिटी, सनलाइट एंड विंड मिलकर अपना ही वातावरण बना रहे हैं। एंड आफ्टर द 18 millimeters of rain in the last 24 hours, today is looking pretty dry. 0 millimeters ka precipitation expected over the next 24 hours. So, barsaat ka tension nahi hai, ghar par umbrella chhodkar ja sakte ho. Yesterday we went from 69 to 87 degrees Fahrenheit ka temperature and aaj ka high jaane wala hai 84 degrees Fahrenheit ke aaspaas. So, aaj ke din you can say the weather is behaving itself. And abhi filhal tum drive kar rahe ho bahar jaakar kuch errands run kar rahe ho ya phir ऐसे घूमी घूमी के लिए बाहर आए हो, वेयर योर सन प्रोटेक्शन SPF 50 प्लस प्लस प्लस के साथ वाला, कैरी योर वाटर बॉटल, हैव प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ऑफ कोर्स मिर्चीदार वाइब्स को बना कर रखो। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में एंड व्हाइल यू आर एट इट कम से हाई टू मी इंस्टाग्राम और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS एंड व्हाट्सएप मी एट 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La virpa, la burka.
1: Mirchi, burka.
2: हेलो,
3: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
2: हाँ जी
3: यार, कमाल कर दिया आपने। जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
2: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
3: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार। सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
2: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
3: फोटो? बहुत अच्छा है। सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बकवा दिए यार। सारे दिमाग
2: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
3: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
2: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
3: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
2: अरे शर्म की क्या बात है सर,
3: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार। तूने किया क्या ये?
2: किसी का
3: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
2: लेंस कौन सा लगाया? नहीं
3: क्या, कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े गायब?
2: नहीं
3: मैं कल को
2: फोटो।
3: अरे लेंस ऐसे
2: पूरे
3: कपड़े कौन से? मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
2: अरे
3: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
2: नहीं साहब देखिए, केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
3: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे।
2: नहीं सर क्या बात, चुन के बनाया है?
3: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है। वो खड़ा है, जितने बराती आए हैं सबके कपड़े गायब है। ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
2: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
3: गड़बड़
2: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी। हेलो ऐसी कोई बात नहीं
3: यार, इतना बुरा लग रहा है। हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है नहीं।
2: दिखाइए
3: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार।
2: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए।
3: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
2: कहाँ होता है बताइए?
4: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
9: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
10: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
11: Suno, brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
12: to aaiye, fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
11: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
12: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Iselin.
13: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
14: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
13: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
15: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
16: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
17: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, best quality at the lowest prices.
16: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
18: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
19: किसका है ये तू?
9: एक आवाज जिसने रोमांस को एक नई पहचान दी, एक लेजेंड जिसकी मेलोडीज पिछले 3 दशकों से हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कती हैं।
4: अमित जेटली ऑफ साई USA Inc. proudly presents सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन हिज बिगेस्ट टूर एवर।
2: फ्राइडे 11 सितंबर 8:30 PM विटनेस हिस्ट्री एट हार्ड रॉक लाइव ETS अरेना अटलांटिक सिटी।
4: डू नॉट मिस द ग्रेटेस्ट म्यूजिकल नाइट। टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर एंड साई USA Inc. .com।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
4: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
5: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
4: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
6: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS, NMLSID 2108069।
7: आवर बिजनेस वाज गेटिंग रिप्ड ऑफ बिफोर विद हाई प्रोसेसिंग फीस। आई एम सो ग्लैड वी स्विच्ड टू NRS Pay.
8: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
9: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
10: Desi khana.
11: Desi shopping.
10: Desi culture.
11: Aur desi entertainment.
10: Bas ek hi destination.
11: Indo-American Community Fair, September 12th or 13th, Shri Krishna Mandir, Morganville.
12: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
13: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
14: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़िलिन, न्यू जर्सी।
15: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
16: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
15: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
16: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
15: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
17: Amit Jetli of Sai USA Inc. presents Sonu Nigam live in the Revolution Tour. Friday, September 11th at Hard Rock Live, Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
18: Tera kya hoga, Kalia?
19: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
18: Ab, mirchi kha.
20: Radio Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे तुम्हें मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब हमारे बर्थडे बेबीज के लिए हैप्पी हैप्पी टाइम आ चुका है, क्योंकि हम विश करने वाले हैं तुमको हैप्पी बर्थडे टू यू। खूब सारा केक खाओ, कैलोरीज को भूल जाओ और अपने आप को ट्रीट करते रहो। एंड अब आई एम गोना ट्रीट यू विद द लिस्ट ऑफ सेलिब्रिटीज जो आज तुम्हारे साथ अपना हैप्पी टू यू सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले द क्वीन बी हरसेल्फ, यानी कि बियॉन्से का आज हैप्पी बर्थडे है। देन वी गॉट कॉमेडी रॉयल्टी डेमन वेन्स, म्यूजिक माइस्ट्रो मार्क रॉनसन, द हिलेरियस विटनी कमिंग्स, येलोस्टोन स्टार वेस बेंटली एंड वॉइसेस यू मे रिकॉग्नाइज फ्रॉम फ्यूचरामास जॉन डिमार्जियो। और लिस्ट यहाँ खत्म नहीं होती है, कैंडी अलेक्जेंडर इज ऑल्सो सेलिब्रेटिंग टुडे। स्पोर्ट्स स्टार्स में से गोल्फ लेजेंड टॉम वॉटसन, ओलंपिक स्विमिंग चैंपियन डॉन फ्रेजर, बेसबॉल हॉल ऑफ फेमर माइक पियाज़ा एंड WWE सुपरस्टार जेवियर वुड्स। तो आज के बर्थडे बेबीज, टुडेज असाइनमेंट इज सिंपल, ईट द केक, एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्स, बी वेरी वेरी हैप्पी, ट्रीट योरसेल्फ एंड बिहेव लाइक यू आर एक्चुअली बियॉन्से, क्योंकि पर्सनालिटी तो सेम ही होगी ना। हैप्पी बर्थडे टू यू वंस अगेन, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। यू कैन सेंड मी योर बर्थडे शाउट आउट एट मिर्ची प्रिस, ये इंस्टाग्राम पर मेरा हैंडल है, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप भी कर सकते हो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Bala Banquet Edison.
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
6: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
5: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
7: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
8: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
9: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
8: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
9: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
10: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
11: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
11: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
10: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
12: Amit Jetley of Sai USA Inc. presents Sonu Nigam live in the Revolution Tour, Friday, September 11th at Hard Rock Live, Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
13: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
14: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
13: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
5: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
6: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
5: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
7: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
15: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
16: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
15: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
17: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
15: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
18: एक ही होता है।
15: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: feeling strong. Mirchi Mornings. Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, my दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, मेरा नाम है प्रिसिला और अब सुनने वाले हो तुम मिर्ची पर गोल्ड रेट अपडेट।
2: Rajjewels.com wishes everyone happy and healthy morning. Happy Janmashtami to all. Janmashtami की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी Rajjewels की टीम की तरफ से। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,400, $4,400 पर ट्राई अउंस गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। लेबर डे वीकेंड पे आने वाले मंडे को Rajjewels आपके लिए अवेलेबल है, ताकि जब आप गोल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड में इन्वेस्ट करना चाहें, 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट के साथ स्पेशल फाइनेंसिंग ऑप्शन जिसके अंदर कोई हिडन फी, कोई इंटरेस्ट। आज गोल्ड का प्राइस लॉक करके अप्रूव होने पे ज्वेलरी आपके साथ घर जाती है और 9 किश्तों में पैसे Rajjewels की टीम को देते हैं। एक बार फुल पेमेंट के बाद आपकी क्रेडिट लिमिट दोबारा ओपन होती है नए गोल्ड पीस गोल्ड ज्वेलरी को घर ले जाने के लिए। आइए Rajjewels.com के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
1: And there you go, latest gold rate update सुना तुमने exclusively on Mirchi Mornings। मैं हूँ Priscilla, तुम्हारे साथ में। मुझसे कनेक्ट करने के लिए Instagram पर ढूंढो Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS। अगर WhatsApp पर कनेक्ट करना है तो 9033 Mirchi is my number, 9033-647244। Stay tuned and stay hot।
0: This gold update is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड अब टाइम है सबसे पहले इंडिया बॉर्न मनजीत सिंह बेदी हैज बीन प्लेस्ड ऑन द FBI's मोस्ट वांटेड फ्रॉडस्टर्स लिस्ट ओवर एन अलेजेड बेनिफिट्स फ्रॉड स्कीम इन्वॉल्विंग एटलीस्ट $600,000। द FBI हैज ऑफर्ड अप टू $150,000 फॉर इन्फॉर्मेशन लीडिंग टू हिज अरेस्ट एंड कन्विक्शन। रिपोर्ट्स टुडे से ही हैज बीन अरेस्टेड इन पंजाब। नंबर टू पर आफ्टर हरीश राणा बिकेम द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया परमिटेड पैसिव यूथनेशिया। हिज फैमिली डोनेट his corneas and other organs. His family has since learned that his eyes went to a recipient and his mother says she hopes to meet that person. And lastly, Belgium's Prime Minister Bart De Wever said Europe has failed to heed earlier warnings from India about economic dependencies and China's trade practices. His message was pretty straightforward. India saw the issue earlier, Europe didn't listen, and now they are paying attention. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 for this hour with me, Priscilla. Mujhse connect karo. I'm on Instagram and X at Mirchi Pris. That's my handle name. And WhatsApp par mera number hai 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi. Iscabana, puscabana, sacabana. Rambana. Burca, burca. La virpa, la burca.
1: Mirchi, burca. हेलो
2: मिल गया
3: मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपका?
1: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
3: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज़ सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज़ सुन के। आज जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
1: क्या तुझे पागल लगता
3: नहीं वो? मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
1: क्या कहना है?
3: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना
1: मेरी
2: बात है। अच्छा चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू चारू चलो। हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता
1: हूँ।
2: चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा नहीं, रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: पीठ पे छुरा क्यों घोंपे?
7: मत मारे कालीन भैया,
6: बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
8: अब सही सुर लगा रहे मुमताज।
9: मिर्जापुर की गद्दी के बारे में सुने?
6: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
9: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
10: XL Entertainment presents Mirzapur the movie, releasing worldwide on 4th September at your nearest cinema.
11: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
12: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
11: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
12: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
11: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
13: The mortgage industry has changed over the years, par hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
14: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
13: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
14: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
15: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
16: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
15: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
17: Jai Gurudev. अवसर आवीने उभो छा आंगणे, चलो भेगा मळी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए। आपणे गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोडायो, जेमा
18: 13 सप्टेम्बर रविवार
17: सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना, अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती, अने 20 सप्टेम्बर सांजे 4 वागे विसर्जन। वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर, विस्काटवे ऑन 732-357-8200। जय गुरुदेव।
19: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
11: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
4: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
0: क्या आपको health insurance, Medicare या government assistance programs को लेकर कोई सवाल है? तो United Healthcare proudly announce करता है हमारा नया Edison Asian Resource Center की opening.
9: ये center conveniently located है 561 U.S. Highway 1 Edison, Wick Shopping Mall के अंदर.
0: यहाँ आपको अपने healthcare benefits और coverage ऑप्शन समझने के लिए पर्सनलाइज सपोर्ट मिलेगा। हमारी प्रोफेशनल टीम आपको फ्री कंसल्टेशन देगी ताकि आप मेडिकेयर, इंडिविजुअल और फैमिली हेल्थ प्लान्स और गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को बेहतर समझ सके। तो आज ही विजिट कीजिए एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर।
7: आरके ज्वेल्स से खरीदिए डायमंड ज्वेलरी इंडिया वाले प्राइस में और पे कीजिए इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में ओनली एट आरके ज्वेल्स इसलिन बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
20: तेरा क्या होगा कालिया?
21: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
20: अब मिर्ची खा।
22: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और अब जिसका तुम वेट कर रहे थे वो आ चुका है मिर्ची मॉर्निंग्स पर, यानी कि
2: मिर्ची राशि जोन।
1: It is यानी मेष राशि। आज थोड़ा इनर पीस पे फोकस किया जाए, योगा, मेडिटेशन, कुछ भी दैट गेट्स योर माइंड टू स्टॉप रनिंग अ मैराथन बिफोर ब्रेकफास्ट। लकी कलर इज सैफरन, लकी नंबर इज 7। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, एनर्जी थोड़ी सी लो हो सकती है, सो डोंट ट्राई टू बी एवरीबॉडी सुपर हीरो टुडे। रेस्ट भी प्रोडक्टिविटी का ही पार्ट होता है, ओके। लकी कलर इज स्टील, लकी नंबर इज 14। जेमिनी यानी मिथुन राशि, इवनिंग With friends, absolutely. बस फूड के साथ थोड़ा सा कंट्रोल रखना, because your stomach did not sign up for all you can eat buffet. Lucky color is coral, lucky number is 22. Cancer यानी कर्क राशि, आज अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, थोड़ा सा गॉसिप करो, थोड़ा सा लाफ्टर थेरेपी ले लो। ये फ्री थेरेपी दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलती है। Lucky color is lavender, lucky number is 9. लियो यानी कि सिंह राशि, थिंक पॉजिटिव, ड्रीम बिग एंड फोकस दैट रॉयल लियो एनर्जी ऑन व्हाट यू एक्चुअली वांट। मैनिफेस्टेशन मोड ऑन करो। लकी कलर इज एमरल्ड ग्रीन, लकी नंबर इज 31। वर्गो यानी कन्या राशि, आउटिंग्स एंड सोशल प्लान्स आर गिविंग यू गुड वाइब्स टुडे। सो हाँ, कैलेंडर में जो मे भी लिखा है, मेक इट अ यस। Lucky color is peach, lucky number is 18. And that's it for your Rashi Zone part 1. Baki bachi 6 rashiyon ko lati hu thodi si der mein. Tab tak tum suno ye mirchidar bangers aur mujhe follow karo Insta aur X par, mera handle hai Mirchi Pris, and WhatsApp par number hai 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: जर्सी की स्ट्रीट पर,
1: कभी बाथरूम की चार दीवारों के बीच,
0: कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच छुपे होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट,
1: द माइक इज रेडी। आर यू इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक। अभी रजिस्टर करें, व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Inefficient,
5: very complex,
6: clumsy or
7: confusion ही confusion.
8: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
10: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
10: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Iselin.
11: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
12: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
13: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
14: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
15: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 Oak Tree Road, Iselin, न्यू जर्सी।
16: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
17: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
3: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
18: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
19: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
18: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
19: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
18: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
20: किसका है ये तो?
21: एक आवाज जिसने रोमांस को एक नई पहचान दी, एक लेजेंड जिसकी मेलोडीज पिछले 3 दशकों से हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कती हैं।
22: अमित जेटली ऑफ साई USA Inc. प्राउडली प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन हिज बिगेस्ट टूर एवर।
23: फ्राइडे 11 सितंबर 8:30 PM, विटनेस हिस्ट्री एट हार्ड रॉक लाइव, ETS अरेना, अटलांटिक सिटी।
22: डू नॉट मिस द ग्रेटेस्ट म्यूजिकल नाइट। टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर एंड saiusainc.com।
24: लिसनर में बैक टू बैक गाना सुनेगा,
25: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
24: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Energy Mornings with Priscilla. It's hot.
1: मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. Welcome back to Rashi Zone Part द्वितीय.
2: मिर्ची Rashi Zone.
1: Libra yani tula rashi, schedule packed hai, life hectic hai, but health is looking steady. So busy raho, but body ko unpaid intern mat samjho yaar. Lucky color is sky blue, lucky number is 26. Scorpio yani ki vrushchak rashi, tumhara ek generous gesture kisi ka stress kam kar sakta hai, aur surprisingly tumhara bhi. Kindness zero cost pe aata hai, lekin full returns ke saath aata hai. Lucky color is burgundy, lucky number is 11. Sagittarius yani dhanu rashi, mood swings ko thoda sa leash pe rakho. Close relations mein unnecessary फ्रिक्शन से बचना है तो रिएक्ट करने से पहले ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. लकी कलर इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 34. कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, एक्साइटमेंट अच्छी चीज है लेकिन इंटेंसिटी को थोड़ा सा मैनेज करो यार. हर इमोशन को 4K में फील करना जरूरी है क्या? नहीं ना. लकी कलर इज चारकोल, लकी नंबर इज 5. एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आज दूसरों को जज करने की टेम्पटेशन से बचो क्योंकि कार्मा नहीं तो कॉमेंट सेक्शन तो रेडी ही है. लकी कलर इज मस्टर्ड, लकी नंबर इज 27. And last but not the least, Pisces yani mean rashi, tumhari optimism or hopes are glowing today. Fresh outlook, positive vibes, basically your inner sunshine is clocking in. Lucky color is rose gold, lucky number is 16. And that's it for your Rashi Zone. Main hoon Priscilla tumhare saath mein. Follow kar lo mujhe, Mirchi Pris is my handle name on Instagram and X, and 9033647244 is my number on WhatsApp. Stay tuned and stay hot.

0: ही जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
6: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
8: अमित जेटली ऑफ साई USA Inc. presents सोनू निगम लाइव इन द रेवोल्यूशन टूर, फ्राइडे सितंबर 11th एट हार्ड रॉक लाइव अटलांटिक सिटी। बुक नाउ एट ticketmaster.com एंड saiusainc.com।
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
7: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, इज़लिन।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: हेलो, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में एंड अब टाइम हो चुका है मिर्ची मॉर्निंग्स को रैप अप करने का. लेकिन बिफोर आई लेट यू गो, लेट मी टॉक अबाउट बॉलीवुड. आमिर खान रिसेंटली रिकॉल्ड शूटिंग फॉर आइकॉनिक दिल चाहता है का सीन विद अक्षय खन्ना एंड अपेरेंटली अक्षय खन्ना ने आमिर खान को 17 टाइम्स स्लैप किया. 17. फरहान अख्तर जिन्होंने फिल्म को डायरेक्ट किया ही रिमेम्बर्स दैट बाय द टाइम दे फिनिश्ड शूटिंग आमिर के फेस पर एक प्रॉपर मार्क बन चुका था और एक साइड ऑलमोस्ट स्वोलन था और लाल हो चुका था. मतलब कि मेथड एक्टिंग का भी एक लिमिट होना चाहिए, लेकिन बॉस आमिर खान के परफेक्शन की कोई लिमिट नहीं होती है. मुझे तो यार कोई ऊंची आवाज में बात भी कर लेगा तो मेरा रोना निकल जाएगा. और यहाँ पर कट परफेक्ट होने तक थप्पड़ पड़ते रहे हैं और उसके बाद शायद आमिर खान ने पूछा होगा आइस पैक किधर है भाई, कोई गाल पर आइस पैक लगा दो. एंड विद दैट फिल्मी थप्पड़ स्टोरी मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला हैज ऑफिशियली कम टू एन एंड फॉर दिस वीक. यू हैव अ फैबुलस लेबर डे वीकेंड. स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड प्लीज रियल लाइफ में 17 स्लैप्स वाला सीन रिक्रिएट करने की जरूरत नहीं है, चाहे कितना भी क्लोज दोस्त क्यों ना हो. और अभी तुम्हारा दिन खत्म नहीं हुआ है तो जाओ अपना दिन कॉन्कर करो और साथ साथ में मुझे फॉलो भी कर लो. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप करो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244. दैट्स मी साइनिंग ऑफ. कीप इट मिर्ची एंड स्टे हॉट.

0: समय रैना फैंस कृपया ध्यान दें।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप एंड आई एम 110% श्योर इस इंसान का नाम सुनते ही आपके कान खड़े हो गए होंगे, आपने रेडियो सेट्स के वॉल्यूम बढ़ा दिए होंगे, तो प्लीज सुन भी लो कि क्या ही चर्चा करने वाली हूँ। सो आपको समय का वो कमबैक एक्ट तो याद होगा, स्टिल अलाइव, एंड स्पेशली द मैन आउट देयर जो समय के उस सेट के बाद अपने पापा को आई लव यू बोल रहे थे। वेल, आपके लिए डायरेक्टर हरीश व्यास जो हैं वो एक फिल्म लेकर आ रहे हैं और इसका नाम है हरिओम। नहीं नहीं, नाम पे मत जाइएगा, कोई भक्ति वाली मूवी नहीं है ये। बट इस फिल्म का इमोशनल कोर है द टाइमलेस टग ऑफ वॉर जो फादर सन के इस ओल्डेस्ट राइवलरी में नजर आती है। इनफैक्ट इस कहानी के जरिए एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने की कोशिश भी की गई है कि भाई कैसा होता अगर हम अपने पापा को बता पाते कि भाई हम उनसे कितना प्यार करते हैं एंड वाइस वर्सा। सो द बैक स्टोरी इज दैट इस फिल्म के साथ डायरेक्टर हरीश व्यास अपनी ट्रिलॉजी कम्प्लीट कर रहे हैं। सो उन्होंने अपना फीचर फिल्म डेब्यू किया था विद मूवी अंग्रेजी में कहते हैं, और इस फिल्म में संजय मिश्रा के साथ साथ पंकज त्रिपाठी, एकावली खन्ना और अंशुमन झा भी नजर आए थे, जहां एक रिलेशनशिप में आई लव यू बोलने की इम्पोर्टेंस को एक्सप्लोर किया गया। कई दफा हमने देखा है कि रिलेशनशिप को अगर काफी टाइम हो जाता है तो लोग एक दूसरे को आई लव यू बोलना भूल जाते हैं, ये सोच के कि यार उसको तो समझ में आता ही है क्या है क्या नहीं है। बट एक्चुअली दैट मूवी रिमाइंड्स यू कि प्यार को सिर्फ अज्यूम नहीं किया जा सकता, इट नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड। और उसके बाद आई थी उनकी दूसरी फिल्म दैट इज हम भी अकेले एंड तुम भी अकेले, जिसका बैकड्रॉप भी कुछ ऐसा सा ही था। सो इन शॉर्ट, अगर आपको अच्छी स्टोरी टेलिंग पसंद है, अगर आप ऐसे टॉपिक्स को एक्चुअल में एक्नॉलेज करते हैं, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच हरिओम जो रिलीज हो रही है ऑन द 18th of September, वो भी थिएटर्स में। एंड सीरियसली यार, इट्स हाई टाइम जब हम अच्छे डायरेक्शन, अच्छी कहानी को अप्रिशिएट करना शुरू करें। ये नहीं कि बस बड़े नाम हो मूवी में, बड़ा बजट हो तो हम उसको ही सपोर्ट करेंगे। बाकी तो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, बच्चे को गुब्बारा काफी और समझदार को इशारा काफी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana.
2: Yabana.
1: Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mirchi, murga.
3: हेलो,
4: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
3: हाँ जी।
4: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
3: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
4: अरे फोटो आके देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
3: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
4: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिगाड़ दिए यार, सारे दिमाग।
3: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
4: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
3: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन्स लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
4: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
3: अरे शर्म की क्या बात है सर,
4: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
3: किसी का
4: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार मैं।
3: लेंस कौन सा लगाया? नहीं
4: क्या, कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
3: गाय
4: नहीं दी दी
3: मैं
4: कल को
3: फोटो खींचे।
4: अरे लेंस ऐसे
3: पूरे
4: कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
3: सर शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
4: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
3: नहीं साहब देखिए, केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
4: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे
3: हैं। सर क्या बात, चुन के बनाया है?
4: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
3: अरे नहीं सर कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
4: गड़बड़
3: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
4: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी
3: दिखाइए
4: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
3: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए,
4: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है,
3: कहाँ होता है बताइए।
5: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
10: No!
11: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय ASE सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
12: कि जसनीत नू निहाल सिंह वापस पिंड लेके आ पाएगा?
13: जे तू जसनीत नू वापस ना लेके आया पुत्र, तो मेरा भी मरीदा मुंह देखेगा।
12: कि पिंड वाले जसनीत नू वापस पिंड देख पाएंगे? वेखो सिंह वर्सेस कौर 2, रिलीजिंग ऑन 11 सितंबर, स्टारिंग गिप्पी गरेवाल, शहनाज गिल, डायरेक्टेड बाय नवनीत सिंह, प्रोड्यूस्ड बाय गिप्पी गरेवाल, रवनीत कौर गरेवाल, श्रीकांत मोहता एंड महेंद्र सोनी।
14: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, लॉग ऑन टू lionmtg.com।
15: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी,
16: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
15: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस, कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
17: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
18: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
17: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
18: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
17: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
19: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे।
0: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा।
7: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
18: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One इज एन ऑल इन वन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सुइट, जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। यस, योर एंटायर बिजनेस। Zoho One इज इजी टू यूज, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One। गेट योर फ्री ट्रायल एट zoho.com/one।
10: Yeah, me, Mirchi, brighten up your day, we would find. दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। रिजेक्टेड बाई टॉक्सिक, डिलेड बाई स्पाइडरमैन, और शुरुआत हुई थी इस फिल्म को लेकर एक बोगस ऑफर के साथ, बट आज इसी मूवी ने हिस्ट्री क्रिएट कर रखी है। बात कर रही हूँ हनुमान अंश की। हाँ जी, जो फिल्म तैयार हुई 2 करोड़ के बजट पे, बट आज इस फिल्म ने अबाउट 80 करोड़ तक कमा लिए हैं ऑन द बॉक्स ऑफिस। इसी को बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ, कितना पावरफुल हो सकता है यार, क्योंकि ये 5th वीकेंड रन चल रहा है इस मूवी का, और ऐसा ही रहा तो इसे 100 करोड़ क्लब में पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। माइंड यू, द मूवी रिलीज्ड ऑन द 31st of July। अगर अभी तक आपने नहीं देखी, देन ऑफ कोर्स इसके बॉक्स ऑफिस नंबर्स की वजह से ही देखने चले जाओ कम से कम। भाई, ये नाम को लेकर कितना बवाल होता है ना हमारे यहाँ, लेकिन सब भूल जाते हैं शेक्सपियर अंकल ने बोला है व्हाट्स देयर इन नेम। एक्चुअली क्या हुआ, 4th of September को रिलीज हुई अर्शद वारसी की फिल्म जीवन भीमा योजना। ओ सॉरी, ये तो पहले उसका नाम था, नाम चेंज करके किया गया जीवन या भीमा कौन। सो बेसिकली इस नाम के ऊपर इसलिए कॉन्ट्रोवर्सी हुई क्योंकि CBFC ने बोला कि भाई फिल्म का नाम जो है हमारे प्रधानमंत्री की जीवन ज्योति बीमा योजना से काफी सिमिलर है, तो इसको तो चेंज किया जाए। सिर्फ उतना ही नहीं, मूवी में कुछ ऑब्सीन विजुअल्स और डायलॉग्स भी हटाए गए। माइंड यू, इट इज अ क्वर्की कॉमेडी जो 1 घंटे 59 मिनट्स के रन टाइम के साथ आई है, जिसमें अर्शद वारसी के अलावा संजीदा शेख और विजय राज जैसे और भी एक्टर्स हैं। हरीश व्यास डायरेक्टोरियल इस फिल्म के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ यार, क्योंकि इसमें ना फादर सन के अल्टीमेट कॉम्बो को दिखाया गया है। हरीश व्यास की इस फिल्म का नाम है ओम का हरी, जिसका ट्रेलर इज आउट, और अगर आपको एक ओवरव्यू लेना है तो प्लीज देखिए ये फिल्म। इट इज अ स्मॉल बजटेड मूवी जिसमें बहुत बड़े बड़े सितारों के नाम नहीं है, बाकी ट्रेलर देखे मैं तो काफी इंप्रेस्ड हूँ टू वॉच द मूवी इन थिएटर्स जो आ रही है 18th of September को। सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। सो टू ऑल द समय राणा फैंस आउट देयर, अगर आपने उनके कमबैक वाले एपिसोड को देखने के बाद अपने पापा को आई लव यू बोलने की शुरुआत कर दी थी, then I guess it's high time कि आप ऐसी फिल्मों को भी सपोर्ट करें। बाकी तो समझदार को इशारा काफी। मिर्ची।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
1: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
2: जिसके शब्दों में आग है,
1: जिसकी आवाज में जादू है,
2: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
1: आज ही रजिस्टर करें, व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: एक आवाज जिसने रोमांस को एक नई पहचान दी, एक लेजेंड जिसकी मेलोडीज पिछले 3 दशकों से हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कती हैं।
6: अमित जेटली ऑफ साई यूएसए इंक प्राउडली प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन हिज बिगेस्ट टूर एवर।
7: फ्राइडे 11 सितंबर 8:30 PM विटनेस हिस्ट्री एट हार्ड रॉक लाइव ईटस अरेना अटलांटिक सिटी।
6: डू नॉट मिस द ग्रेटेस्ट म्यूजिकल नाइट। टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर एंड saiusainc.com।
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलिन।
10: आरके ज्वेल से खरीदिए डायमंड ज्वेलरी इंडिया वाले प्राइस में, और पे कीजिए इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में, ओनली एट आरके ज्वेल्स हिजलिन। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
11: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
12: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
11: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
13: पीठ पे छुरा क्यों घोंपे?
14: मत मारे कालीन भैया, बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
15: अब सही सुर लगा रहे मुमताज।
16: मिर्जापुर की गद्दी के बारे में सुने?
17: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
16: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
18: XL Entertainment presents Mirzapur the movie, releasing worldwide on 4th September at your nearest cinema.
19: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
20: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 Oak Tree Road, Islington, New Jersey।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ,
0: मैं तो बॉलीवुड गेम खेलने की बात कर रही हूँ, आप कहाँ जा रहे हो? मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, एंड यस लाइक एवरी डे इट्स टाइम टू फाइंड मिर्ची फिल्म जी। सो द ड्रिल इज कि आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जाके अपना नंबर भेजना होता है, फिर मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत करती हूँ। तो आज मेरे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे है दीपक जी, कैसे हैं सर?
3: बढ़िया, बताइए।
0: ओके, मुझे तो डर लग रहा है आपके साथ ये गेम खेलने में, पता चला आपने एक बार में ही खत्म कर दिया गेम मेरा।
3: नहीं,
0: मुझे ये बात बोलनी चाहिए आपको, आप छोड़ते ही नहीं, आपके अंदर का फिल्मची जो है ना एकदम बाहर ही आ जाता है। लेट स्टार्ट, देखते हैं आज कैसा होता है।
3: देखते हैं
0: जी। करीना और शाहिद की लास्ट फिल्म एक साथ,
3: उड़ता पंजाब।
0: उड़ता पंजाब में हॉकी प्लेयर कौन है?
3: ये आलिया भट्ट।
0: आलिया भट्ट किस फिल्म में तमिल स्टूडेंट बनी है?
3: टू स्टेट्स, अर्जुन कपूर के साथ आई थी।
0: क्या बात है। टू स्टेट्स में मेल लीड कौन है?
3: अर्जुन कपूर।
0: अर्जुन कपूर की फिल्म जिसमें वो हाउस हस्बैंड बने हैं,
3: की एंड का।
0: की एंड का में किया साहनी का रोल किसने प्ले किया है?
3: करीना कपूर।
0: करीना कपूर किस फिल्म में भैया जी की सेक्रेटरी बनी है?
3: टशन।
0: बिल्कुल टशन। ओके, आगे पूछती हूँ, फिल्म में भैया जी का रोल किसने प्ले किया है?
3: अक्षय कुमार।
0: नहीं सर, यहाँ पे आप गलत हो गए, यहाँ पे चेन ब्रेक करूंगी मैं।
3: करो।
0: बट इतना अच्छा जो गेम यहाँ तक पहुँचाया है उसके लिए ये टैग तो बनता है।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: हाँ जी, तो आप फिलहाल जो मुझे सुन रहे हैं ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा, गेम कंप्लीट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची श्रुति पे जाके अपना नंबर डीएम कीजिए, बाकी आई टेक केयर ऑफ। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
4: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
5: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
4: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ, व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
5: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
6: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
9: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
11: अमित जेटली ऑफ साई USA Inc. presents सोनू निगम लाइव इन द रेवोल्यूशन टूर, फ्राइडे सितंबर 11th एट हार्ड रॉक लाइव अटलांटिक सिटी। बुक नाउ एट ticketmaster.com एंड saiusainc.com।
12: क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकेयर या गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को लेकर कोई सवाल है? तो यूनाइटेड हेल्थ केयर प्राउडली अनाउंस करता है हमारा नया एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर की ओपनिंग।
13: ये सेंटर कन्वीनियंटली लोकेटेड है 561 US Highway 1 एडिसन विक शॉपिंग मॉल के अंदर।
12: यहाँ आपको अपने हेल्थ केयर बेनिफिट्स और कवरेज ऑप्शंस समझने के लिए पर्सनलाइज सपोर्ट मिलेगा। हमारी प्रोफेशनल टीम आपको फ्री कंसल्टेशन देगी ताकि आप मेडिकेयर, इंडिविजुअल और फैमिली हेल्थ प्लान्स और गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को बेहतर समझ सके। तो आज ही विजिट कीजिए एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर।
14: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
15: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
14: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
16: Yeah. Meethi Mirchi. Brighten up your day, we will find a way. On Meethi Mirchi. Aha.
0: Mirchi pe khela ho be.
1: Shruti. श्रुति,
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: एक्सक्यूज मी, यहाँ इस खेल में हम मिर्ची फिल्मची ढूंढते हैं, आप अपने दिमाग के घोड़े इधर उधर ना दौड़ाएं। हाय, सो बेसिकली इट्स टाइम टू फाइंड अनदर मिर्ची फिल्मची। इस गेम की शुरुआत हमने की थी दीपक जी के साथ और अब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं हार्दिक। तो हार्दिक कैसे हो आप?
17: मस्त हूँ, आप बताओ।
0: अरे वाह, मस्त सुन के मैं भी मस्त हूँ। अब तो द क्वेश्चन वॉज की फिल्म टशन में भैया जी का रोल किसने प्ले किया है?
17: अनिल कपूर।
0: वेरी नाइस। अनिल कपूर की फिल्म जो टोटली क्रूज पे शूट की गई है,
17: दिल धड़कने दो।
0: वाओ, दिल धड़कने दो में रणवीर सिंह की बहन कौन बनी है?
17: प्रियंका चोपड़ा।
0: प्रियंका चोपड़ा का आइटम सॉन्ग किस मूवी में है जिसमें वो रख पॉकेट में घोड़ा दे घोड़े को लगाम बोलती है?
17: रामलीला।
0: वेरी नाइस। गोलियों की रासलीला रामलीला में लीला का रोल किसने प्ले किया है?
17: दीपिका।
0: दीपिका किस फिल्म में झूमर के नीचे मरती है?
17: ओम शांति ओम।
18: बहुत बढ़िया। ओम शांति ओम में दीपिका को झूमर के नीचे मारता कौन है?
17: अर्जुन रामपाल अपने मेजर इकबाल।
18: मेरा अगला सवाल यही है, अर्जुन रामपाल ISI एजेंट मेजर इकबाल किस फिल्म में बने?
17: धुरंधर।
18: धुरंधर में हमजा को अंडरकवर एजेंट कौन बनाता है?
17: आर माधवन।
18: बहुत बढ़िया। आर माधवन को फोटोग्राफी का शौक किस फिल्म में?
17: थ्री इडियट्स ऑफ कोर्स।
18: थ्री इडियट्स में रैंचो कौन है?
17: आमिर खान।
18: आमिर खान किस फिल्म में पूरे इंडिया में भागते रहते हैं?
17: पूरे इंडिया में भागते रहते हैं,
18: हाँ जी।
17: लाल सिंह चड्ढा।
18: बहुत ही उम्दा। इसी के साथ आपको भी ये टैग बनता है।
1: मिर्ची फिल्मची।
18: वैसे पूरी दुनिया एक चीज से भागती है, वो है शादी, और इस चीज से आमिर खान तो बिल्कुल नहीं भागते यार। तभी तो 5 जुलाई को चौथी बार परिणय सूत्र में बंधने जा रहे हैं। विशिंग हिम अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस अहेड। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: वो तो बीते जमाने की बात है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
0: बाबू मोशाय, मैं उस जमाने की बात कर रही हूँ जब हिंदी सिनेमा में अगर कोई बड़े बजट की फिल्म होती थी तो ही वो बड़ी कमाई कर पाती थी। बट थैंकफुली गॉन आर द डेज, क्योंकि अब रिसेंट ईयर्स में हमने देखा है कि स्मॉल बजटेड फिल्म में भी जो वेल रिटन हो, यूनिक और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ हो, हैव मैनेज्ड टू कैप्चर द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस एंड हेंस उनका बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस भी अमेजिंग रहा है। एंड यस, आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ इन्हीं लो बजटेड बॉक्स ऑफिस पे अच्छी कमाई करने वाली फिल्मों की बात कर रही हूँ। वेल, इसमें सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म स्त्री, विच वॉज अ हॉरर कॉमेडी डायरेक्टेड बाय अमर कौशिक, स्टारिंग राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी, अपार शक्ति खुराना और अभिषेक बैनर्जी जैसे अमेजिंग एक्टर्स। बाकी इट वॉज द फर्स्ट मूवी इन द कैटेगरी ऑफ हॉरर कॉमेडी जो 18 दिनों में 100 करोड़ क्लब में पहुंच गई थी। हां जी, एंड यू वोंट बिलीव, इस फिल्म को बनाने में सिर्फ 20 करोड़ लगे थे। इम्प्रेसिव राइट? अब भैया, यूनिक स्टोरी लाइन हो, वैसे ये फिल्म रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड थी, हाँ, एंड उसके साथ फाइन परफॉर्मेंसेस हो तो जनता तो अपना प्यार देगी ही। खैर, मेरी इस लिस्ट में और भी कुछ ऐसी ही फिल्मों की बात बाकी है, बट ऑल ऑफ दैट इन अ व्हाइल। तब तक के लिए यू एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana.
2: Rambala.
1: Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mirchi, murga.
3: हेलो
4: हेलो मुकेश जी.
3: कौन
4: मुकेश जी? मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ, राणा मोटर से. आपने जो 1000 दी थी ना, उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था, वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली. थोड़ा
3: नहीं हो पाया भाई.
4: हाँ वो नहीं हो पाया सर.
3: हाँ नहीं हो पाया
4: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी. अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की. सर वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी.
3: नहीं क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज के तुम्हें जब भी गाड़ी पे नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया है. क्या मजाक ही क्या है ये?
4: नहीं मुकेश जी मैं समझ रहा हूँ, वो एक
3: क्या समझ रहे हो भाई.
4: नहीं नहीं आप सही कह रहे हैं. अच्छा मुकेश जी, आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है, ब्रेक काम नहीं कर रहे. सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा.
3: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
4: सर? वो
3: ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया. मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया.
4: नहीं सर एक्चुअली
3: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे.
4: नहीं सर कुछ हो नहीं पाया.
3: क्यों नहीं हो पाया
4: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
3: है
4: सर रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी?
3: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
4: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मतलब हम
3: क्या करा दू
4: सर? मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
3: कैसी FIR? दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
4: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे आप? गुस्सा तो मत करिए कम से कम.
3: क्या गुस्सा ना करूँ, नई गाड़ी थी हमारी.
4: नहीं सर आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारा भी तो उसमें कुछ गया है. हमने भी तो ग्रीस व्रीस लगाया.
3: उसमें
4: ग्रीस ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला है.
3: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगाया. आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में.
4: अच्छा सर
3: मुझे चाहिए अपनी वापस.
4: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
3: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की.
4: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें. अच्छा सर ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा.
5: मुकेश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा.
3: तो जान निकाल दी हमारी.
5: मुकेश आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे. मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए.
3: कुकड़ू कू
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
10: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
9: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
11: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
12: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
11: Buying a home? Our rate saver will beat your locked rate.
12: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding. Service jis par sab kare bharosa.
13: ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ?
14: ਯੂ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ?
15: ਨੋ ਨੋ ਨੋ ਨੋ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ.
14: ਸੇਮ ਨੋ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ.
13: ਕੀ ਨਿਹਾਲ ਬੰਗਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਫੜ ਪਾਏਗਾ? ਵੇਖੋ ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਸ ਕੌਰ 2 ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਔਨ 11th ਸਪਟੰਬਰ ਸਟਾਰਿੰਗ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਬਾਈ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਮਹੋਤਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰ ਸੋਨੀ.
16: Jetly of Sai USA Inc. presents Sonu Nigam live in the Revolution Tour, Friday, September 11th at Hard Rock Live, Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
17: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
18: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी.
19: जय गुरुदेव. अवसर आवीने उभो छे आंगणे. चलो भेगा मळी गणेशजीना आगमननी तैयारी करिए. आपणे गायत्री चेतना सेंटरना गणेश उत्सवमां जोडायो, जेमां
0: 13 सप्टेम्बर रविवार
19: सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती अने 20 सप्टेम्बर सांजे 4 वागे विसर्जन. वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर विस्काटवे ऑन 732-357-8200. जय गुरुदेव.

0: ऐसा ही सब कुछ नहीं होता है बाबू मोशाय।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
0: भाई। पैसों की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब हिंदी सिनेमा में अगर हम देखें तो जिस फिल्म में ज्यादा पैसे लगा करते थे वही फिल्म में बॉक्स ऑफिस पे ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया करती थी। हाँ, ये एक पैटर्न चलता आ रहा था, बट थैंकफुली इन द रीसेंट टाइम्स थिंग्स हैव चेंज्ड, क्योंकि वेल रिटन यूनिक और इंटरेस्टिंग स्टोरीज को तवज्जो मिलने लगी और ऑडियंस का इंटरेस्ट कॉन्टेंट पे चला गया। और इसीलिए आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे ही अमेजिंग बॉक्स ऑफिस परफॉर्मर लो बजटेड फिल्मों की बात कर रही हूँ। लिस्ट में नंबर दो पे लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म बधाई हो, जो साल 2018 में आई थी, विच वाज अ कॉमेडी ड्रामा डायरेक्टेड बाय अमित शर्मा, स्टारिंग आयुष्मान खुराना, नीना गुप्ता, गजराज राव, सुरेखा सिकरी और शिवा चड्डा जैसे सुपर परफॉर्मर्स। प्लॉटलाइन कुछ ऐसा सा है कि मम्मी प्रेग्नेंट हो जाती है और उसकी वजह से बच्चे की लव लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है। भाई साहब, एक तो अमेजिंग परफॉर्मेंस, ऊपर से जो डायलॉग्स हैं, ओहो चुम्मेश्वरी। बाकी टॉकिंग अबाउट द बजट ऑफ द फिल्म, ये 30 करोड़ के बजट में बनी थी, बट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 132.65 crores, हेंस प्रूव्ड दैट कंटेंट इज द बाप। चलो लिस्ट में आगे बढ़ते हुए लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द फ्यू फिल्म्स विद फीमेल लीड जो 100 करोड़ क्लब का हिस्सा बनी। आई एम टॉकिंग अबाउट फिल्म राजी, जो साल 2018 में आई थी, मेघना गुलजार डायरेक्टोरियल, स्टारिंग आलिया भट्ट, विकी कौशल, अमृता खनवलकर, जयदीप अहलावत, सोनी रजदान जैसे अमेजिंग एक्टर्स। भाई एक तो प्लॉट इस मूवी का, ऊपर से हार्ड हिटिंग परफॉर्मेंसेस, एंड टॉकिंग अबाउट द बजट ऑफ द फिल्म, ये 40 करोड़ में बनी थी बट इसने कमाई की 158.77 crores। ओहो, इसलिए बोलते हैं भाई बजट कितना बड़ा है वो फिल्म को एक परफॉर्मर नहीं बनाता, rather it is the content. Khair, meri is list mein aur bhi to filmon ki baat baki hai, but all of that in a while. Tab tak ke liye you enjoy the songs right here on Mirchi with this ladki badi filmy, it's hot.
1: Ek superstar jo kahin chupa baitha hai,
3: jiske shabdon mein aag hai,
1: jiski awaaz mein jadoo hai,
3: aur us chupe hue talent ko chahiye bas ek aisa manch jo puri duniya ko hila de. इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक।
1: आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकेयर या गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को लेकर कोई सवाल है? तो यूनाइटेड हेल्थकेयर प्राउडली अनाउंस करता है हमारा नया एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर की ओपनिंग।
7: ये सेंटर कन्वीनियंटली लोकेटेड है 561 US Highway 1 एडिसन विक शॉपिंग मॉल के अंदर।
6: यहाँ आपको अपने हेल्थ केयर बेनिफिट्स और कवरेज ऑप्शंस समझने के लिए पर्सनलाइज सपोर्ट मिलेगा। हमारी प्रोफेशनल टीम आपको फ्री कंसल्टेशन देगी ताकि आप मेडिकेयर, इंडिविजुअल और फैमिली हेल्थ प्लान्स और गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को बेहतर समझ सके। तो आज ही विजिट कीजिए एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर।
8: This September 12th and 13th, join us at the Indo-American Community Fair at Shri Krishna Mandir, Morganville.
9: Enjoy delicious Indian food, shopping, live cultural performances, a health fair, kids activities and much more. Morning 10 a.m. to 7 p.m.
10: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
11: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
12: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
11: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
12: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
11: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Hills.
13: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
13: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
14: Kiska hai ye tu?
15: Ek awaaz jisne romance ko ek nayi pehchan di, ek legend jiski melodies pichle 3 dashkon se har Hindustani ke dil mein dhadakti hain.
16: Amit Jetley of Sai USA Inc. proudly presents Sonu Nigam live in concert on his biggest tour ever.
17: Friday, 11th September, 8:30 p.m. Witness history at Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City.
16: Do not miss the greatest musical night. Tickets available at Ticketmaster and SaiUSAInc.com.
14: 20 minutes of back-to-back music brought to you by RK Jewels. Best quality, best price. Only on Radio Mirchi 92.7 FM and 103.3 FM HD2. It's hot.

0: द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा है कंटेंट।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अब देखो, एक टाइम था जब हिंदी सिनेमा में फिल्में ऐसी बनती थी जिनका बजट अगर बड़ा हुआ तो वो बॉक्स ऑफिस पे भी बड़ा परफॉर्म करते थे। बट नाउ टाइम्स हैव चेंज्ड, क्योंकि अभी कंटेंट और परफॉर्मेंस इन दोनों का अमैल्गमेशन अगर मस्त हो जाए तो ऑडियंस खुश हो जाती है और बॉक्स ऑफिस नंबर्स अपने आप बढ़ जाते हैं। विलास पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसी ही लो बजटेड हाई परफॉर्मिंग फिल्मों की बात कर रही हूँ। जिस लिस्ट में आगे बढ़ते हुए लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म अंधाधुन, जो साल 2018 में रिलीज हुई थी। अ ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर डायरेक्टेड बाय श्रीराम राघवन एंड इट स्टार्ड आयुष्मान खुराना, श्रीराम राघवन हिमसेल्फ, तबू, राधिका आप्टे एंड मानव विज जैसे अमेजिंग एक्टर्स। बट सोने पे सुहागा वाली बात ये हो गई कि 25 करोड़ में बनी इस फिल्म ने एक तो तबू और आयुष्मान खुराना को एकदम डिफरेंट रोल्स में, डिफरेंट अवतार में हमें दिखाया, वहीं दूसरी तरफ बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने 72.37 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर ली। मूविंग ऑन, नंबर 5 पे लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म हिंदी मीडियम, जो साल 2017 में रिलीज हुई थी। अ कॉमेडी ड्रामा डायरेक्टेड बाय साकेत चौधरी, स्टारिंग इरफान खान, सबा कमर, दीपक डोबरियाल और अमृता सिंह जैसे अमेजिंग एक्टर्स। सीरियसली, ये कॉमेडी ड्रामा जब आई थी, इट वॉज लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर इन द मिड्स ऑफ कमर्शियल पॉट बॉयलर्स, जिनकी कहानियां बिल्कुल एक सी ही रिपीटेटिव। इनफैक्ट अगर इस फिल्म के बजट की बात करें तो 23 करोड़ के बजट में बनी थी ये फिल्म, विच पीपल फाउंड हिलेरियसली रिलेटेबल एंड इट मैनेज्ड टू अर्न मोर देन 70 करोड़ एट द बॉक्स ऑफिस। इसीलिए, बस इसीलिए मैं इतनी देर से कह रही हूं कि भैया द होल थिंग इज दैट सबसे बड़ा है कॉन्टेंट। खैर, अगर मेरी इस लिस्ट में आप भी कुछ एडिशन करना चाहो देन फील फ्री टू डू दैट। MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से मैं फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम पे मिलूंगी आपको। इन द मीन टाइम एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: ओ यार, मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा, पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो। हैं, ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत, हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करें, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर, आए @ मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है।
1: Only on Mirchi, it's hot. Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलिन।
7: पीठ पे छुरा क्यों घोंपे?
8: मत मारे कालीन भैया, बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
9: अब सही सुर लगा रहे मुमताज।
10: मिर्जापुर की गद्दी के बारे में सुने?
11: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
10: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
12: XL Entertainment presents Mirzapur the movie, releasing worldwide on 4th September at your nearest cinema.
13: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
14: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
13: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
15: Yeah. Meethi Mirchi. Brighten up your day, we will find a way. On Meethi Mirchi, aha.
0: दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो.
2: मिर्ची, मिर्ची, टॉप, टॉप, टॉप, टॉप, ट्रेंडिंग.
0: रिजेक्टेड बाय टॉक्सिक, डिलेड बाय स्पाइडरमैन, और शुरुआत हुई थी इस फिल्म को लेकर एक बोगस ऑफर के साथ, बट आज इसी मूवी ने हिस्ट्री क्रिएट कर रखी है. बात कर रही हूँ हनुमान अंश की. हांजी, जो फिल्म तैयार हुई 2 करोड़ के बजट पे, बट आज इस फिल्म ने अबाउट 80 करोड़ तक कमा लिए हैं ऑन द बॉक्स ऑफिस. इसी को बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ. कितना पावरफुल हो सकता है यार, क्योंकि ये 5th वीकेंड रन चल रहा है इस मूवी का, और ऐसा ही रहा तो इसे 100 करोड़ क्लब में पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता. माइंड यू, द मूवी रिलीज्ड ऑन द 31st of July. अगर अभी तक आपने नहीं देखी, देन ऑफ कोर्स इसके बॉक्स ऑफिस नंबर्स की वजह से ही देखने चले जाओ कम से कम. भाई, ये नाम को लेकर कितना बवाल होता है ना हमारे यहाँ, लेकिन सब भूल जाते हैं शेक्सपियर अंकल ने बोला है. व्हाट्स देयर इन नेम. एक्चुअली क्या हुआ, 4th of September को रिलीज हुई अर्शद वारसी की फिल्म जीवन भीमा योजना. सॉरी, ये तो पहले उसका नाम था, नाम चेंज करके किया गया जीवन या भीमा कौन. सो बेसिकली इस नाम के ऊपर इसलिए कॉन्ट्रोवर्सी हुई क्योंकि CBFC ने बोला कि भाई फिल्म का नाम जो है हमारे प्रधानमंत्री की जीवन ज्योति बीमा योजना से काफी सिमिलर है, तो इसको तो चेंज किया जाए. सिर्फ उतना ही नहीं, मूवी में कुछ ऑब्सीन विजुअल्स और डायलॉग्स भी हटाए गए. माइंड यू, इट इज अ क्वर्की कॉमेडी जो 1 घंटे 59 मिनट्स के रन टाइम के साथ आई है, जिसमें अर्शद वारसी के अलावा संजीदा शेख और विजय राज जैसे और भी एक्टर्स हैं. हरीश व्यास डायरेक्टोरियल इस फिल्म के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ यार, क्योंकि इसमें ना फादर सन के अल्टीमेट कॉम्बो को दिखाया गया है. हरीश व्यास की इस फिल्म का नाम है ओम का हरी, जिसका ट्रेलर इज आउट. और अगर आपको एक ओवरव्यू लेना है तो प्लीज देखिए ये फिल्म. इट इज अ स्मॉल बजटेड मूवी जिसमें बहुत बड़े बड़े सितारों के नाम नहीं है. बाकी ट्रेलर देख के मैं तो काफी इंप्रेस्ड हूँ टू वॉच द मूवी इन थिएटर्स जो आ रही है 18th of September को. सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन. सो टू ऑल द समय राणा फैंस आउट देयर, अगर आपने उनके कमबैक वाले एपिसोड को देखने के बाद अपने पापा को आई लव यू बोलने की शुरुआत कर दी थी, then I guess it's high time कि आप ऐसी फिल्मों को भी सपोर्ट करें. बाकी तो समझदार को इशारा काफी. मिर्ची.

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
2: कह दूं तुम्हें
3: हाँ
2: या चुप रहूं
3: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है
3: क्या है?

मोहिनी मोहिनी मोहिनी, पूरा एयरपोर्ट बस इसी आवाज से गूंज उठा था। फिर रानी जीन्स पे हेलो हेलो वेलकम, दिस इज मी श्रेया, यानी उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, इस जमाने की श्रेया के साथ। तो देखो, मुझे पता है कि पूरे दिन की थकावट अगर तुम्हें मिटानी है ना, तो बस यहाँ पे आने पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना तुम्हारे मेरे बीच में सिर्फ एक ही चीज होती है, और वो है दीज एवरग्रीन रेट्रो सॉन्ग्स। और ऑफकोर्स इन गानों के पीछे की कहानियां, उस रेट्रो जमाने की फिल्मों के पीछे की कहानियां। तो मैं अपना होमवर्क पूरा करके आती हूँ। आज जब मैं कह रही हूँ मोहिनी मोहिनी, तो बताओ कौन सी फिल्म पे एकदम रिसर्च करके आई है श्रेया। फुल होमवर्क, एब्सोल्युटली करेक्टली एप्टली डन। नहीं समझ में आया तो एक काम करो, कुछ गानों के उस पर जब मैं मिलूंगी तब बताती हूँ, तब तक सोचते रहो, फिर से रिपीट करती हूँ मोहिनी मोहिनी। कम राइट बैक ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नबियत वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपका?
3: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
4: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फोनवा बजा है तो आपकी आवाज़ सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज़ सुन के। आज जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धुलाए भी नहीं है।
3: क्या तुझे पागल लगता
4: नहीं वो? मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
3: क्या कहना है?
4: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना
3: मेरी
4: बात है। चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू चारू चलो। हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा
3: मैंने सोचा यार रिक्शा
4: वाला,
3: तुम आओ कभी मिलो मुझे, तुमसे रिक्शा ही चलवाऊंगी।
4: नहीं रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट
2: इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Food?
8: Yes.
7: Shopping?
8: Yes.
7: Entertainment?
8: Double yes.
7: Or health fair?
8: Of course. Sab kuch ek hi jagah. Indo-American Community Fair. September 12th or 13th. Sri Krishna Mandir, Morganville.
5: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
9: Wow! Yahi to hai mera dream lehenga.
10: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
9: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
10: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
9: Miss India, aaj hi visit kare. 79 Middlesex Avenue, Islington.
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
13: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
14: अमित जेटली ऑफ साई यूएसए इंक प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन द रेवोल्यूशन टूर, फ्राइडे सितंबर 11th एट हार्ड रॉक लाइव अटलांटिक सिटी। बुक नाउ एट ticketmaster.com एंड saiusainc.com।
15: आरके ज्वेल्स से खरीदिए डायमंड ज्वेलरी इंडिया वाले प्राइस में, और पे कीजिए इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में, ओनली एट आरके ज्वेल्स इसलिन, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
16: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
17: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
16: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
18: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
16: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
19: एक ही होता है।
16: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मोहिनी मोहिनी एक ऐसी फिल्म जिसके पहले माधुरी दीक्षित ने भी नहीं सोचा था कि वो इंडिया की नंबर वन हीरोइन बन जाएंगी आफ्टर डूइंग दिस फिल्म। पुरानी जीन्स में आप श्रेया के साथ जैसे ही मैं मोहिनी मोहिनी कहती हूँ तो ऑफकोर्स आपको याद आ जाता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। वेल आज बात करेंगे फिल्म तेजाब की। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित वाज कास्ट ऑपोजिट अनिल कपूर। इस फिल्म में एक्चुअली बहुत सारे स्टार्स थे, चंकी पांडे थे, किरण कुमार थे, सुरेश ओबेरॉय थे, ऑफकोर्स अन्नू कपूर प्लेड अ वाइटल रोल, और माधुरी दीक्षित ने तब तक कुछ खास कदम नहीं जमाए थे और उनको लगा था कि वो इतने सारे स्टार्स के बीच में कहीं ना कहीं खो जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इवन दो द रोल वॉज इन दैट ग्रेट दैट शी गॉट, लेकिन द सॉन्ग दैट शी गॉट वॉज 1 2 3। कहिए क्या सुनेंगे आप? ये गाना इतना पॉपुलर हुआ कि कहते हैं कि जिस कंपनी ने कैसेट्स रिलीज किए थे, द ऑडियो कैसेट्स, उस समय यू नो कैसेट्स ही चला करते थे, तो उस कंपनी को बार बार लॉट में नए कैसेट्स का बैच रिलीज करना पड़ रहा था, बनाना पड़ रहा था, बिकॉज खत्म होते जा रहे थे मार्केट में। हाँ जी, सो तेजाब का ये वाला गाना भी थोड़ी देर में सुनाऊंगी, कहीं भी मत जाना। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
2: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: पीठ पे छुरा क्यों घोंपे?
7: मत मारे कालीन भैया,
6: बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
8: अब सही सुर लगा रहे मुमताज।
9: मिर्जापुर की गद्दी के बारे में सुने?
6: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
9: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
10: एक्सेल एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स मिर्जापुर द मूवी, रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड ऑन 4th सितंबर एट योर नियरेस्ट सिनेमा।
11: ओह नो,
12: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
13: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
14: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
15: अमित जेटली ऑफ साई यूएसए इंक प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन द रेवोल्यूशन टूर, फ्राइडे सितंबर 11th एट हार्ड रॉक लाइव Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
16: Listener mein back to back gana sunega.
17: Back to back gana sunega.
16: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
18: Ah, ah,
0: ah, ah. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
19: क्या कहा?

अच्छा, किस किस को शाहरुख खान का मन्नत अंदर से देखना है, देखना है, तो चलो मैं लेके चलती हूँ पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। आज जिस फिल्म की बात हो रही है उसका नाम है तेजाब। 1988 की ये जो फिल्म थी, उसके बाद ना जब ये फिल्म रिलीज हुई तो 1990 तक आते आते माधुरी दीक्षित बिकेम द नंबर वन हीरोइन ऑफ इंडिया। वेल एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मन्नत की बात कर रहे थे हम, देखना है तो आपको ये फिल्म फिर से देखनी पड़ेगी क्योंकि शायद जब ये फिल्म बनी तो आपको नहीं पता होगा। इस फिल्म में अनुपम खेर का जो बंगलो दिखाया गया है और उसके शॉट लिए गए हैं, वो बंगलो अंदर से भी दिखाया गया है, बाहर से भी दिखाया गया है, वो है शाहरुख खान का मन्नत। आई एम श्योर अब इतने साल हो गए, उसमें बहुत सारा रेनोवेशन हो गया होगा, बट यही वो बंगलो है जो कि शाहरुख खान ने खरीदा था। यस, सो इन केस यू वांट टू हैव अ लुक, आपको तेजाब फिर से देखनी पड़ेगी। अनुपम खेर वाला घर आपको अब पता है ना कि शाहरुख खान का मन्नत है। पुरानी जीन्स पे मैं हूं श्रेया, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, वह जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं। ई का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करें, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है।
1: साथ जीतूराज Only on Mirchi, it's hot.
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
7: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकेयर या गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को लेकर कोई सवाल है? तो यूनाइटेड हेल्थकेयर प्राउडली अनाउंस करता है हमारा नया एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर की ओपनिंग।
11: ये सेंटर कन्वीनियंटली लोकेटेड है 561 US हाईवे 1 एडिसन विक शॉपिंग मॉल के अंदर।
10: यहाँ आपको अपने हेल्थ केयर बेनिफिट्स और कवरेज ऑप्शंस समझने के लिए पर्सनलाइज सपोर्ट मिलेगा। हमारी प्रोफेशनल टीम आपको फ्री कंसल्टेशन देगी ताकि आप मेडिकेयर, इंडिविजुअल और फैमिली हेल्थ प्लान्स और गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को बेहतर समझ सके। तो आज ही विजिट कीजिए एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

वेटर इतना घबरा गया था कि उसने एम्बुलेंस बुलाई, और मैनेजर इतना घबरा गया था होटल का कि उसने तो सीधे पुलिस बुला ली थी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म टुडे तेजाब। अब हुआ ये कि गाना है ना सो गया ये जहां, इस गाने से पहले राइट बिफोर द सॉन्ग देयर वाज अ फाइट सीक्वेंस दैट वाज शॉट। अब ये फाइट सीक्वेंस शूट हो गया, लेकिन भाई एक्टर्स ये भूल गए, जैसे कि चंकी पांडे, अनिल कपूर एंड ऑल ऑफ देम, कि उन्होंने ना मेकअप नहीं उतारा। रात का समय था, ये गाना शूट हो रहा था, गाड़ी में उन्हें इतनी भूख लगी कि पास के एक होटल में चले गए। होटल वाले देख करके घबरा गए कि ये क्या खून से लदे पदे, एकदम खून ही खून हर जगह दिख रहा है, ये लोग कौन आए हैं। तो जो वेटर था वो इतना घबराया, उसने एम्बुलेंस बुला ली कि भाई इनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, और जो मैनेजर था उसने तो पुलिस को बुला लिया कि हाँ कोई ऐसा वैसा केस तो नहीं है। बाद में उनको बताया गया कि अरे भाई हमने मेकअप रिमूव नहीं किया है, हम सीधे सेट से आ रहे हैं। अब इस गाने की बात हुई है तो ये गाना थोड़ी देर में सुनाती हूँ। मजा आता है मुझे आपको ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाने में। कम राइट बैक, दिस इज श्रेया ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: यू आर लिसनिंग टू 103.3 FM HD2 WPRP प्रिंसटन न्यू जर्सी एंड 92.7 W224 CW फ्रैंकलिन पार्क न्यू जर्सी रेडियो मिर्च.

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

दो फिल्में अनाउंस तो हुई लेकिन वो कभी भी बनी नहीं। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, शायद ये तरीका था टीनू आनंद का डिंपल कपाटिया को ट्रिक करने का। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया एंड शहनशाह फिल्म की बात हो रही है जिसपे अमिताभ बच्चन थे। इस फिल्म की स्टोरी, इस फिल्म की कहानी लिखने वाली थी जया बच्चन जी। अमिताभ बच्चन एक अरसे के बाद इंडस्ट्री में वापस आ रहे थे, पॉलिटिक्स उन्होंने तब ज्वाइन कर लिया था और इसीलिए वो फिल्में कर नहीं रहे थे। बट फाइनली पॉलिटिक्स को टाटा बाय बाय कह करके, यू टर्न मार करके फिल्में करने जब वो वापस आए तो शहनशाह वॉज द फर्स्ट फिल्म जिसका ऑफर उन्हें मिला था। अब ऐसे में डिंपल कपाटिया के पास ऑलरेडी ऑफर जा चुका था, उनके पास साइनिंग अमाउंट जा चुका था टू प्ले द लीड इन दिस कैरेक्टर, एज इन टू प्ले द लीड फीमेल। फिर क्या हुआ, मीनाक्षी शेषाद्री को रातों रात उनके जगह पे रिप्लेस किया गया। अब टीनू आनंद जो ये फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे वो चाहते थे कि डिंपल कपाटिया अपना साइनिंग अमाउंट वापस दे, लेकिन डिंपल कपाटिया का कहना था कि मैं तो फिल्म छोड़ के नहीं जा रही हूँ, आपने मुझे रिप्लेस किया है तो मैं क्यों वापस करूँ। ये कंट्रोवर्सी उस टाइम की फिल्म मैगजीन्स ने जम करके छापी थी। सो टीनू आनंद ने एक कंडीशन रखी, ही सेड कि अगर वो उनका साइनिंग अमाउंट वापस कर देंगी तो वो अगले ही दिन अमिताभ बच्चन के साथ दो और फिल्में विद डिंपल कपाटिया अनाउंस करेंगे। अब डिंपल ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद बच्चन साहब, उनके लिए ये इतना ल्यूक्रेटिव ऑफर था कि उन्होंने हाँ कहा, पैसे वापस दिए और अगले दिन टीनू आनंद ने दो फिल्में अनाउंस भी करी। ये जो दो फिल्में थी उनका नाम था महाकाल और एक का नाम था आलीशान, पर ये दोनों फिल्में कभी बनी नहीं। इसीलिए डिंपल ऑलवेज फेल्ट कि टीनू आनंद ने चीटिंग की, जो कि एक्चुअली में की। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नबीत वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो मुकेश जी।
4: कौन?
3: मुकेश जी मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ राणा मोटर से। आपने जो 1000 दी थी ना उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली थोड़ा।
4: नहीं हो पाया भाई?
3: हाँ वो नहीं हो पाया सर।
4: हाँ नहीं हो पाया
3: सर वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा सर आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की। सर वो भी हो नहीं पाई है वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी।
4: नहीं क्या नहीं पाया तुम्हारे यार रोज के तुम्हें जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया है क्या मजाक ही क्या है ये?
3: नहीं मुकेश जी मैं समझ रहा हूँ वो एक
4: क्या समझ रहे हो भाई।
3: नहीं नहीं आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुकेश जी आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है ब्रेक काम नहीं कर रहे। सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा।
4: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
3: सर वो
4: ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया मुझे फोन करना है मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया।
3: नहीं सर
4: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे।
3: नहीं सर कुछ हो नहीं पाया।
4: क्यों नहीं हो पाया?
3: सर वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी
4: है?
3: सर रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी।
4: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
3: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ मतलब हम
4: क्या करा दू
3: सर मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
4: कैसी FIR दिमाग खराब हो गया तेरा पागल तो नहीं है तू?
3: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे आप गुस्सा तो मत करिए कम से कम।
4: गुस्सा ना करूं नई गाड़ी थी हमारी।
3: नहीं सर आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारे भी तो उसमें कुछ गया है हमने भी तो ग्रीस लगाया
4: उसमें
3: ग्रीस लगाया उसमें हमने पेट्रोल डाला है
4: ग्रीस कितने का 5 रुपए का लगाया आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में तुम्हारे वर्कशॉप में।
3: अच्छा
4: मुझे चाहिए अपनी वापस।
3: सर आप इतना गुस्सा ना करें
4: जिम्मेदारी तुम्हारी FIR वगैरह कराने की।
3: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें। अच्छा सर ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा।
5: मुकेश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ मुर्गा बना दिया तुम्हारा।
4: तो जान निकाल दी हमारी।
5: मुकेश आपकी गाड़ी वहीं खड़ी है आपकी वर्कशॉप में बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे। मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए गुस्सा खत्म करिए।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: वाओ यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
9: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
11: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
12: किसका है ये
13: एक आवाज जिसने रोमांस को एक नई पहचान दी। एक लेजेंड जिसकी मेलोडीज पिछले 3 दशकों से हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कती हैं।
14: अमित जेटली ऑफ साई USA Inc. प्राउडली प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन हिज बिगेस्ट टूर एवर।
15: फ्राइडे 11 सितंबर 8:30 PM विटनेस हिस्ट्री एट हार्ड रॉक लाइव ETS अरेना अटलांटिक सिटी।
14: डू नॉट मिस द ग्रेटेस्ट म्यूजिकल नाइट। टिकट्स अवेलेबल एट Ticketmaster एंड saiusainc.com।
16: क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकेयर या गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को लेकर कोई सवाल है? तो यूनाइटेड हेल्थकेयर प्राउडली अनाउंस करता है हमारा नया एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर की ओपनिंग।
17: ये सेंटर कन्वीनियंटली लोकेटेड है 561 US Highway 1 एडिसन विक शॉपिंग मॉल के अंदर।
16: यहाँ आपको अपने हेल्थ केयर बेनिफिट्स और कवरेज ऑप्शंस समझने के लिए पर्सनलाइज सपोर्ट मिलेगा। हमारी प्रोफेशनल टीम आपको फ्री कंसल्टेशन देगी ताकि आप मेडिकेयर इंडिविजुअल और फैमिली हेल्थ प्लान्स और गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को बेहतर समझ सके। तो आज ही विजिट कीजिए एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर।
18: तेरा क्या होगा कालिया?
19: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार।
18: अब मिर्ची खा।
9: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: तीन शहर और 17 दिन एक गाने को शूट करने में लग गए थे। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द सुपर हिट फिल्म तेजाब। वेल, इस फिल्म का सारा होमवर्क करके लाई हूँ मैं, और जब मैं रिसर्च कर रही थी ना तो मुझे पता चला कि ये वाला गाना, ये जो आप सुन रहे हो ना, दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग विच इज़ बाय नितिन मुकेश, क्या हमिंग है। वेल, ये गाना जो अलका याग्निक के साथ उन्होंने गाया, इस गाने को क्योंकि पूरा रात में शूट किया जा रहा था, हाँ, कि टीम बैठी हुई, एज इन द एक्टर्स बैठे हुए हैं गाड़ी में, और वो रातों रात एक गाड़ी में बैठ करके रास्ता कवर कर रहे हैं, तो इसके लिए उन्होंने 3 सिटीज़ को क्रॉस किया था और 17 रातें लगी थी टू शूट दिस आइकॉनिक सॉन्ग।
1: सो गया है रास्ता।
0: आई नो, मुझे पता है कि आपको ये गाना पूरा सुनना, तो ये लो पूरा, कमिंग योर वे ओनली ऑन पुरानी जीन्स। मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
2: जिसके शब्दों में आग है,
1: जिसकी आवाज में जादू है,
2: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक।
1: आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: पीठ पे छुरा क्यों घोंपे?
6: मत मारे कालीन भैया, बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
7: अब सही सुर लगा रहे मुमताज।
8: मिर्जापुर की गद्दी के बारे में सुने?
5: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
8: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
9: एक्सेल एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स मिर्जापुर द मूवी, रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड ऑन 4th September एट योर नियरेस्ट सिनेमा।
10: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज। The king of mortgage industry.
11: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
4: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
2: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
2: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
13: Inefficient, very complex,
14: clumsy or
15: confusion ही confusion.
12: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
16: तेरा क्या होगा कालिया?
17: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
16: अब मिर्ची खा।
18: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

फिल्म फेयर में ये कैटेगरी इस गाने के बाद शुरू हुई। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म तेजाब। वेल, ये जो गाना था, ये गाना इतना पॉपुलर हुआ और इसमें एक्ट्रेस का जो डांस मूव्स थे वो एवरीबडी वाज कॉपिंग इन द एंटायर कंट्री। वो इतनी पॉपुलर हुई कि फिल्म फेयर की कमेटी ने डिसाइड किया कि भाई इस कैटेगरी का अवार्ड भी होना चाहिए हमारे पास। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट सरोज खान। सरोज खान ने कोरियोग्राफ किया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तेजाब मूवी का ये गाना, और माधुरी दीक्षित का परफॉर्मेंस ओहो चुम्मेश्वरी था। वेल, आफ्टर दिस सॉन्ग बिकेम सो ह्यूज एंड इट गॉट सो पॉपुलर कि उसके बाद फिल्म फेयर ने ये डिसाइड किया, कमेटी ने डिसाइड किया कि ये कैटेगरी यानी बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड भी होना चाहिए। एंड देन ऑफकोर्स सरोज खान ये अवार्ड लेने वाली पहली कोरियोग्राफर बनी थी। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, यही वाला गाना सुनना है तो सुनाती हूँ ना। पक्का इस बार, पक्का प्रॉमिस, बस 3 गानों के उस पर कमरे।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
2: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
6: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
8: Amit Jetley of Sai USA Inc. presents Sonu Nigam live in the Revolution Tour, Friday, September 11th at Hard Rock Live, Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
9: Desi Khana,
10: Desi Shopping,
9: Desi Culture
10: aur Desi Entertainment.
9: Bas ek hi destination.
10: Indo-American Community Fair, September 12th aur 13th, Shri Krishna Mandir, Morganville.
11: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
12: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
12: Don't forget, largest natural diamond store.

0: Best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
1: Batting तो काफी सारे करते हैं. विराट एक ही होता है.
2: Goalie goes down the ground. Goalie goes out of the ground.
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है.
4: एक ही होता है.
1: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
5: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

फिल्म फेयर में ये कैटेगरी इस गाने के बाद शुरू हुई। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म तेजाब। वेल, ये जो गाना था, ये गाना इतना पॉपुलर हुआ और इसमें एक्ट्रेस का जो डांस मूव्स थे वो एवरीबडी वाज कॉपिंग इन द एंटायर कंट्री। वो इतनी पॉपुलर हुई कि फिल्म फेयर की कमेटी ने डिसाइड किया कि भाई इस कैटेगरी का अवार्ड भी होना चाहिए हमारे पास। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट सरोज खान। सरोज खान ने कोरियोग्राफ किया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तेजाब मूवी का ये गाना, और माधुरी दीक्षित का परफॉर्मेंस ओहो चुम्मेश्वरी था। वेल, आफ्टर दिस सॉन्ग बिकेम सो ह्यूज एंड इट गॉट सो पॉपुलर कि उसके बाद फिल्म फेयर ने ये डिसाइड किया, कमेटी ने डिसाइड किया कि ये कैटेगरी यानी बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड भी होना चाहिए। एंड देन ऑफकोर्स सरोज खान ये अवार्ड लेने वाली पहली कोरियोग्राफर बनी थी। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, यही वाला गाना सुनना है तो सुनाती हूँ ना। पक्का इस बार, पक्का प्रॉमिस, बस 3 गानों के उस पर। कम राइट बैक।

0: जेसिका इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
2: कभी हमने नहीं

आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था।

0: तुमसे अच्छा कौन है।
1: अच्छा, कभी कभी ना फिल्म इतनी एंग्रॉसिंग होती है, इतनी एंगेजिंग होती है कि समटाइम्स ना लोग बहुत ऑब्वियस से सवाल भी नहीं पूछते। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ आज तेजाब फिल्म की बात हो रही है। तो क्या हुआ, अगर आप तेजाब देखोगे ना तो ब्रेक के पहले तक बहुत सारे सीन्स हैं जिसमें नाना पाटेकर का सीन है, एज इन नाना पाटेकर ने शॉट किए हैं वो सीन्स, आपको दिखेंगे कुछ एकदम वाइटल वेरी इंपॉर्टेंट सीन्स। लेकिन ब्रेक के बाद सडनली नाना पाटेकर का कैरेक्टर ही गायब हो जाता है। लेकिन फिल्म इतनी इतनी मज़ेदार थी, इतनी अच्छी थी, बॉलीवुड का सारा तड़का उसमें लगा हुआ था कि लोगों ने ये सवाल किया ही नहीं कि अरे भाई नाना पाटेकर का हुआ क्या। पुरानी जीन्स पे आज इसी फिल्म की बातें बैक टू बैक विद मी श्रेया।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची इसका बना उसका बना सबका बना बना मुर्गा मुर्गा नबीत वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
2: हेलो
3: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपका?
2: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
3: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फोनवा बजा है तो आपकी आवाज़ सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज़ सुन के। आप जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धुलाए भी नहीं है।
2: क्या तुझे पागल लगता
3: नहीं वो? मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
2: क्या कहना है?
3: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना
2: मेरी
3: बात है। अच्छा चारू फोन मत रखना। चलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा
2: मैंने सोचा यार रिक्शा
3: वाला,
2: तुम आओ कभी मिलो मुझे, तुमसे रिक्शा ही चलवाऊंगी।
3: नहीं रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
7: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
8: Buying a home? Our rate saver will beat your locked rate.
7: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding. Service jis par sab kare bharosa.
9: छुरा क्यों घोंपे?
10: मत मारिए कालीन भैया,
9: बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
11: अब सही सुर लगा रहे मुमताज,
12: मिर्जापुर की गद्दी के बारे में सुने?
9: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
12: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
13: XL Entertainment presents Mirzapur the movie, releasing worldwide on 4th September at your nearest cinema.
14: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
15: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
14: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
15: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
14: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
16: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
17: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
16: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
18: Listener MA, back to back gana sunega. Back to back gana sunega.
1: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है अनिल कपूर की तेजाब मूवी को लेकर के। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ 50 वीक्स तक, 50 हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस पे राज किया था इस फिल्म तेजाब ने। अब हुआ क्या, तेजाब जब बन रही थी अनिल कपूर के पास डेट्स ही नहीं थी, ही वॉज बुक फॉर 2 ईयर्स। अब ये जो फिल्म की कहानी थी ना, ये कहानी एन चंदर ने बोनी कपूर को सुना दी। बोनी कपूर जो कि अपने भाई को लॉन्च कर रहे थे, अपने भाई के लिए अच्छी फिल्में देख रहे थे, उन्हें ये समझ में आ गया था कि ये फिल्म तगड़ी होने वाली है। सो उन्होंने अनिल कपूर से कहा कि भाई ये फिल्म कर लो, लेकिन अनिल कपूर ने कहा मेरे पास डेट्स ही नहीं है, मैं नहीं कर सकता ये फिल्म। सो देन बोनी कपूर स्टेप्ड इन एंड ही टोल्ड डायरेक्टर एन चंदर कि एक काम करना, जिस भी दिन अनिल की कोई फिल्म की शूटिंग कैंसिल होगी वो दिन तेजाब का होगा। सो ऐसे करते करते अनिल कपूर के कई सारे शूट जो कैंसिल होते थे, अनिल कपूर चले जाते थे तेजाब के सेट पर। एंड दिस वाज हाउ तेजाब वाज मेड। इमेजिन, इतनी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म, वो एक्चुअली में अनिल कपूर की, क्या बोलूं मैं, वो कैंसिल डेट्स पे बनी थी। कभी कभी हमें नहीं पता होता ना कि हम किसी चीज़ के लिए जिसके लिए शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं वो काम करेगी, या फिर जिसको बहुत कैजुअली ले लिया वो काम करेगी। पुरानी जीन्स पे श्रेया है आपके साथ, कम राइट बैक।

0: कभी न्यू जर्सी की स्ट्रीट पर,
1: कभी बाथरूम की चार दीवारों के बीच,
0: कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच छुपे होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं. द स्टेज इज सेट,
1: द माइक इज रेडी. आर यू इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक. अभी रजिस्टर करें, व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए 9033647244 पर. ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन. Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: एक आवाज जिसने रोमांस को एक नई पहचान दी, एक लेजेंड जिसकी मेलोडीज पिछले 3 दशकों से हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कती हैं.
4: अमित जेटली ऑफ साई यूएसए इंक प्राउडली प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन हिज बिगेस्ट टूर एवर.
5: फ्राइडे 11 सितंबर 8:30 PM विटनेस हिस्ट्री एट हार्ड रॉक लाइव ईटस अरेना अटलांटिक सिटी.
4: डू नॉट मिस द ग्रेटेस्ट म्यूजिकल नाइट. टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर एंड saiusainc.com.
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
9: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
10: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी.
11: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

अनु कपूर जी को अनिल कपूर का चेक मिल गया था पुरानी जीन्स पे आफर श्रेया के साथ। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज अनु कपूर का असली नाम अनिल कपूर था। वेल, मैं बात कर रही हूँ फिल्म तेजाब की, एंड अनिल कपूर इस फिल्म के मेन लीड में थे और अनु कपूर फिल्म में सपोर्टिंग एक्टर थे। अब क्योंकि अनु कपूर का रियल नाम असली नाम अनिल कपूर था, तो उनको ना अनिल कपूर का साइनिंग अमाउंट चेक पे मिल गया था। पहले तो उनको फिगर्स देख के यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, एंड देन ही रियलाइज कि ओ हो, ये तो अनिल कपूर का चेक आ गया मेरे पास। वेल, आज तेजाब की बातें श्रेया के साथ चलती रहेंगी, कहीं मत जाना। गानों के उस पार फटाक से मिलो, आज तो हाईवे पे चलेंगे ना फिर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौज है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं। ये का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमार रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे। कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @ मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है।
1: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची।
2: मिर्ची जीतूराज, समझे कि नहीं समझे, सही है।
1: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: विसर्जन वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर विस्काटवे ऑन 732-357-8200 जय गुरुदेव
1: Amit Jetley of Sai USA Inc. presents Sonu Nigam live in the Revolution Tour Friday, September 11th at Hard Rock Live, Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
2: RK Jewels se khareediye diamond jewelry India wale price mein aur pay kijiye easy monthly installments mein only at RK Jewels Islin. Best quality, best price.
3: Tera kya hoga Kalia?
4: Sardar, maine aapka namak khaya Sardar.
3: Ab मिर्ची का
5: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
6: ए गोली मार भेजे मैं
7: भेज क्या
6: भेजा शोर करता है

कुर्सी की बेटी बांध दीजिए दोस्तों, क्योंकि आज की शाम सीधा वीकेंड की उड़ान भरने वाली है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और मुझे फ्राइडे ना हमेशा एयरपोर्ट जैसा लगता है, क्योंकि पूरा हफ्ता हम अपनी फ्लाइट्स पकड़ते रहते हैं, ऑफिस की, मीटिंग्स की, डेडलाइंस की, ट्रैफिक की, और फिर फ्राइडे शाम आते ही लगता है जैसे अनाउंसमेंट आ गया हो, लेडीज एंड जेंटलमैन, योर फ्लाइट टू वीकेंड इज राउ रेडी फॉर बोर्डिंग। किसी ने ऑलरेडी डिनर के प्लान्स बना लिए, कोई रोड ट्रिप के लिए बैग्स पैक कर रहा है, तो कोई बस घर जाके पजामास पहनने का काउंट डाउन कर रहा है, और कुछ लोग का तो वीकेंड का पहला प्लान ही होता है कि बस सैटरडे का अलार्म नहीं लगाना है। और मुझे लगता है कि यार फ्राइडे की सबसे अच्छी बात तो यही है कि सिर्फ दो छुट्टियों का प्रॉमिस ही नहीं लाता, ये पूरे हफ्ते की मेहनत का ना रिवॉर्ड लेकर आता है। तो चलिए आज एक काम करते हैं, स्माइल थोड़ी बड़ी करते हैं, बॉलीवुड का वॉल्यूम फुल ऑन बढ़ाते हैं और ऑफिशियली वीकेंड मोड ऑन करते हैं। वैसे आप भी बताइए दोस्तों, आपके वीकेंड के बोर्डिंग पास किस डेस्टिनेशन का है? लॉन्ग ड्राइव, फैमिली टाइम, दोस्तों के साथ मस्ती, या सिर्फ डू नॉट डिस्टर्ब मोड? डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए इस वीकेंड की फ्लाइट का पहला साउंड ट्रैक प्ले करते हैं एक जबरदस्त बॉलीवुड गाने के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेलो,
1: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
0: हाँ जी।
1: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी का, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
0: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
1: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
0: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
1: फोटो? बहुत अच्छा है, सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिगाड़ दिया यार, सारे दिमाग।
0: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
1: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
0: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
1: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
0: अरे शर्म की क्या बात है सर,
1: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
0: किसी का
1: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
0: लगाया नहीं
1: क्या, कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े गायब
0: नहीं।
1: मैं कल को
0: फोटो खींचे।
1: अरे लेंस ऐसे
0: पूरे
1: कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
0: अरे
1: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
0: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसलिए हमारा नाम है इलाके में।
1: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
0: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
1: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आए हैं सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
0: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
1: गड़बड़
0: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
1: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
0: दिखाइए
1: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
0: सिस्टम ही नहीं है, कपड़े गायब हो जाए।
1: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
0: कहाँ होता है बताइए?
2: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर। आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Food?
7: Yes.
6: Shopping?
7: Yes.
6: Entertainment?
7: Double yes.
6: Or health fair?
7: Of course. Sab kuch ek hi jagah. Indo-American Community Fair. September 12th or 13th. Sri Krishna Mandir, Morganville.
8: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
9: Wow! Yehi to hai mera dream lehenga.
10: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
9: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
10: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
9: Miss India, aaj hi visit kare. 79 Middlesex Avenue, Hisley.
11: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
12: कि जसनीत नू निहाल सिंह वापस पिंड लेके आ पाएगा?
13: जे तू जसनीत नू वापस नाना लेके आया पुत्र, तो मेरा भी मरीदा मुंह देखेगा।
12: कि पिंड वाले जसनीत नू वापस पिंड देख पाएंगे? वेखो सिंह वर्सेस कौर 2, रिलीजिंग ऑन 11 सितंबर, स्टारिंग गिप्पी गरेवाल, शहनाज गिल, डायरेक्टेड बाय नवनीत सिंह, प्रोड्यूस्ड बाय गिप्पी गरेवाल, रवनीत कौर गरेवाल, श्रीकांत मोहता एंड महेंद्र सोनी।
14: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
15: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
16: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
15: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
9: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
10: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
9: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
10: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
9: Miss India, aaj hi visit kare. 79 Middlesex Avenue, Hisley.
17: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
18: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
17: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
19: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
4: तेरा क्या होगा कालिया,
20: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
21: अब मिर्ची खा।
22: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: कभी किसी ट्रेलर को पॉज करके दोबारा देखा है? शमशान द लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और पहले ना ट्रेलर सिर्फ फिल्म आ रही है यही बताता था, लेकिन अब ट्रेलर डिटेक्टिव गेम बन चुका है। मतलब पहले एक फ्रेम देखो, फिर कमेंट्स पढ़ो, और फिर पता चलता है कि लोगों ने उस 1 सेकेंड में ना पूरी थियोरी बना दी है। जी हाँ, कि यार यही कैरेक्टर विलन होगा, इस सीन का कनेक्शन पहली वाली फिल्म के साथ था। मुझे तो लगता है बॉलीवुड फैन से अच्छे इन्वेस्टिगेटर्स दुनिया में कहीं मिल ही नहीं सकते, क्योंकि कभी कभी ट्रेलर से ज्यादा एंटरटेनिंग तो यार उसके कमेंट्स होते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने भी वो कमेंट्स पढ़े हैं तो मुझे जरूर बताना कि सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट क्या थे। वैसे आप ट्रेलर देखते हुए किस चीज पर सबसे पहले ध्यान देते हो? क्या वो म्यूजिक होता है, डायलॉग होता है, एक्शन होता है, या फिर माई फेवरेट कॉमेंट सेक्शन? डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। और अब ट्रेलर नहीं, सीधा फुल एंटरटेनमेंट। अगला बॉलीवुड गाना ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बांधा।

0: न्यू जर्सी की स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
7: फ्रॉम द फाइनेस्ट किचन्स इन इंडिया, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
8: एक आवाज जिसने रोमांस को एक नई पहचान दी, एक लेजेंड जिसकी मेलोडीज पिछले 3 दशकों से हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कती हैं।
9: अमित जेटली ऑफ साई USA Inc. प्राउडली प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन हिज बिगेस्ट टूर एवर।
10: फ्राइडे 11th सितंबर 8:30 PM विटनेस हिस्ट्री एट हार्ड रॉक लाइव ETS अरेना अटलांटिक सिटी।
9: डू नॉट मिस द ग्रेटेस्ट म्यूजिकल नाइट। टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर एंड saiusainc.com।
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
13: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
14: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
13: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
15: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
16: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद 0 ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
15: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
17: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
18: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
19: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
18: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
6: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
18: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

गानों की ना एक अलग ही दुविधा है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी कभी ना गाना याद रह जाता है लेकिन फिल्म ही याद नहीं रहती, और मेरे साथ तो ये अक्सर होता है। कभी किसी रेस्टोरेंट में या रेडियो पर एक गाना बजता है और दिमाग तुरंत बोलता है कि अरे वाह क्या गाना है, पर अगला सवाल शुरू हो जाता है कि ये किस मूवी का गाना था, और बस फिर पूरा बॉलीवुड क्विज शुरू हो जाता है। कोई एक्टर याद आ जाता है, कभी कोई सीन याद आ जाता है, कोई कॉस्ट्यूम तक याद आ जाता है, लेकिन मूवी का नाम लास्ट में याद आता है। और शायद इसीलिए बॉलीवुड सॉन्ग्स इतने पावरफुल होते हैं कि फिल्म भले ही भूल जाओ लेकिन गाने नहीं भूलते। वैसे आप ही बताइए कि ऐसा कौन सा बॉलीवुड गाना है जिसका ट्यून आपको अच्छे से याद है लेकिन मूवी का नाम याद करने में सदियां लग जाती है। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए देखते हैं अगला गाना आप कौन सी मूवी का है ये पहचान पाते हो या नहीं। ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: पूरा जर्सी जानता है, यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
6: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन।
7: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
8: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटेटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
7: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
9: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
10: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
11: आरके ज्वेल्स से खरीदिए डायमंड ज्वेलरी इंडिया वाले प्राइस में और पे कीजिए इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में। ओनली एट आरके ज्वेल्स इज़लिन, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
12: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the Naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
13: Listener, am I? बैक टू बैक गाना सुनेगा,
14: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
13: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और ऐसे कैसे हो सकता है कि वीकेंड का प्लान बने, स्क्रीन टाइम का प्लान बने, और वो भी बिना स्नैक के? नो। और इसीलिए दीप चिप्स लाए हैं आपका मूड सेट करने के लिए। अलग अलग फ्लेवर्स के, अलग अलग टाइप के चिप्स, चाहे फिर वो ब्लैक पेपर वाला थोड़ा बोल्ड, रेड चिली वाला थोड़ा फिल्मी, या नेचुरल एकदम सीधा साधा क्रंच। तो यार, एक बोरिंग से स्क्रीन टाइम को बनाओ फुल ऑन धमाकेदार। लाइट्स ऑफ, नेटफ्लिक्स ऑन, और दीप चिप्स का पैकेट क्रंच। ये सिर्फ स्नैक नहीं है, ये यार वीकेंड वाइब्स का रिमोट कंट्रोल है। तो अगर आपने ट्राई किया तो बताना कैसा लगा, और नहीं किया है तो आज ही ट्राई करना दीप चिप्स फ्लेवर का एटीट्यूड, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। और तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscabana, puscabana, sacabana.
2: Rambana.
1: Burga, burga. La virba la burga.
2: Mirchi, burga.
3: हेलो
4: हेलो मुकेश जी.
3: कौन
4: मुकेश जी? मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ, राणा मोटर से. आपने जो 1000 दी थी ना, उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था, वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली. थोड़ा
3: नहीं हो पाया भाई.
4: हाँ, वो नहीं हो पाया सर.
3: क्यों नहीं हो पाया
4: सर? वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी. अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की. सर वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी.
3: नहीं, क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज गए तुम्हें, जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, क्या मजाक ही क्या है ये?
4: नहीं मुकेश जी, मैं समझ रहा हूँ वो एक.
3: क्या समझ रहे हो भाई?
4: नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं. अच्छा मुकेश जी, आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है, ब्रेक काम नहीं कर रहे. सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा.
3: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
4: सर? वो
3: ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया. मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया.
4: नहीं सर,
3: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे.
4: नहीं सर, कुछ हो नहीं पाया.
3: क्यों नहीं हो पाया
4: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
3: है
4: सर, रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
3: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
4: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मतलब हम
3: क्या करा दू
4: सर? मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
3: कैसी FIR? दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
4: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे आप? गुस्सा तो मत करिए कम से कम.
3: गुस्सा ना करूं, नई गाड़ी थी हमारी.
4: नहीं सर, आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारा भी तो उसमें कुछ गया है, हमने भी तो ग्रीस व्रीस लगाया.
3: उसमें
4: ग्रीस ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला है.
3: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगाया. आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में.
4: अच्छा सर,
3: मुझे चाहिए अपनी वापस.
4: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
3: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की.
4: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें. अच्छा सर, ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा.
5: मुकेश, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा.
3: तो जान निकाल दी हमारी.
5: मुकेश, आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे. मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए.
3: कुकड़ू कू.
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
10: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
10: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islington.
11: Honey, it's 11 p.m. our bedtime. Where are you?
12: I am not going to bed with you ever again.
11: But why? What did I do?
12: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
11: Oh honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
12: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
11: Yes, yes, yes, come soon. Honey!
12: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
11: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
13: Kisi zamane mein, maa haathon se ghisti, pyar se kootti, muskura kar peesti. अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी. दीप, खाओ तो जानो.
14: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
15: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
14: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
16: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
17: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
16: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
18: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
19: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
18: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
19: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
18: Miss India, aaj hi visit kare, 79 Middlesex Avenue, Islington.
0: Amit Jetley of Sai USA Inc. presents Sonu Nigam live in the Revolution Tour. Friday, September 11th at Hard Rock Live, Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.

0: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और शुक्र है शुक्रवार आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, वर्क वीक खत्म और वीकेंड शुरू। और ऐसे में तो वैसे तो बहुत सारे लोगों के बहुत अलग अलग प्लान बनते हैं, कहीं पार्टी करने का प्लान बनता है, कहीं घूमने जाने का प्लान बनता है, लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जिनका एकदम प्लान सेट होता है कि इस वीकेंड जहां जहां ओपन हाउसेज है वहां वहां हम जाएंगे और पूरी आइटिनरी फिक्स्ड होती है। तो अगर आप भी ऐसे हो और आपका भी प्लान है कि इस वीकेंड मैं ओपन हाउसेज देखने जाऊंगा और घर खरीदने का सपना है, तो मेरे दोस्त बीश की सलाह लिए बगैर बिल्कुल भी ओपन हाउसेज में मत जाना, क्योंकि तो आपके लिए कौन सा मॉर्गेज पैकेज सही है वो बताएंगे मेरे दोस्त बीश। ओवर टू यू बीश।
1: शुक्र करो शुक्रवार है भाई बहनों, मैं हूं आपका दोस्त बीश फ्रॉम लायन मॉर्गेज, गिविंग यू मॉर्गेज रेट अपडेट्स ड्यूरिंग दिस ड्राइव टाइम लेबर डे वीकेंड, एंड आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ ओपन हाउसेस व्हिच इज गुड फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर्स। एंड टुडे ब्लोआउट जॉब रिपोर्ट रेजेस वरीज ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक। फ्रेंड्स, एज वी हेड इनटू द लेबर डे वीकेंड, मेनी ऑफ अस आर थिंकिंग अबाउट वन थिंग एंड दैट इज होम। Maybe you're spending the weekend grilling with family, visiting friends, or simply enjoying a little extra time around the house. But if you have been thinking, is this the year we finally buy a home? This could be a great time to start the conversation. As a residential mortgage loan officer, I help home buyers understand their financing options, from first-time buyers to those looking to move, refinance, or purchase their next home. And there's something important, you don't have to have everything figured out before you reach out. A quick conversation can help you understand what you may qualify for, what your monthly payment could look like, and what steps make sense for your situation. So while you're enjoying the Labor Day weekend, take a moment to think about where you want to be this time next year. If homeownership is part of that picture, let's talk. Call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Buying your dream home or refinancing? Lion Mortgage, 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, the 30-year fixed mortgage rate, 6.5%. 20-year fixed mortgage rate, 6.25%. 15-year fixed mortgage rate, 5.875%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com. And I'll spell it out. It is lionmtg.com. Also, remember listeners, buying your dream home or refinancing, Lion Mortgage, 732-339-3155. With that, drive safe, everybody. Have a wonderful long weekend. Thank you very much. Bye-bye.
2: This mortgage update is brought to you by Lion Mortgage.

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक 2903-364-7244 यानी 9033 मिर्ची।
1: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
2: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
6: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
7: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
6: Buying a home? Our rate saver will beat your locked rate.
7: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding. Service jis par sab kare bharosa.
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
10: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी। Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
11: RK Jewels se khareediye diamond jewelry India wale price mein aur pay kijiye easy monthly installments mein only at RK Jewels Islam. Best quality, best price.
12: Amit Jetley of Sai USA Inc. presents Sonu Nigam live in the Revolution Tour, Friday, September 11th at Hard Rock Live, Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
13: बेटा, शादी next week है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
14: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
13: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
15: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
16: तेरा क्या होगा कालिया?
17: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
16: अब मिर्ची खा।
18: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

सिंगर की लीगेसी गिननी हो तो शायद गाने गिने जाते हैं, लेकिन सोनू निगम की लीगेसी गिनने हो तो एहसास गिनने पड़ते हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और सही तो बात है, संदे से आते हैं मैं घर की पुकार, सूरज हुआ मध्यम में मोहब्बत का नूर, कल होना हो मैं जिंदगी की कीमत, मैं अगर कहूँ मैं इश्क की शायरी, और अभी मुझ में कहीं में दिल की गहराई। एक आवाज लेकिन हर सुर में ना एक अलग दुनिया है, और यही सोनू निगम की असली म्यूजिकल लीगेसी है। और अब इसी लेजेंडरी आवाज का अगला लाइव चैप्टर है रिवॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, सोनू निगम आ रहे हैं रिवॉल्यूशन टूर के साथ। शुक्रवार सितंबर 11th हार्ड रॉक लाइव एट ईटस एरिना एटलांटिक सिटी न्यू जर्सी में, एंड इट्स एन अमित जेटली ऑफ साई यूएसए आईएनसी प्रेजेंटेशन। मतलब कॉन्सर्ट का कैनवस तो ग्रैंड ही होने वाला है, तो आज ही जाइए अपने टिकट बुक कर लीजिए फ्रॉम टिकट मास्टर saiusainc.com या फिर sulekha.com पर, और मुझे डीएम करके जरूर बताइए और माय इंस्टा आईडी @rjmirchisiddhi कि वो कौन सा गाना है जो आप सबसे पहले सोनू निगम की आवाज में लाइव सुनना चाहते हो, टेल मी ऑन इंस्टा। और चलिए सितंबर 11 को तो रिवॉल्यूशन स्टेज पर होगा, लेकिन उस लेजेंडरी आवाज का जादू अभी से सुनते हैं राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली।

0: का ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हाँ, भूलना मत हमार रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जब धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @ मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
4: किसका है ये तो एक आवाज जिसने रोमांस को एक नई पहचान दी, एक लेजेंड जिसकी मेलोडीज पिछले 3 दशकों से हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कती हैं।
5: अमित जेटली ऑफ साई USA Inc. प्राउडली प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन हिज बिगेस्ट टूर एवर।
6: फ्राइडे 11 सितंबर 8:30 PM विटनेस हिस्ट्री एट हार्ड रॉक लाइव ETS अरेना अटलांटिक सिटी।
5: डू नॉट मिस द ग्रेटेस्ट म्यूजिकल नाइट। टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर एंड saiusainc.com।
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
9: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
10: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
9: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
10: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
9: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islington.
11: तेरा क्या होगा कालिया?
12: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
11: अब मिर्ची खा।
13: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

की टाइम शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि एंड फाइनली लॉन्ग वीकेंड इज हियर एंड आई एम श्योर आप सब वर्क मोड से ट्यून ऑफ कर चुके हो, क्योंकि यार आज का जो दिन होता है ना, वैसे भी काम में ज्यादा मन लगा नहीं रहता, हम बस ये सोच रहे होते हैं कि यस जो वीकेंड के प्लान बनाए हैं, लॉन्ग वीकेंड के प्लान बनाए, उसको शुरू करने हैं, दोस्तों को कॉल करने हैं, यू नो सारी सेटअप करनी है, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट 2 या 3 बजे कोई तो एक ऐसा नमूना ऑफिस में आ ही जाता है जो एक्स्ट्रा काम देकर जाता है और ऊपर से बड़ी मुस्कुराहट से बड़े प्यार से कहता है आई होप यू कैन टेक केयर ऑफ दिस बिफोर द लॉन्ग वीकेंड। हाँ हाँ, मुझे तो और कोई काम है ही नहीं, लॉन्ग वीकेंड में भी तेरा ही काम कर लेता हूं ना भाई। तो ऐसे जो नमूने होते हैं ना, उनको तो हेल में भी जगह नहीं मिलती है एंड आई रियली हैव अ पिटिशन कि इन लोग के तो लॉन्ग वीकेंड भी कैंसिल कर देनी चाहिए। अगर आपको भी यही लगता है और आपने आज ऐसे किसी नमूने को हैंडल किया तो कैसे किया है मुझे जरूर बता एंड आई होप यू हैव अ रॉकिंग लॉन्ग वीकेंड और आपके लिए रॉकिंग गाना राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

की टाइम। एक एल्बम जिसके सारे के सारे गाने सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जहाँ इतने सारे गाने बनते हैं, कभी कोई हिट होते हैं, कभी कोई फ्लॉप, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे एल्बम्स बन जाते हैं ना जिसके सारे के सारे गाने एक से बढ़कर एक होते हैं, जिसको आप स्किप ही नहीं कर सकते और वो टाइमलेस रह जाते हैं। जी हाँ, 2007 की मूवी सलाम ए इश्क, वो एक ऐसा बॉलीवुड म्यूजिक का एल्बम था जिसके यार इतने अमेजिंग गाने थे। मतलब ये एल्बम नहीं था, ये तो थी एक म्यूजिकल थाली, क्योंकि छह अलग कहानियां और उससे भी ज्यादा उनके अमेजिंग से जज्बात जो कि कैप्चर हुए थे हर एक गानों में। तो चलिए, इसी का एक गाना है सलाम ए इश्क द टाइटल ट्रैक। दोस्तों इसमें तो यार छह जोड़ियां एक ही फ्रेम में दिख रही थी और लोगों ने कहा कि ये ना कहीं ना कहीं बॉलीवुड का एवेंजर्स मोमेंट था, क्योंकि वैसे तो एवेंजर मोमेंट 2008 में आया था, लेकिन बॉलीवुड ने बहुत ही पहले, इट वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम इन 2007, इतने सारी जोड़ियां एक साथ, इतने सारे सिंगर्स एक साथ आए थे इस एक गाने के लिए, सलाम ए इश्क द टाइटल ट्रैक। वैसे तो यार सॉन्ग का स्केल और ग्रैंडियर देख के यही लगता था कि किसी अवार्ड शो के लिए ही ये गाना बनाया हो, क्योंकि शूटिंग के लिए भी इतना मैसिव सेट डिजाइन हुआ था और सारी जोड़ियों को एक ही दिन में सिंक प्रैक्टिस करनी थी। तो जी हाँ, सारे जो बॉलीवुड की जोड़ियां थी वो तो इस गाने में थी, लेकिन सारे जो म्यूजिकल सिंगर्स यानी सोनू निगम, श्रेया घोषाल, कुणाल गांजावाला और भी कई सारे सिंगर्स एक ही साथ इस गाने में थे, तो ये गाना तो एक शादी थीम बनना ही था। चलिए सुनते हैं सलाम ए इश्क टाइटल ट्रैक फ्रॉम द मूवी सलाम ए इश्क। लेकिन आप भी बताइए वो कौन सा ऐसा एल्बम है जिसका कोई भी गाना आप स्किप नहीं कर पाते। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। और तब तक सलाम ए इश्क का ये टाइटल ट्रैक राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milchi, burga.
1: हेलो
2: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारे रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपको?
1: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
2: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई हैं ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फोनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आज जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम कि छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
1: क्या तुझे पागल लगा?
2: नहीं, वो मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
1: क्या कहना है?
2: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना मेरी बात है, चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना। हेलो, चारू मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता चारू प्लीज बुरा मत माने यार, थोड़ा सा नहीं, रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। This gold update is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style. Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकेयर या गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को लेकर कोई सवाल है? तो यूनाइटेड हेल्थकेयर प्राउडली अनाउंस करता है हमारा नया एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर की ओपनिंग।
5: ये सेंटर कन्वीनियंटली लोकेटेड है 561 US Highway 1 एडिसन विक शॉपिंग मॉल के अंदर।
4: यहाँ आपको अपने हेल्थ केयर बेनिफिट्स और कवरेज ऑप्शंस समझने के लिए पर्सनलाइज सपोर्ट मिलेगा। हमारी प्रोफेशनल टीम आपको फ्री कंसल्टेशन देगी ताकि आप मेडिकेयर, इंडिविजुअल और फैमिली हेल्थ प्लान्स और गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को बेहतर समझ सके। तो आज ही विजिट कीजिए एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर।
6: पीठ पे छुरा क्यों घोंपे? मत मारे कालीन भैया, बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
7: अब सही सुर लगा रहे मुमताज।
8: मिर्जापुर की गद्दी के बारे में सुने?
6: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
8: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
9: XL Entertainment presents Mirzapur the movie, releasing worldwide on 4th September at your nearest cinema.
10: Nehal Singh nu Bengali kudi naal kive hoya pyar?
11: Ah, you boyfriend?
12: No boyfriend.
11: Same, no girlfriend.
10: Ki Nehal Bengali kudi di sachai phad payega? Vekho Singh versus Kaur 2, releasing on 11th September, starring Gippy Garewal, Shehnaaz Gill, directed by Navneet Singh. Produced by Gippy Garewal, Ravneet Kaur Garewal, Shrikant Mohta and Mahendra Soni.

0: finest kitchens in India. A thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
2: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
3: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
4: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
3: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
5: बेटा, शादी next week है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
6: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटेटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
5: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
7: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
8: अमित जेटली ऑफ साई USA Inc. presents Sonu Nigam live in the Revolution Tour, Friday, September 11th at Hard Rock Live, Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
9: Batting to kaafi saare karte hain. Virat ek hi hota hai.
10: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
9: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
11: Isse apni jeb mein rakh le Peter. Ab ye taala main teri jeb se chaabi nikal kar hi kholunga.
9: Moral of the story? Number one, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
12: एक ऐसा एल्बम जिसके सारे के सारे गाने सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी। और जी हाँ, बातें हो रही है यार कि कभी कभी कुछ ऐसे एल्बम्स बन जाते हैं कि जिसका कोई भी गाना मन ही नहीं करता कि हम स्किप करें। और वो जब जमाना आता था ना कि जब कैसेट्स आती थी, तो एक ऐसी कैसेट उस एल्बम की बाय करना तो फुल ऑन पैसा वसूल लगता था। और ऐसा एक एल्बम था 2007 का, सलामी इश्क, जिसके यार हर एक गाना बहुत ही अमेजिंग था। सलाम है, इस टाइटल ट्रैक के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं, लेकिन और एक गाना इस एल्बम का तेनू लेके, जो कि गाया गया है सोनू निगम एंड महालक्ष्मी अय्यर ने। वैसे तो यार इस गाने के लिए सलमान खान ने जो डांस किया था और उनकी जो एंट्री आई थी, वो एंट्री कई सारी शादियों का एंथम बन गया था। मतलब इतने सारे दुल्हों ने उसी गाने पे अपनी एंट्री की है कि यार बस तेनू मैं लेके जावांगा, ये एक शादी के लिए बहुत ही बेस थीम बन गया था। और ना सिर्फ शादी के लिए यार, मतलब प्रपोजल के लिए भी यही गाना यूज करते थे। जी हाँ, ऑलमोस्ट फॉर अ डेकेड ये चला, जब तक कि नए गाने नहीं आए। तो वन ऑफ द हिट सॉन्ग्स ऑफ दिस एल्बम तेनु लेके मैं जावांगा, सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर ने गाया हुआ ये गाना, वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग। तो चलिए इसे प्ले करते हैं, लेकिन और भी एक गाना बाकी है इसी एल्बम का। वैसे आप भी मुझे अपने रिक्वेस्ट जल्द से जल्द भेज सकते हो, DM मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, कि इस एल्बम का आपको कौन सा गाना पसंद है, जल्दी से बताइए। और तब तक के लिए तेनू लेके मैं जावांगा, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
1: जिसके शब्दों में आग है,
0: जिसकी आवाज में जादू है,
1: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक।
0: आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
6: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
7: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुरा कर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
8: किसका है ये तो?
9: एक आवाज जिसने रोमांस को एक नई पहचान दी, एक लेजेंड जिसकी मेलोडीज पिछले 3 दशकों से हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कती हैं।
10: अमित जेटली ऑफ साई USA Inc. प्राउडली प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन हिज बिगेस्ट टूर एवर।
11: फ्राइडे 11 सितंबर 8:30 PM विटनेस हिस्ट्री एट हार्ड रॉक लाइव ETS अरेना अटलांटिक सिटी।
10: डू नॉट मिस द ग्रेटेस्ट म्यूजिकल नाइट। टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर एंड saiusainc.com।
12: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
13: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
14: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
15: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
16: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
15: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
17: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
18: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा।
19: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शादा लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और वैसे इतने सारे गाने जहां बनते हैं, कुछ फ्लॉप कुछ हिट, लेकिन यार कुछ ऐसे एल्बम्स बनते थे जिसका हर एक गाना एक से बढ़कर एक होता था। और 2007 में रिलीज हुआ एक ऐसा एल्बम सलामी इश्क, जी हाँ, शंकर महादेवन के मैक्सिमम कंपोजिशंस इस एल्बम के लिए थे। और हर एक गाना यार ब्लॉकबस्टर था, मतलब आप स्किप भी नहीं कर सकते, चाहे वो बाबू जी धीरे चलना का रिमिक्स वर्जन ही क्यों ना हो। तो यार इसी एल्बम का एक जो सॉन्ग है वो बहुत ही खास है, एंड दैट इज मेरा दिल दिल मेरा, संग बाय शान एंड निहिरा जोशी। वैसे तो यार इस गाने को जब फिल्माया गया था तो इतने सारे कपल्स हैं इस मूवी में, जॉन

अब्राहम विद्या बालन हो, उनकी केमिस्ट्री तो बहुत ही अमेजिंग थी. फिर चाहे हमारी प्रियंका चोपड़ा और सलमान खान हो, लेकिन यार सबसे ज्यादा जो अमेजिंग केमिस्ट्री थी, जिसने लोगों का दिल जीत लिया था, दैट वाज शैनन एसरा एंड गोविंदा की. मतलब ये गाना स्पेसिफिकली, जिसमें शैनन एसरा ने बहुत सारे एथनिक कॉस्ट्यूम्स पहने थे और गोविंदा बीन गोविंदा अलग अलग जगहों पर डांस किए जा रहे थे, मतलब कहीं हवेलियों के सामने, कहीं ट्रक पर. दिस सॉन्ग वॉज रियली रियली ब्यूटिफुली पिक्चराइज, और गोविंदा के डांस मूव्स, मतलब दे वर किलिंग इट, दे वर टोटली किलिंग इट. तो वेरी वेरी क्यूट सॉन्ग, और बहुत ही क्यूट जोड़ी लग रही थी शैनन एसरा और गोविंदा की. वैसे यार ये गाना इतना ज़्यादा प्यारा है, तो यू कैन लिसन टू इट एनी टाइम. तो अभी मैं आपके लिए बजाने वाली हूँ मेरा दिल दिल मेरा संग बाय शान एंड निहिरा जोशी. लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो इस एल्बम का आपका कौन सा फेवरेट गाना है. टेल मी ऑन इंस्टा एट आर जे मिर्ची सिद्धि, SIDDHI. और तब तक के लिए सलाम इश्क का मेरा दिल, राइट हियर ऑन मिर्ची. इट्स

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक.
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक.
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ. व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची.
2: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
3: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
7: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: Kiska hai ye tu?
12: Ek awaaz jisne romance ko ek nayi pehchan di, ek legend jiski melodies pichle 3 dashkon se har Hindustani ke dil mein dhadakti hain.
13: Amit Jetley of Sai USA Inc. proudly presents Sonu Nigam live in concert on his biggest tour ever.
14: Friday, 11th September, 8:30 p.m. Witness history at Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City.
13: Do not miss the greatest musical night. Tickets available at Ticketmaster and SaiUSAInc.com.

की टाइम। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका आज की इस खूबसूरत शाम में। वैसे खूबसूरत शाम के खूबसूरत गाने तो बज ही रहे हैं, लेकिन यार एक ऐसा खूबसूरत एल्बम निकला था जिसके सारे के सारे गाने अमेजिंग थे। 2007 की रिलीज्ड सलाम इश्क की मूवी का जो गाना है, सॉरी जो एल्बम है, उसके सारे के सारे गाने अमेजिंग थे यार। शंकर एहसान लॉय ने इस एल्बम को कंपोज किया था और इसके काफ़ी सारे गानों के बारे में हमने ऑलरेडी बात की है, लेकिन एक गाना है जो आपने रिक्वेस्ट किया है। जी हाँ, आदित्य पाटिल एडिसन में जो रहते हैं, उन्होंने एक गाना रिक्वेस्ट किया इसी एल्बम का, एंड दैट इज दिल क्या करे संग बाय अदनान सामी। वैसे तो यार दोस्तों, सलाम इश्क का टाइटल ट्रैक तो अमेजिंग था ही, लेकिन उसी टाइटल ट्रैक का एक अलग वर्जन बनाया गया था दिल क्या करे इस गाने में, अदनान सामी की मैजिकल वॉइस में। और एक खास बात थी इस गाने की कि यार इस गाने का जो पूरा मूड है, पूरा रोमांटिक मूड है, यू नो पूरा रोमांस ओवरलोडेड है इस गाने में, लेकिन उस रोमांस के वाइब को रखने के लिए यानी सेटअप करने के लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ना सिर्फ एक कैंडल जलाई थी ताकि एक नो अच्छा सा मूड सेट हो जाए और अदनान सामी एकदम हैप्पी लिए गाना गा पाए, एकदम अमेजिंग मूड में, शाम वाले मूड में। और ऐसा ही कुछ हुआ, बस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एक कैंडल जलाई गई थी और उसी कैंडल की लाइट में अदनान सामी ने अपनी मैजिकल आवाज में ये गाना गाया। तो चलिए आदित्य के लिए बजाते हैं दिल क्या करे फ्रॉम द वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एल्बम्स सलाम इश्क 2007 की रिलीज। वैसे दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा कोई एल्बम पता है जिसके सारे के सारे गाने आपको पसंद है तो टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDH चाहे, क्योंकि बजाते हैं यार उस एल्बम के सारे गाने राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज हंगामा आ रहा है ट्रेन की छत से। जी हाँ, छैया छैया यार, ये गाना तो आप सबने सुना ही होगा। इसमें SRK है, मलाइका है और हवाएं हैं, स्वैग है, तो लगता है कि बस डांस करो और हिट हो जाओ। पर यार पर्दे के पीछे का सीन ना लिटरली बैलेंस का एग्जाम था। मलाइका जी ने बताया था कि ट्रेन के ऊपर हवा इतनी ज्यादा तेज थी कि कभी वो दाएं कभी बाएं तरफ स्वे कर रही थी, तो टीम ने ना उन्हें रोप से ट्रेन के साथ टाई कर दिया था ताकि सिंक भी रहे और सेफ्टी भी। और जब वो रोप निकाला गया, वेस्ट पे ना उनके काफी सारे कट्स आ गए थे और सेट पे सब परेशान हो गए थे, सारे पैनिक मोड में आ गए थे कि यार मलाइका जी ठीक तो है ना। मतलब सोचिए, ट्रेन के ऊपर छैया छैया करना इतना आसान भी नहीं था। तो समझे दोस्तों, बॉलीवुड में ना हिट सॉन्ग कभी कभी पहले सर्वाइवल सॉन्ग बन जाता है और बाद में हिट बन जाता है। ऐसे ही पर्दे के पीछे के सॉलिड बॉलीवुड किससे चाहिए तो जरूर बताना। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेलो,
1: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
0: हाँ जी।
1: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी का, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
0: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
1: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
0: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
1: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिगाड़ दिया यार, सारे दिमाग।
0: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
1: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
0: मैंने देखी खुद अपने हाथ से एल्बम। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
1: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
0: अरे शर्म की क्या बात है सर,
1: जितने फोटो है सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या? ये
0: किसी का
1: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
0: लगाया नहीं
1: क्या, कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
0: गायब
1: नहीं। मैं कल को
0: फोटो खींचे।
1: अरे लेंस ऐसे
0: पूरे
1: कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है अंदर से, सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
0: अरे
1: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
0: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
1: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे।
0: क्या बात, चुन के बनाया है?
1: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है। वो खड़ा है, जितने बराती आए हैं सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
0: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
1: गड़बड़
0: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी। हेलो, ऐसी कोई बात नहीं
1: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
0: दिखाइए
1: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
0: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए।
1: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
0: कहाँ होता है बताइए?
2: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर। आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकेयर या गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को लेकर कोई सवाल है? तो यूनाइटेड हेल्थकेयर प्राउडली अनाउंस करता है हमारा नया एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर की ओपनिंग।
7: ये सेंटर कन्वीनियंटली लोकेटेड है 561 US Highway 1 एडिसन विक शॉपिंग मॉल के अंदर।
6: यहाँ आपको अपने हेल्थ केयर बेनिफिट्स और कवरेज ऑप्शंस समझने के लिए पर्सनलाइज सपोर्ट मिलेगा। हमारी प्रोफेशनल टीम आपको फ्री कंसल्टेशन देगी ताकि आप मेडिकेयर, इंडिविजुअल और फैमिली हेल्थ प्लान्स और गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को बेहतर समझ सके। तो आज ही विजिट कीजिए एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर।
8: पीठ पे छुरा क्यों घोंपे?
9: मत मारे कालीन भैया, बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
10: अब सही सुर लगा रहे मुमताज।
11: मिर्जापुर की गद्दी के बारे में सुने?
8: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
11: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
12: XL Entertainment presents Mirzapur the movie, releasing worldwide on 4th September at your nearest cinema.
13: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए Lion Mortgage, the king of mortgage industry.
14: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
15: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
16: Jai Gurudev. अवसर आवीने उभो छा आंगणे, चलो भेगा मळी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए। आपने गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोडायो, जेमा
17: 13 सप्टेम्बर रविवार
16: सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना, अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती, अने 20 सप्टेम्बर सांजे 4 वागे विसर्जन। वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर, विस्काटवे ऑन 732-357-8200। जय गुरुदेव।
18: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
19: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
18: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
19: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, इजलिन।
20: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
21: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
20: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
22: Amit Jetley of Sai USA Inc. presents Sonu Nigam live in the Revolution Tour. Friday, September 11th at Hard Rock Live, Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
23: Batting to kaafi saare karte hain. Virat, ek hi hota hai.
24: Kohli goes down the ground.
23: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
25: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
23: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
26: एक ही होता है।
23: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

बॉलीवुड की कुछ हीरोइंस का लुक ना फिल्म से निकलकर सीधा फैशन मेमोरी बन जाता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी माधुरी का आइकॉनिक इंडियन लुक, तो कभी दीपिका का ग्रैंड ट्रेडिशनल स्टाइलिंग, तो कभी करीना का एफर्टलेस ग्लैम। यार फिल्म खत्म हो जाती है लेकिन वो लुक याद रह ही जाता है, क्योंकि मेमोरेबल स्टाइल यूजुअली लाउड नहीं होता। आउटफिट, कॉन्फिडेंस और वो केयरफुली चोजन फिनिशिंग टचेस मिलकर ही उसे सिग्नेचर बना देते हैं। और रियल लाइफ में भी किसी की वेडिंग हो, पार्टी हो या स्पेशल इवनिंग, उस पर हम सबका अपना अपना एक हीरोइन मोमेंट तो बनता है। और उसी के लिए तनिष्क प्रेजेंट्स फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स। एंजॉय अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, प्लस 0% डिडक्शन ऑन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड गोल्ड अबाउट 18 कैरेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो मूवी स्क्रीन हो या रियल लाइफ, तनिष्क के फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स के साथ अपना सिग्नेचर मोमेंट्स आप भी क्रिएट कर सकते हो। और दोस्तों मुझे जरूर बताना कि बॉलीवुड की कौन सी ऐसी हीरोइन है जिसका लुक आपको आज भी आइकॉनिक लगता है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि मेरी फेवरेट हीरोइन का आइकॉनिक गाना आपके लिए राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
1: जिसके शब्दों में आग है,
0: जिसकी आवाज में जादू है,
1: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक।
0: आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन। Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे।
4: I enjoy using inefficient and complex software, मामा।
5: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
0: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
0: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
0: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
6: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
7: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी। एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट। Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
8: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
0: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी।
9: Oh, no!
0: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट। ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
10: आर के ज्वेल से खरीदिए डायमंड ज्वेलरी इंडिया वाले प्राइस में और पे कीजिए इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में, ओनली एट आर के ज्वेल्स इजलिन। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
11: किसका है ये तो?
12: एक आवाज जिसने रोमांस को एक नई पहचान दी, एक लेजेंड जिसकी मेलोडीज पिछले 3 दशकों से हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कती हैं।
13: अमित जेटली ऑफ साई USA Inc. proudly presents Sonu Nigam live in concert on his biggest tour ever.
14: Friday, 11th September, 8:30 PM. Witness history at Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City.
13: Do not miss the greatest musical night. Tickets available at Ticketmaster and saiusainc.com.
15: 20 minutes of back-to-back music brought to you by RK Jewels. Best quality, best price. Only on Radio Mirchi 92.7 FM and 103.3 FM HD2. It's hot.

0: दोस्तों हम सब ना अपनी कार में दो अलग पर्सनालिटीज लेके चलते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और वैसे तो हम बिल्कुल डिसेंट से सीधे साधे इंसान होते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा फेवरेट बॉलीवुड गाना बजता है, स्टेयरिंग व्हील माइक बन जाता है, विंडशील्ड ऑडियंस और पूरी कार एक पर्सनल कॉन्सर्ट स्टेज। यार किसी को लिरिक्स परफेक्ट आते हो या नहीं आते हो, कोई सिर्फ लाला ला पे काम चला लेता है, और कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस तो इतना सॉलिड होता है कि एकदम कॉन्फिडेंस से गलत गाना देते हैं कि ओरिजिनल सिंगर भी सोचने लगता है कि भाई क्या गा रहे हो। तो चलिए आज एक काम करते हैं, जो अगला गाना है जो मैं बजाने वाली हूं आपके लिए, उसे सिर्फ सुनना मत, जहां भी हो, कार में, किचन में, ऑफिस से घर जाते हुए, चैलेंज ये है कि उसके साथ आपको जोर से ये गाना गाना है। क्योंकि बॉलीवुड के गाने सिर्फ सुनने के लिए थोड़ी ना बने यार, वो तो साथ गाने के लिए भी बने हैं, अपना भी तो टच होना चाहिए। और हाँ, बाद में डीएम करके जरूर बताना कि आज के गाने में लिरिक्स याद भी थे या फुल कॉन्फिडेंस पे गलत गा रहे थे। टेल मी ऑनेस्ट एट आरजी मिर्ची सिद्धि SIDDHR। तो चलिए फ्राइडे का और म्यूजिक शुरू करते हैं राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: ओ यार मिर्जापुर आ गई, मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने ये सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतुराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतुराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा, पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक और त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं, ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जब धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगा है कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। फुल एंटरटेनमेंट है यार, 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर, आए एट मिर्ची जीतूराज, समझे कि नहीं समझे, सही है।
1: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
6: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzlin.
7: This September 12th and 13th, join us at the Indo-American Community Fair at Shri Krishna Mandir, Morganville.
8: Enjoy delicious Indian food, shopping, live cultural performances, a health fair, kids' activities and much more. Morning 10 a.m. to 7 p.m.
9: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
12: किसका है ये तू? एक आवाज जिसने रोमांस को एक नई पहचान दी, एक लेजेंड जिसकी मेलोडीज पिछले 3 दशकों से हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कती हैं।
13: अमित जेटली ऑफ साई यूएसए इंक प्राउडली प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन हिज बिगेस्ट टूर एवर।
14: फ्राइडे 11 सितंबर 8:30 PM विटनेस हिस्ट्री एट हार्ड रॉक लाइव ETS अरेना अटलांटिक सिटी।
13: डू नॉट मिस द ग्रेटेस्ट म्यूजिकल नाइट। टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर एंड saiusainc.com।
15: लिसनर एमए बैक टू बैक गाना सुनेगा,
16: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
17: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
18: Sham Shanda, let's do not donkey, have a funky time.
0: गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक दोस्तों. चलिए 8 बजने वाले हैं, इसका मतलब मेरा वीकेंड शुरू होने वाला है और इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय टाटा सायोनारा टू यू गाइस. लेकिन आप कहीं ना जाइए क्योंकि आपकी पार्टी यहीं पर शुरू हो सकती है. जी हाँ, क्लब मिर्ची शो आ रहा है तो बस डीजे की जरूरत ही नहीं है, गाने यहीं पर बजाइए और अपनी पार्टी शुरू कीजिए राइट हियर ऑन मिर्ची. शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, दिस इज मिर्ची सिद्धि साइनिंग ऑफ.

पेट्रोल, आज का मूड फुल पावर जैसे पेट्रोल प्राइस का ग्राफ, बस हम ऊपर जाके खुश हो रहे हैं। क्लब मिर्ची शुरू हो गया विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। आप सुनोगे वो बीट्स जो पार्लियामेंट डिबेट से ज्यादा हीटेड है। सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि आज गाने भी रॉक करेंगे, बिकॉज वी आर हियर टू रॉक यू।